आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसे सावन की फुहारें धरती को हरियाली से भर देती हैं, वैसे ही प्रेम, दया और अच्छी सोच हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। आइए आज अपने व्यवहार से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं।

0: घड़ी की हर टिक टिक हमें याद दिलाती है कि समय कभी नहीं रुकता, इसलिए हर पल को अच्छे कर्म, नए संकल्प और अच्छी सोच के साथ जिएं। आज का सही उपयोग ही कल की सफलता की नींव बनता है। इसी विचार के साथ समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी छोड़ के जा रहे एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम

6:10 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। छह बजकर 44 मिनट पर आप सुनेंगे श्री राम चरित्रमानस गान। सात बजकर दस मिनट का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का। 9:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी।

10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स का। 11:10 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम तस्वीर।

दोपहर 12:10 का समय होगा प्रोग्राम घर आंगन का। एक बजकर 10 का समय रहेगा प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल का। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम संगीत.com। 3:10 का समय होगा प्रोग्राम मन भावन का।

शाम 5:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गाते गुनगुनाते का। सात बजकर 25 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम सांझ ढले। दस बजकर 30 का समय रहेगा हर श्रृंगार का और 11:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। ईमानदारी, चरित्र, सत्य निष्ठा, विश्वास, प्रेम और वफादारी एक संतुलित सफलता की आधारशिला है। आप सभी भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण सुनेंगे अब, और एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ करते हैं एक प्यारी सी शुरुआत। जय श्री राम।

और हमारे आपके जीवन में, प्रत्येक के जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ होता है वो इन चार पंक्तियों में उतार दिया है।

नल बंद करने से नल तो बंद हो जाता है लेकिन पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी तो बंद हो जाते हैं लेकिन समय नहीं। ठीक वैसे ही झूठ छुपाने से झूठ तो छुप जाता है लेकिन सत्य नहीं। इसीलिए सत्य को छुपाने की कोशिश ना करें, वो प्रयास ना करें जिनको करने से हमारा या किसी और का नुकसान हो।

जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और जानते हैं बचाया हुआ धन जो है कमाए हुए धन के बराबर होता है।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

ठोकर लगने का मतलब ये नहीं होता कि हम चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि हम संभल कर चलना सीख जाएं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे से भजन की ओर, एक प्यारी सी आरती का आनंद लेते हुए कुछ और बातें अर्पण में होंगी आपके साथ।

एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन जानते हैं एक अच्छा दोस्त जो है एक पूरी लाइब्रेरी यानी कि एक पुस्तकालय के बराबर होता है।

मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब कुछ सुन रहा है, लेकिन निंदा करते हुए ये सत्य भूल जाता है। पुण्य करते समय ये समझता है कि भगवान देख रहा है, लेकिन पाप करते वक्त ये भूल जाता है। दान करते हुए ये समझता है कि भगवान तो सब में बसता है, लेकिन चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए ये समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन नफरत करते हुए ये भूल जाता है। तो इसीलिए हमें अपनी सारी भूल को सुधारना है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण मेरे यानी सुरति के साथ।

इसी के साथ वक्त हो गया है अब श्री रामचरितमानस गान का। तो आप सभी सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्री रामचरितमानस का अगला भाग, और हम सभी सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस की श्रृंखला में अयोध्या कांड। तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अगला भाग एफएम गोल्ड पर अब।

राम राम की रट लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा विरुदावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मांतक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहां कैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ, सोच से व्याकुल राजा यूं पड़े थे जैसे जल से उखड़कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड, और इसी के साथ अब से थोड़ी देर में ठीक 6:55 पर सुनेंगे संस्कृत में समाचार, ठीक 7 बजे सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और 7:10 पर अपना मनपसंद प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरति के साथ, जिसमें हम जानेंगे काफी कुछ। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है समाचारों का, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर फिलहाल संस्कृत में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमं सर्वोच्च न्यायालयस्य संशोधन विधेयकं पारितम्। यत् चर्चोत्तरं राज्यसभया तत् पुनः लोकसभायै प्रेषितम्। लोकसभया एतद् विधेयकं गत सोमवासरे एव पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्च न्यायालयाधिनियमः 55-1900 इत्यस्मिन् संशोधनं भवति। लोकसभया बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 इति पारितम्। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक अभिलेखानां साक्ष्य संबद्ध नियमं आधुनिकीकांकीय बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुमस्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् बैंक अभिलेखस्य वैद्युतिकः उत वा आंकिकीयाभिलेखः साक्ष्यरूपेण ग्राह्यः वैधः तथा विधितः प्रवर्तनीयः भविष्यति। लोकसभायाः कार्यम् अपराह्णे 2 प्रथम स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धे सति केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एतत् विधेयकं प्रस्तौत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते कथा कथनस्य समृद्धा परंपरा तथा सृजनात्मक प्रतिभायाः विपुलः निधिः वर्तते, यस्य उपयोगेन भारतं वैश्विक सामग्री निर्माणस्य प्रमुख केन्द्र रूपेण विकसितुं शक्यते। असौ सामाजिक संचार पटले संसूचितवान् यत् नवदिल्ल्यां नेटफ्लिक्स इत्यस्य सह मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा टेड सैरंडोज इत्यनेन सह असौ मेलनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् तयोः मध्ये भारतस्य मनोरंजन क्षेत्रस्य विशाल संभावना विषये अपि विस्तृतः विचार विमर्शः अभवत्। विश्वस्य प्रमुख सामाजिक माध्यम मञ्चानां मूल संस्थायाः मेटा इत्यस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा मार्क जुकरबर्ग इत्यनेन बाल यौन शोषण सामग्री तदनुषंगिक सामग्री कृत्रिमतया निर्मित सामग्री चेत्येषु अथ मंच संचालने च जात दोषान् अधिकृत्य भारत प्रशासनात् क्षमा याचिता। सूत्राणामनुसारं मेटा संस्थया स्वीकृतं यत् केषाञ्चन प्रकाराणां सामग्रीणां प्रचाराय बहुधनराशिः व्ययिता आसीत्। भारत प्रशासनेन मेटा संस्थायै एतत् स्पष्टीकृतं यत् सा मध्यस्थ परिभाषायाः अन्तर्गतं न आयाति, यतः सा संस्था एव निर्धारयति यत् का सामग्री कस्मै प्रेषणीया इति। मेटा संस्थया स्वदोषः स्वीकृतः तथा तस्मिन् विषये दुःखं च व्यक्तम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं अफ्रीका देशैः सह समावेशिनम् आवश्यकताधारितं च विकास सहयोगं समर्थयति, यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढीकृत्य राष्ट्रीय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्यां अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीका देशानां प्रमुख व्यापार निवेश सहभागीषु भारतमपि अन्यतममस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीका देशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुख निवेशक देशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां षोडश भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिविजन ए इत्यस्य उपान्त्य चरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्य प्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयंबतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपान्त्य चक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं 5-1, झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलं अथ मध्य प्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलं च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। श्री मोदी ने श्री टेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
3: India is proud to be one of Africa's
4: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian fishermen and their boats detained by its authorities, while reiterating that a humanitarian approach should guide the handling of the long-pending issue. The matter figured prominently during Foreign Secretary Vikram Misri's discussions with the Sri Lankan leadership during his official visit to Colombo. Mr. Misri arrived in Colombo yesterday for a day-long visit. He held separate meetings with President Anura Kumar Dosanayake, Prime Minister Harini Amarasurya, Foreign Minister Vijayathya Herath and Foreign Secretary Aruni Ranaraj. In Uttar Pradesh, Bahujan Samaj Party MLA from Rasra in Balia district, Uma Shankar Singh passed away last evening after prolonged illness. He was 55 and was undergoing treatment for a brain tumour at a private hospital in New Delhi where he breathed his last. Uma Shankar Singh was the BSP's lone legislator in the 403-member Uttar Pradesh Assembly. He was first elected from the Rasra in 2012 and retained the seat in 2017 and 2022. India has advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil, and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. In response to media queries regarding comments made by Pakistan Foreign Minister on the so-called Yom-e-Istihal, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said the world is not fooled by these orchestrated spectacles. He said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been and shall forever remain an integral and inalienable part of India. Iran has said it is in the final stage of drafting an agreement with Oman over the Strait of Hormuz. US President Donald Trump has said a deal could be announced this week. If finalized, the agreement could potentially reopen the strategic waterway, ease pressure on the global economy, and help bring an end to the war. However, the agreement is likely to depend on the United States lifting its blockade on Iran's ports. Iran has said it wants to retain some measure of control over the Strait of Hormuz and will not revert to its pre-war status as an open international waterway. Amid a wider diplomatic effort in the region, Iran and Oman have been engaged in bilateral talks regarding the strait that they each control through northern and southern channels. Iran reported significant progress in the talks and said both inward and outward journeys would pass through Iranian waters. There was no immediate U.S. comment on the proposal, while President Donald Trump has said a deal reopening the strait is imminent. U.S. officials have repeatedly insisted they would never agree to Iran controlling access to the world's most important trade route for energy supplies.

सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, मेहनत की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी, हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। और आज गोल्ड सुप्रभात में आपके साथ हूं मैं, सुरति। तो चलिए इसी के साथ एक प्यारे से गाने के साथ करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी शुरुआत, फिर करेंगे ना ढेर सारी बातें।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

गोल्ड पर आप सभी सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरति के साथ। और वक्त हो गया है ये जानने का कि आखिरकार आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है। तो आपको बता दूं, मौसम विभाग का कहना है कि आंधी तूफान की आज बहुत ज्यादा संभावना रहेगी, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। और अगर हम बात करें तापमान की, तो अधिकतम जो है 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। खैर, मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम तो इसे प्यारे प्यारे गानों से सुहावना बना ही देते हैं।

अच्छा, बारिश का मौसम आता है ना तो अच्छा तो बहुत लगता है, चेहरे की मुस्कान भी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है, ख़ासकर अगर हम बात करें बारिश के मौसम में हमारी सेहत, खान पीन, बिजली, सड़क सुरक्षा, तो भाई इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा संक्रमण, बीमारियाँ और हादसे होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हमेशा उबला या फिर आरओ वाला पानी पीजिए, बाहर का कटा हुआ या बासी खाना खाने से बचिए, हरी सब्जियों और फलों को साफ पानी से अच्छे से धोकर इस्तेमाल करिए और पत्तेदार सब्जियां जो है वो अवॉइड कीजिए। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो उसके तुरंत बाद अपने कपड़ों को बदलिए ताकि आपका शरीर जो है वो सूख जाए, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छतरी ले जाना ना भूलें। और साथ ही साथ बाहर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है खुले तारों, खंभों और बिजली के उपकरणों से दूर रहना, सड़क पर भरे गंदे पानी और जल भराव से खुद को बचाना, और साथ ही ऐसी जगह पर जहां पर फिसलन हो वहां से बचना, तो उसके लिए अच्छी पकड़ वाले शूज ही पहनकर घर से निकलना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इनका हम ध्यान रखते हैं तो बारिश के मौसम में हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बारिश का आनंद ले सकते हैं।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर. इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग वीर ज़ारा फिल्म से, उदित नारायण की आवाज़ में. क्या गीत है ना, जब भी सुनो दिल बेहतरीन महसूस करता है. इसी के साथ अब वक्त हो गया इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे, उसके बाद सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर अंग्रेज़ी और उसके बाद उर्दू में समाचार. और ठीक 8:45 पर सुनना ना भूलिएगा प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. वक्त हो गया इजाज़त लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाज़त. लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि गोल सुप्रभात फिलहाल बस इतना ही था. वक्त हो गया है अब कार्यक्रम आज सवेरे का. आइए सुनते हैं अब FM गोल्ड पर.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे.

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तन्वी के साथ आज मैं हूँ नवीन सक्सेना। और तन्वी, जब जिंदगी की शुरुआत और यूं कहें कि अगर दिन की शुरुआत ऑल इज वेल से होना, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन बेहद खास गुजरेगा। और जानते हैं, आज का दिन आपकी जिंदगी का एक अहम दिन बनने के लिए तैयार है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट कर लीजिए, स्वागत कीजिए आज के दिन का। क्योंकि आज का दिन ऐसा होना चाहिए ना कि याद करें कि 2026 में वो दिन था जिसे हम कभी नहीं भूल सके, है ना तन्वी?
1: Totally, you have to make this day special. You have to make every moment of your life special. And yes, all needs to be well, no matter what, because life goes on.
0: Yes, life हमेशा चलती रहनी चाहिए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। मुश्किलें आती हैं, चली जाती हैं। और तन्वी, जानते हैं, आज का दिन हमें विज्ञान की शक्ति, युद्ध की विभीषिका, न्याय व्यवस्था की विकास, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, न जाने कितने दिनों से और कितनी घटनाओं से आज का दिन जुड़ा हुआ है ना। तो फिर क्यों ना हम अपने सुनने वालों को कहें कि आज आप भी कुछ ऐसा कर जाइए कि आज का दिन आपको तमाम जिंदगी याद रखे।
1: Absolutely. This is our daily news magazine program, Aaj Savere, and you all, the listeners, are tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. Like Naveen said, we have a lot of information in store for all of you till 8 a.m. So stay tuned and listen to each and everything. Today is 6th of August. It's a Thursday and a very happy Thursday.
0: तन्वी, कहानी एक ऐसी स्टोरी लाइन या कह लें कहानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुत कुछ कह जाते हैं। और जानते हैं, भारत में कहानी कहने की जो परंपरा है ना, वो सदियों से चली आ रही है। हमने अपने नाना नानी से सुनी, दादा दादी से सुनी, फिर बड़े भाइयों से सुनी, अपने मम्मी पापा से सुनी। तो बस उसी कहानी कहने की जो परंपरा है ना, उसी को लेकर आज हमारी पहली स्टोरी है।
1: Shall we begin?
0: बिल्कुल। Netflix ने Netflix India Storytelling Initiative शुरू करने की घोषणा की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Netflix के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड स्रेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसे कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि जब एक कोई कहानी कह रहा है, आप उसे देख नहीं रहे, लेकिन वो कहानी कहते कहते आपको उस दुनिया में ले जाता है।
1: That's true. It actually widens your imagination. You can be creative and you can create characters and stories irrespective of thinking about any false narratives.
0: जानते हैं, जब कहानी पढ़ते पढ़ते आप छाती पे किताब रख के सो जाते थे, तो वो सोते नहीं थे, आप उस कहानी में डूब जाते थे और अपने आप को उस कैरेक्टर में महसूस करने लगते थे। या फिर आपके बड़े बूढ़े आपको कहानी सुनाते थे, तो आपको लगता था कि शायद अगर जंगल की कहानी है तो मैं वो तितली बन गई हूँ, या फिर अगर कोई राजा रानी की कहानी है तो मैं राजा बन गया हूँ, है ना?
1: ट्रू।
0: मूव करते हैं अगली।

0: स्टोरी की तरफ।
1: गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड दैट इट इम्प्लीमेंट्स द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम JWS टू प्रोवाइड वन टाइम एक्स ग्रेशिया रिलीफ ऑन अर्जेंट बेसिस टू जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया पर्सनल और टू देयर फैमिलीज इन द इवेंट ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप अराइजिंग आउट ऑफ डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, सीरियस एलमेंट्स एंड एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन। इन अ रिटन रिप्लाई इन लोकसभा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन सेड जर्नलिस्ट accredited by Press Information Bureau, PIB and state or UT governments as well as non-accredited journalists are covered under this scheme. Under the JWS scheme, government has provided financial assistance of 19 crore 41 lakh rupees to 456 media personnel or their families from 2014-15 to 2025-26. Journalists accredited with the PIB are also covered under the central government health scheme facilities across the country for themselves and also for their family members. This includes their treatment at government or CGHS empaneled private hospitals at CGHS rates. PIB issues accreditation for journalists in the National Capital Region and the number of journalists accredited with PIB as on date is 1,786.
0: साहस और निस्वार्थ सेवा, ये मन में भाव लिए बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन उन्हें याद कम किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण और बचाव अभियानों में से एक था।
1: Niti Aayog has released a report titled Reimagining Care: Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat at 2047. The report envisions a comprehensive caregiving ecosystem as a key pillar of inclusive growth and social development while strengthening India's potential as a global hub for skilled caregiving professionals. Speaking on the occasion, Vice Chairperson Dr. Ashok Kumar Lahiri said, with the release of the report, Niti Aayog is addressing a strategic imperative that lies at the heart of India's long-term growth and social cohesion. He said the focus is on caregiving, not medical treatment, adding that care is much more encompassing than treatment.
0: तन्वी, अंतरराष्ट्रीय खबरों की बात करें तो पूरे विश्व की नजर है होर्मुज जलडमरू मध्य पर और उसी को लेकर एक अच्छी खबर है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह यह समझौता हो सकता है और इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी।
1: एंड मूविंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, इंडिया एंजॉयड अ मिक्स्ड डे एट द कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इन असन यस्टरडे विद 7 प्लेयर्स एडवांसिंग टू द सेकेंड राउंड ऑफ वुमेन्स सिंगल्स व्हाइल ऑल 6 मेन्स सिंगल्स प्लेयर्स क्रैश्ड आउट इन द ओपनिंग राउंड। इन द वुमेन्स सिंगल्स, अनमोल खर्ब, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षित रामराज, अश्मिता चलीहा, इशारानी बरुआ एंड श्रियांशी वालिशेट्टी प्रोग्रेस टू द सेकेंड राउंड विद इम्प्रेसिव विक्ट्रीज। वुमेन्स डबल्स पेयर ऑफ सोनाली सिंह एंड रितिका ठाकर एंड मिक्स डबल्स कॉम्बिनेशन ऑफ श्रुति मिश्रा एंड ईशान भटनागर ऑल्सो एंटर द सेकेंड राउंड।
0: और अब रुख करते हैं आपके शहर की खबरों का, तो सबसे पहले नजर दिल्ली की खबरों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 के मसौदे पर विचार किया गया। इसके माध्यम से कारोबार शुरू करने और संचालित करने से जुड़ी मौजूदा जटिल प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकल्स की तैनाती को लेकर एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कल एक अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित

0: की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करना और स्वतंत्रता दिवस समारोह को बिना किसी घटना के संपन्न कराने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था।
1: Moving towards Chennai, a total of 1,000 new air-conditioned electric buses would be inducted into MTC in Chennai under the Gross Cost Contract. The announcement was given by Finance Minister N. Mary Wilson during his budget speech yesterday. 500 crore rupees has been earmarked to upgrade the electric vehicle infrastructure at bus depots, including charging facilities and related infrastructure. Nama Salai, an app has been introduced for people to register their complaints on rough roads. And we have some more news from Chennai itself. The School of Postgraduate Studies at Tamil Nadu Agricultural University has started the admission process for its master's degree programs for the academic year 2026-27. The online application window was opened yesterday. The institute offers master's program in 34 disciplines covering agriculture, horticulture, agricultural engineering, forestry, agricultural biotechnology, community science, food technology, agribusiness, environmental sciences and other emerging areas.
0: बात करते हैं महाराष्ट्र की तरफ की। महाराष्ट्र में डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के साथ उस फैसले का विरोध कर रहे हैं सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अथर्व शिंदे ने बताया कि 32 मेडिकल कॉलेज और मुंबई नगर पालिका के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है और उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भारत की पहली AI आधारित कौशल जनगणना रिपोर्ट जारी की और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दान संग्रह में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट की 5 वर्षीय विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दिया है।
1: एंड फ्रॉम मुंबई लेट्स मूव टुवर्ड्स बेंगलुरु। The Bangalore Development Minister Krishna Bairi Gowda has announced Freedom Hubba, which involves public participation in the Independence Day celebration on 15th of August. Announcing this in Bangalore, the minister informed that in the day-long celebration, people from Karnataka and other parts of India will showcase their art, culture, heritage and even ethnic wear. To be themed around Bangalore, our home, all those from across the country who have chosen Bangalore as their home have been invited to participate in the citizen-led Hubba, which in Kannada means festival. After the formal Independence Day ceremony at the Field Marshal Manekshaw Parade Ground, the celebrations will shift to the iconic Vidhan Saudha.
0: बात कोलकाता की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी की 102वीं पुण्यतिथि आज मनाई जाएगी। इस अवसर पर कोलकाता में विभिन्न समारोहों के माध्यम से उनकी विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने कोलकाता निगम के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण अंततः वो कांग्रेस से अलग हो गए थे।
1: And moving towards Hyderabad, Union Minister Kishan Reddy has raised serious concerns over rising food adulteration cases in Telangana, revealing that harmful substances like textile dyes, artificial colours, talcum powder and rice bran oil are being mixed into spices to boost their colour, weight and even market value. He said the central government, through FSSAI, has notified 17 primary and 5 referral laboratories under the Hyderabad zone covering Telangana and Andhra Pradesh to test food quality. Mr. Reddy said the centre has released 11.68 crore rupees to Telangana under the Strengthening of Food Testing System scheme with an additional 23.37 crore rupees also approved.
0: तनवीन शहरों की खबरें तो हमने बता दी, लेकिन एक खबर जो यहाँ के लोगों के लिए सबसे जरूरी है वो ये कि जब वो घर से बाहर निकलें तो फिर मौसम का मिजाज कैसा हो। तो चलिए दिल्ली के लोगों के मौसम के बारे में हम बता देते हैं। आज ही सुबह बहुत भीगी हुई है दिल्ली की, हो ना हो आपके इलाके में आपके घर के बाहर तेज़

0: बीच बीच में थोड़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम और भी सुहाना बनाएंगी समुद्र की हवाएं। और अब पहुंचते हैं कोलकाता। तन्वी, हुगली के तट पर बसा ये शहर आज भी बादलों की चादर में लिपटा नजर आएगा। रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री सहने का अनुमान है। बारिश यहाँ भी होगी और कोलकाता की रौनक को थोड़ा सा और बढ़ा देगी। यानी कुल मिलाकर करें कि तीनों बड़े महानगरों में आज पानी की बूंदें मुस्कुराने वाली हैं।
1: And the other three cities that I'm going to talk about, even they are going to witness certain partly cloudy sky. So about Chennai, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature is likely to be around 28 degrees, while the maximum temperature is expected to be around 35 degrees. And if we talk about Bangalore, it's also expected to have partly cloudy sky with the possibility of light rain or even thunder showers. The minimum temperature is likely to be around 21 degrees and the maximum temperature is expected to be around 30 degrees Celsius. Now, Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with haze. The minimum temperature is likely to be around 25 degrees while the maximum temperature is expected to be around 35 degrees Celsius. So, we can say that monsoon is here for each and every city.
0: बिल्कुल। और तन्वी, लिखने वाले भी अपनी कॉलम से क्या खूब लिखते हैं। देखिए किसी ने क्या लिखा है कि देखिए बारिश की बूंदें हैं बड़ी दूर से चलकर आई हैं, जरा बाहर निकलिए और इनका मजा लीजिए, है ना। लेकिन जब ये बारिश की बूंदें तेज हो जाए तो मजा थोड़ा सा खराब होता है, इसलिए छतरी हमेशा अपने साथ रखिए।
1: एंड इफ यू आर इनडोर्स मे बी यू कैन एंजॉय टी एंड पकौड़ास विद इट।
0: बिल्कुल। और कहते हैं कि अपनी बालकनी के अंदर अगर आप बैठे हैं और बारिश के फुहारे हैं, चाय का कप आपके साथ में है, सुबह पकौड़े खाएंगे, चलेगा बारिश में लेकिन बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए आज सवेरे का अब एक और पन्ना पलटते हैं और मैं और तन्वी आपको बीते हुए कल में लेके जाते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों है आज का दिन खास। तन्वी, नज़र सबसे पहले विश्व को झकझोर देने वाली घटना पर। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने पूरी मानव सभ्यता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए होगा या विनाश के लिए। 6 अगस्त 1945, दूसरा विश्व युद्ध का अंतिम चरण, सुबह के लगभग 8:15, अमेरिका के B-29 बमवर्षक विमान एनोला गे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और विकिरण की चपेट में आ गया। हजारों लोग तुरंत मर गए और आने वाले महीनों और वर्षों के विकिरण के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए।
1: That was a tragic incident, and when we still think about it, it gives us shivers. And today is a special day because today is International Day of Awareness of the Special Development Needs and Challenges of the Landlocked Developing Countries. It is being observed today globally. Landlocked Developing Countries, LLDCs, lack territorial access to the sea, leaving them dependent on transit neighbors for a route to world markets. This geographic disadvantage drives up transport costs, introduces avoidable delays, and exposes LLDCs to any political or economic instability along those corridors. The first celebration of this day took place during the third conference on landlocked developing countries in 2025, which was just last year.
0: आज ही के दिन सन 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है।
1: एंड गोइंग अ लिटिल बैक, लेट्स टॉक अबाउट 1825 वेयर बोलिविया डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन।
0: अब चलते हैं वर्ष 1914 की ओर। यूरोप में तनाव अपने चरम पर था। गठबंधनों की राजनीति, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और सैन्य तैयारी ने पूरे महाद्वीप को युद्ध के मुहाने पर लाखड़ा किया था। 6 अगस्त 1914, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी।
1: वेल बिफोर 1914 कम्स 1906 नवीन, द नेशनलिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता बाय बिपिन चंद्रपाल एंड लेटर श्री अरबिंदो टुक ओवर द पब्लिकेशन एंड टर्नड इट इनटू अ डेली न्यूज़पेपर। And moving further, well, why are we going further when we can actually listen to Vande Mataram?

0: तन्वी, सृष्टि का सृजन अपने आप में एक अजूबा है और बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन इंसान ने टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जन्म की प्रणाली का विकास करने के इस करिश्मे में भी एक और कड़ी जोड़ दी। आज ही के दिन सन 1986 में भारत के पहले वैज्ञानिक रूप में मान्यता प्राप्त टेस्ट ट्यूब शिशु हर्षा का जन्म हुआ था।
1: In 2012, NASA's robotic vehicle Curiosity, also called Mars Science Laboratory, landed on Mars and soon began transmitting images of the planet's surface.
0: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और अब याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्मों के निर्माता रॉबिन बैनर्जी की। असम के घोलाघाट में रहने वाले रॉबिन बैनर्जी ने 32 डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्हें वाइल्ड लाइफ को बचाने सहेजने के लिए खुद को इस तरह से समर्पित कर दिया कि आपने मेडिकल प्रोफेशन को बिल्कुल छोड़ दिया। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति रॉबिन बैनर्जी के इसी समर्पण के लिए उन्हें 1971 में पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें अपनी वाइल्ड लाइफ फिल्मों के लिए 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुत ही खूबसूरत सा एक गीत है जो समर्पित है उनको।

0: देखो देखो। तन्वी, ये मूवी रामलीला आई थिंक, और इसमें बहुत अच्छे से इस गाने को उन्होंने गाया भी है, और कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चीखने पा, तो ये वही कहावत है।
1: एब्सोल्युटली ट्रू, एंड दिस इज सच अ फन सॉन्ग टू बी प्लेड इन द मॉर्निंग शो।
0: और अब बात सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। आज ही के दिन पेंसिलिन की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म हुआ था, और वो वर्ष था 1881।
1: And today is also the birthday of Abhishek Kapoor, an Indian film director, former actor, writer and producer who has worked in Hindi cinema. So he's known for his multiple movies, be it Rock On, Kai Poche, Fitur, Kedarnath and many more. Let's enjoy this beautiful track from Kai Poche titled Shubharambh.

0: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
1: Namaskar.
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
7: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
6: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
8: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
9: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
6: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2000

0: 7, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की।

0: जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश, जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से PM मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में न आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुस से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक CEO टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि मस्कुरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकतदारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत की तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकर्रुरी से मुतालिक काबीना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबीना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबीना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजकूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीये के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल नंबर 3 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। झारखंड असेंबली के आज से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल दो खवातीन समेत एहतजाज करने वाले 5 अफराद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर देवेंद्र नाथ महतो के साथ शामिल हो गए हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। महतो की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर काफी कम होने के तनाजुर में उनकी सेहत तशवीश का मामला बन गई है। रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा

0: थी। उनकी सरकार तलबा के मसाइल हल करने की पाबंद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले पर काम कर रही है। जनाब सोरेन ने यह भी कहा कि मुतालिका एजेंसियां दिन रात तफ्तीश का काम कर रही हैं और कसूरवार अफराद को जेलों में भेजा जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC इस्लाहात मंच के परचम तले एहतजाज 25 जुलाई को शुरू हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि बार बार की अपीलों के बावजूद किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में सरकार के नाकाम रहने के बाद उन्हें एजिटेशन करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये मुजाहिरीन 14वें झारखंड PSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान मनसूख किए जाने और भर्ती के इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनजर देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहां के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफर पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाज़ाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली के बाज हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने ये बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के तबादले ख्याल के दौरान ये मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिस्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। सरकार ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होने के बावजूद आबनाए हुरमुस से 60 माल बरदार बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खलीज के खित्ते से 3972 भारतीय मल्लाहों को वापस लाया गया। साथ ही बहरान से निमटने से मुतालिक दिन रात काम करने वाले निजाम के जरिए लोगों के मुश्किल में घिरे हुए हालात के ताल्लुक से फोन कॉल्स और ईमेल्स पर कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने पर अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह फिर से खुल जाएगी, आलमी मईशत पर दबाव कम हो जाएगा और जंग के खात्मे में मदद मिलेगी, लेकिन ईरान की बंदरगाहों पर अमरीका की नाकाबंदी हटाने के ताल्लुक से इसमें गैर यकीनी की कैफियत का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुआहिदे के इम्कान को रद्द कर दिया था जिससे आबनाए हुरमुस पर ईरान की गिरफ्त मजबूत हो सकती हो, जो अमरीका के लिए एक बड़े नुकसान के मुतरादिफ होगा

0: और आलमी जाब्तों से भी इन्हिराफ होगा। ईरान ने अपनाए हुर्मुज के मामले पर कंट्रोल के कुछ इकदामात पर यह कहते हुए इसरार किया है कि वो एक खुली बैनुल अक्वामी आबी गुजरगाह के ताल्लुक से पीछे नहीं हटेगा, जैसा कि ये जंग से पहले थी। अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात से कबल जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ समझौता तय करने का काम आखिरी मरहले में है, और बज़ाहिर अमरीका की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाज़ फरीक इस अमल में रुकावट नहीं डालते तो एक मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और अपनी सरजमीन पर काम करने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ठोस, मोतबर और पुख्ता कार्रवाई करे। नीज उन सभी भारतीय इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। नामनिहाद योम इस्तेहसाल के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर खारिजा के तबसरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढोंग, दिखावे और बनावटी इकदामात से दुनिया को गुमराह नहीं किया जा सकता। भारत ने नामनिहाद योम इस्तेहसाल मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को वाजे तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त को 2019 को जो आईनी तब्दीलियां की गई थीं वो भारत का पूरी तरह अंदरूनी मामला है। आज दुनिया भर में हिरोशिमा जापान में किए गए एटमी बम हमले के मुतासरीन को याद किया जा रहा है। इस हमले के नतीजे में हजारों की तादाद में अफराद फौरी तौर से हलाक हो गए थे और साल 1945 के आखिर तक 1,40,000 हलाकतें हुई थीं। आज सुबह पीस मेमोरियल पार्क में मुनक़िद एक तकरीब में एक सानेह को याद किया गया और इसकी याद में थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई। इस यादगारी मकाम पर एक दस्तावेज को भी रखा गया जिसमें 3,53,639 मुतासरीन के नाम दर्ज हैं। इस तकरीब में शामिल रहनुमाओं ने न्यूक्लियाई हथियारों को ख़त्म करने की अपील की, जिसकी इस हमले में बच जाने वाले अफराद पुरजोर वकालत करते आए हैं। इन अफराद को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। इस हमले के 3 दिन बाद नागासाकी पर एटमी हमला किया गया था, जिसके बाद दूसरी जंगे अजीम खत्म हो गई थी। हॉकी में कल तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में जारी 16वीं भारतीय जूनियर मर्दों की कौमी चैंपियनशिप के डिवीजन ए मुकाबलों में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमें अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया, जबकि झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 3-3 से बराबरी के बाद शूटआउट में शिकस्त दी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार बर्ताव ने साबिक वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, चाहे जो भी हो जाए अपने लोगों के पास जाऊंगी, ये वो बांग्लादेश नहीं है जो हमने बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में मार्क जुकरबर्ग ने हुकूमत से माफ़ी मांगी, ये खबर भी अखबारात पे नुमाया है। यूपी असम्बली का मानसूनी इजलास कबल अज़ वक्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, हुकूमत ने अपोजिशन पर अवामी फलाही उमूर पर बहस रोकने का इल्ज़ाम आयद किया है। इनकलाब ने इस खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं। अबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी रास्ते पर ईरान और ओमान मुत्तफिक।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली ज़खीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज़ के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के

0: Winning Access to Justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shaharon mein ho, uske prati jagrukta karni ho, ya policy makers, NGOs, civil society ya wider society ko isme integrate karna ho. Ek broad picture ki Bharat धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है. यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए एक ये बोन बनकर आ सकता है. हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं. 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं. 58% से ज़्यादा महिलाएं 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है. ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं. वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियाँ भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं. कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं. फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है. उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनसे चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं. जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं. अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं सन्स और डॉटर्स वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए. तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज़्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के, तो उसके कुछ कारण हैं. आपने सभी ने ये शब्द ज़रूर सुना होगा अल्जाइमर्स या डिमेंशिया. तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है तो वो अब्यूज़ के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं. दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज़ के प्रति बढ़ती है. और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं

0: तो कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं। एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है। और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएं और अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर, अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फ्रॉम द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स स्वयं की जिम्मेदारी लेना, समय पे जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना। जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रासरूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं। और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाते हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामयी वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और उसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स विमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में, एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एक एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज एन एज फ्रेंडली इंडिया एंड एज फ्रेंडली सोसाइटी, एंड स्पेशली आई वुड से यूथ has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens' care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेनरोंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने श्री टेड के साथ भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और दोषी जेल भेजे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और राज्य के बाकी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। श्री विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरेनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजय तहरात और विदेश सचिव अरुणी अरुणराजा से मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जल मार्ग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्माण एजेंसी और इंजीनियरों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रभावित सड़क खंडों को ठीक करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं। सड़क मार्ग के पूरी तरह ठीक होने तक टोल को स्थगित रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के 64 किलोमीटर सड़क खंड पर पिछले महीने की 26 तारीख को फिसलन महसूस की गई थी। सभी दोषियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। सड़क का निर्माण करने वाली एजेंसी प्राधिकरण की भावी परियोजनाओं के लिए बोली नहीं लगा सकेगी। एजेंसी पर 2% का जुर्माना भी लगाया गया है। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा भी बाकी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज जल डमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रह जाएगी जैसे युद्ध से पहले थी। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज डमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ब्रिटेन में कश्मीरी समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन में ब्रैडफोर्ड में प्रदर्शन किए। समुदाय ने संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति की मांग के प्रति भी समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने मानवाधिकार संगठनों और ब्रिटिश सरकार से इस इलाकों में घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए अपील की है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Addressing a conference of content creators in New Delhi last year, Mr. Modi called upon them to share India's stories to the world.
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को भारत के संस्कृति को भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें हम भारत की अपनी स्टोरीज सबको सुनाएं लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया क्रिएट फॉर द वर्ल्ड आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते
1: Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. The government has extended the tenure of Dr. T.V. Somanathan as the Cabinet Secretary by 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet, ACC, has approved the 1 year extension in the service of Dr. T.V. Somanathan as Cabinet Secretary beyond 30th of August 2026. The ACC has also approved the tenure extension of Govind Mohan as the Home Secretary by 1 year. Students intensified their protest over alleged irregularities in the recruitment examinations in Jharkhand. Ahead of the monsoon session of the State Assembly, set to begin today, 5 protesters, including 2 women, joined Jharkhand Lok Tantrik Krantikari Morcha leader Devendranath Mehto, who has been on a hunger strike for the past 4 days. Mehto's health became a matter of concern after his blood sugar and pressure levels dropped significantly. Chief Minister Hemant Soren yesterday asserted that his government was committed to solving students' problems. In a post on social media, he said his government is working on this matter with complete seriousness. In Uttarakhand, intermittent rainfall continues across the state with orange alert issued for Dehradun, Chamoli and Bageshwar. In view of the warning, a holiday has been declared for all schools from classes 1st to 12th and Anganwadi centres today in Dehradun and also some other districts. Chief Minister Pushkar Singh Dhami reviewed the preparedness of the Disaster Management and Rehabilitation Department. More on this from our correspondent.
3: The Chief Minister Pushkar Singh Dhami has directed all disaster management and relief agencies in the state to remain alert and to work with utmost vigilance to effectively deal with any possible disaster situation. He has also emphasized monitoring of vulnerable areas, rivers and streams. Chief Minister has instructed district magistrates to keep the district emergency operational centers operational 24 hours and to ensure prompt action on every incident. He said that preventing any loss of life under all circumstances is the government's highest priority. Sakshi Singh, Akashwani Samachar, Dehradun.
1: The government has said that 60 merchant vessels carrying cargo were safely moved through the Strait of Hormuz despite the heightened security situation in the West Asia region. Replying to a question in Parliament, the government also disclosed that 3,972 Indian seafarers were repatriated from the Gulf region, while a round-the-clock crisis management system handled tens of thousands of distress calls and emails. Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tributes to the former Foreign Minister Sushma Swaraj on her death anniversary today. In a social media post, Mr. Birla said that through her incisive oratory, sensitive leadership and unwavering dedication to the nation's interest, Sushma Swaraj carved out a distinctive place in Indian politics. And that is the end of this news.

आ गई है बरसात, और बरसात के साथ साथ गानों की बहार भी आ गई है। म्यूजिकल दिल लगी में नीतू है आपके साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर।

बिल्कुल, मन में तो मोर नाचते हैं और इस ये मौसम होना और साथ में हो आपकी मनपसंद गर्मा गर्म चाय और पकोड़े और बस फिर और क्या चाहिए आपको। बस ये है कि अपने घर के अंदर आप रहें, या अगर आपका मन कर रहा है ना बारिश में भीगने का तो जाइए बाहर और भीग लीजिए, क्योंकि यही मौसम है जिसमें आप बारिश में भीग सकते हैं। और कई बार ना बारिश में भीगने से बहुत सारा बोझा ऑटोमेटिकली निकल जाता है, ऐसा शोध कहते हैं। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, हालांकि मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है कि आप बारिश में जब जाते हैं ना तो एक एक बूंद जब आपके ऊपर पड़ती है तो बस दिल खुश हो जाता है। और पानी की जब बूंदें हैं वो आप अपने घर या छत के आसपास ही ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से और इसी रोमांटिक मूड में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलो तो हर जगह पानी पानी आपको दिखता है और वो आपका देखने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन कितना अच्छा होना कि हम इस रेन वाटर को कुछ और तरीके से, अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो IIT दिल्ली के एक शोध में कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से रेन गार्डन डेवलप किए जाएं तो जो शहरी बाढ़ का ख़तरा है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आप जानते ही, अब तो लगभग हर जगह ऐसा हो रहा है कि ज़रा सी बारिश आती है और जगह जगह

भरा हो जाता है। ऐसे में इस मुश्किल से छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, रेन गार्डन। और जब गार्डन की बात होती है तो फिर झूलों की बात होती है, और सावन में तो झूलों की बहार होती ही होती है। अब कम होता जा रहा है चलन, लेकिन धीरे धीरे जो लोग जानते हैं झूलों पे झूलने का महत्व, वो तीज के आसपास ये सब करते ही हैं। अभी तीज में टाइम है, लेकिन गाना तो सुनी सकते।

दुनिया में कैसे कैसे आविष्कार हो रहे हैं ना, सुनकर आपको भी अचरज होगा। एक अमरीकी कंपनी ने मछली के आकार जैसा चौड़ा और चपटा एरोप्लेन बनाने का प्लान किया है, जिसमें रोशनी के लिए छत पर सनरूफ होगी, लेकिन इस प्लेन में खिड़कियां नहीं होंगी, उनकी जगह डिजिटल स्क्रीन होगी जो बाहर का नज़ारा दिखाएगी। चलिए कोई ना, खिड़की ना सही, उसका गाना तो हम सुन ही सकते हैं ना, तो आइए चलिए गानों का आनंद लेते हैं।

0: अब बात करते हैं एक योजना की, महत्वपूर्ण योजना की, जिसका नाम है मिशन वात्सल्य योजना। बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है और इसका उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को संरक्षण, शिक्षा, परामर्श और पुनर्वास जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उनका वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित हो। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूर

0: मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

हम अक्सर कहते हैं आपसे कि घूमना फिरना अच्छी बात है, इसलिए जब भी मौका मिले घूम लीजिए। लेकिन आजकल लोग घूमने कम और रील्स बनाने ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे अक्सर वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी होती है जहाँ आप घूमने जा रहे हैं। स्लोवाकिया का एक गांव है जहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उस गाँव से यूनेस्को का दर्जा हटा लिया जाए, क्योंकि वहाँ जो टूरिस्ट जा रहे हैं ना, उनकी दखलंदाजी से वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऐसा ना दुनिया में बहुत सारी जगहों पर देखा जा रहा है, तो इस बात का ख्याल तो आपको और हमें ही रखना है ना कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के लोगों की प्रवेसी में कोई खलल ना पड़े, वहाँ की सुंदरता, साफ सफाई और शांति बरकरार रहे, तभी तो वो जगह आगे भी वैसी ही बनी रहेगी और आपका और दूसरे लोगों का वहाँ जाने का मन करेगा। जाने से पहले इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू है आपके साथ, ये है म्यूजिकल दिल्ली।

जब हम डल फील कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर हमारे चेहरे से दिख जाता है और लोग आपसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बताओ। कई बार ना आप फोन पर बात कर रहे होते हैं और कुछ लोग आपकी आवाज़ से भी पहचान जाते हैं कि आपको कोई परेशानी है। लेकिन जब बीमारियों का पता लगाने की बात आए ना, तो ब्लड टेस्ट या एक्सरे कराना पड़ता है। लेकिन कहा जा रहा है कि भविष्य में आपकी आवाज़ जो है वो बीमारियों का अता पता देगी। फिलहाल तो ये आवाज़ सिर्फ एक खूबसूरत से गाने का अता पता दे रही है, तो इस गाने का आनंद उठाते हैं।

0: एफएम गोल्ड चैनल है ये और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्लगी। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं अभी लौट कर आती हूँ।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। और बाहर का मौसम तो आप देख ही रहे हैं, क्या खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है। लेकिन बारिश के मौसम में ना, जहां आप इंजॉय करने की सोचते हैं, मौसम का मजा लेना चाहते हैं, वहीं कई बार कीटाणु ऐसी शरारत कर देते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इस मौसम में साफ सफाई का बेहद ख्याल रखिए ताकि आप कीटाणुओं और मच्छरों को सबक सिखा सकें। इस मौसम में पेट अक्सर ख़राब हो जाता है, इसलिए पानी को उबाल कर फिल्टर करके ही पिएं। अपनी पानी की बॉटल साथ में लेकर निकलें और खाना भी कोशिश करें कि घर का बना ही खाएं। खुले में वो जो फल वगैरह बिकते रहते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही ना लें। घर पर आप फल लीजिए, घर पर उन्हें धोकर अच्छी तरह काटिए और फिर खाइए। और हाँ, ORS का पैकेट ज़रूर रखें, इमरजेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाइएगा। अपना इलाज खुद तो बिल्कुल मत कीजिएगा, और रील्स देखकर तो बिल्कुल भी अपना इलाज मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको पता नहीं है ना किस तरह के डॉक्टर्स हैं। नीम हकीम खतरा है जान, ये याद रखिएगा हमेशा। फिलहाल मौसम को इंजॉय कर रहे हैं हम अच्छे खूबसूरत गानों के जरिए, तो ऐसा ही एक और गाना आप तक पहुँच रहा है।

हर जमाने का अपना एक ट्रेंड होता है ना, किसी समय में टीचर बनना सबसे बेस्ट प्रोफेशन माना जाता था, कभी डॉक्टर इंजीनियर बनना, सीए और सीएस की भी अपनी जगह रही, फिर अचानक लोग बीसीए एमबीए की तरफ रुख करने लगे। पिछले कुछ सालों में एआई में करियर बनाना सेफ माना जाने लगा है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए करियर का मतलब कुछ अलग है। एरिजोना यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया और निष्कर्ष निकाला कि नई पीढ़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। उन्हें लगता है कि ये एक सम्मानजनक और सेफ करियर ऑप्शन है। वक्त बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं और उसी के साथ सोच और नजरिया भी बदल जाता है।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल्लगी का सफर अब बस समेटने की बारी है। एक और दिन जो महत्वपूर्ण दिन है वो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं चलते चलते। आज हिरोशिमा डे है और ये दिन 1945 में हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले की याद दिलाता है, जिसने युद्ध के मानवीय और सामाजिक प्रभावों को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। इस मौके पर शांति, मानवता और परमाणु हथियारों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाता है, साथ ही उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने उस हमले में अपने प्राण गंवाए। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, हम ये भी सीख सकते हैं इस दिन से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर अब वक्त है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दूं कि 10:30 बजे आपसे मुलाकात होगी दिल का मेल बॉक्स में, जिसमें हम आपकी फरमाइश के गीत शामिल करेंगे और उसमें आप अपनी फरमाइश भेजने के लिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर अपनी पसंद के गाने भेज सकते हैं। अभी समाचार सुनिए, समाचारों के बाद आपसे मुलाकात होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सैंड्रोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा भी की है।

0: सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर भी चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। यह विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्माण एजेंसी और इंजीनियरों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रभावित सड़क खंड को ठीक करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं। सड़क मार्ग के पूरी तरह ठीक होने तक टोल को स्थगित रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के 64 किलोमीटर सड़क खंड पर पिछले महीने की 26 तारीख को फिसलन महसूस की गई थी। सभी दोषियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके अंतर्गत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने बताया कि 32 मेडिकल कॉलेज और मुंबई नगर पालिका के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है। उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आशुतोष आदि ने कहा कि बेहद गंभीर मामलों का इलाज जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि रंगों, पाउडरों और धान की भूसी के तेल की मिलावट मसालों में की जा रही है ताकि उनके रंग बेहतर दिखें और वजन तथा बाजार भाव बढ़ जाएं। श्री रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर तुरंत और सख्त कदम उठाए क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर से जुड़ा मुद्दा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister said in a social media post that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the country's position as a global hub for content creation. Mr. Modi said that they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector.
2: हमें एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: Meanwhile, Netflix India has said the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. Students intensified their protest over alleged irregularities in recruitment examinations in Jharkhand. Ahead of the monsoon session of the State Assembly set to begin today, five protesters, including two women, joined Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha leader Devendranath Mehto, who has been on a hunger strike for the past 4 days. Mehto's health became a matter of concern after his blood sugar and pressure levels dropped significantly. Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tributes to the former Foreign Minister Sushma Swaraj on her death anniversary today. In a social media post, Mr. Birla said that through her incisive oratory, sensitive leadership and unwavering dedication to the nation's interests, Sushma Swaraj carved out a distinctive place in Indian politics. In Uttarakhand, intermittent rainfall continues across the state with orange alert issued for Dehradun, Chamoli and Bageshwar. In view of the warning, a holiday has been declared for all schools from classes 1st to classes 12th and also Anganwadi centres today in Dehradun and some other districts. More from our correspondent.
3: The Chief Minister Pushkar Singh Dhami has directed all disaster management and relief agencies in the state to remain alert and to work with utmost vigilance to effectively deal with any possible disaster situation. He has also emphasized monitoring of vulnerable areas, rivers and streams. Chief Minister has instructed district magistrates to keep the district emergency operational centers operational 24 hours and to ensure prompt action on every incident. He said that preventing any loss of life under all circumstances is the government's highest priority. Sakshi Singh, Akashwani Samachar, Dehradun.
1: Union Minister J.P. Nadda has reviewed flood situation in Assam, assures all possible assistance from centre. Deputed by Prime Minister Narendra Modi, the Union Health and Family Welfare Minister toured Nepali Khuti area of Shiv Sagar district along the Assam-Nagaland border, which is one of the worst hit regions in the latest wave of floods that struck on 19th of July. In United Kingdom, members of the British Kashmiri diaspora staged a demonstration in Bradford yesterday expressing solidarity with the people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and voicing support for the demands of the Joint Awami Action Committee. In US, a mass shooting at the rural house in Caswell County in North Carolina led to multiple deaths. According to the North Carolina State Bureau of Investigation, police responded to a call for service just before 8 a.m. yesterday and arriving on the scene found multiple people who had been shot. In hockey, teams from Odisha, Punjab, Jharkhand and Madhya Pradesh have advanced to the semi-finals of the 16th India Junior Men National Championship Division A after winning their quarter-final matches in Coimbatore, Tamil Nadu yesterday. In today's semi-finals, Odisha will face Punjab while Jharkhand will take on Madhya Pradesh in Coimbatore. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है, जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। भारत ने पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा बंद करने और सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जलडमरू मध्य पार किया और ईरान ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। श्री विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसा नायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
2: इस संभावित समझौते से होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी।
3: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
4: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका और दुनिया के दूसरे हिस्सों के पिछड़े देशों के प्रति भारत की वचनबद्धता इस बात से प्रकट होती है कि अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता भारत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में दी गई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने क्षेत्र से संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ विश्वसनीय प्रमाण योग्य और कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
5: तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन

0: नियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। भारत ने तथाकथित यौमे इस्तेहसाल मनाने के पाकिस्तान के प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक परिवर्तन पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। इन निर्णयों ने क्षेत्र के लोगों के लिए अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण लाया है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा झूठ फैलाने के हताश प्रयास केवल मानवाधिकारों के अपने दयनीय रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में उसकी स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन का साक्षी है। हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए घातक हिंसा, लक्षित हत्याओं और कठोर प्रतिबंधों का सहारा लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि निहत्ते नागरिकों के खिलाफ इस तरह की राज्य प्रायोजित हिंसा पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठान के घोर पाखंड को उजागर करती है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ब्रिटेन में कश्मीरी समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन में ब्रैडफोर्ड में प्रदर्शन किए। समुदाय ने संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति की मांग के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया। आयोजकों का कहना था कि रैली का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की बिगड़ती स्थिति की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना था। जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। यमन के हूती ग्रुप ने अदन की खाड़ी में सऊदी के एक तेल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। हूती से सैन्य प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह हमला सऊदी अरब की नाकेबंदी के विरोध में किया गया। अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना के कैसवेल काउंटी में एक घर में हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत की खबर है। संदिग्ध हमलावर समेत परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई और एक चौथे रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य यूरोप के देशों में एक बार फिर भीषण गर्मी पड़ रही है। स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया में कल का दिन सबसे गर्म रहा। स्लोवाकिया के कैमनिका रोनोम शहर में तापमान 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं ऑस्ट्रिया में बड़े डाइचे ऑल्टनबर्ग में तापमान 41.2 डिग्री रहा। चेक गणराज्य और हंगरी में भी अब तक का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लग गई है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। यूरोप की जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहा महादेश है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। भारत ने पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा बंद करने और सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित हुर्मुज जलडमरू मध्य पार किया और ईरान ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's extraordinary pool of creative talent can be leveraged to strengthen nation's position as global hub for content creation. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. India asks Pakistan to stop bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. India safely moved 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And Iran says it is in final stage of drafting an agreement with Oman over Strait of Hormuz.

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें हम आपकी पसंद के गानों की फरमाइश जो है वो पूरी करते हैं। और ये जो पहला गाना अभी आपने सुना असली नकली फिल्म से, उसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अबान ने। और उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। और आप भी अगर अपनी पसंद का गाना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर भेज सकते हैं, जैसे ही मौका लगा। आपकी पसंद पूरी हो भी सकती है। अभी तो किसकी पसंद पूरी हो रही है ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद बताती हूँ।

मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज चाहत सादिया आपकी पसंद का गाना उम्मीद करते हैं आपने सुन लिया होगा। राम और श्याम फिल्म का गाना था, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। देखी होगी अगर आपने तो आपको पता होगा कि क्या ही एक्टिंग की थी। दिलीप साहब तो खैर कमाल थे ही, बाकी सबकी एक्टिंग भी कमाल थी और गाने भी बहुत ही प्यारे थे। अभी अगला गाना आ रहा है ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म से, सुखविंदर सिंह जौड़ा सीटी दीवाना की फरमाइश पर।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल का मेल बॉक्स जिसमें बात होती है आपकी फरमाइशों की। और ये जो गाना भी आपने सुना, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी और गीतिका खोरवाल की पसंद का गाना था। आप भी अगर अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम होता है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। तो अब अगला गाना जो है वो किसकी पसंद का आ रहा है, वो है मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़ाहिरा बेगम, मोहम्मद अमान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हाशमी, उनकी पसंद का गाना है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये। मैं हूँ आपके साथ नीतू।

दिल का मेल बॉक्स, जिसमें अब वक्त जो है वो बस गुजरता ही जा रहा है। थोड़ा सा वक्त बचा है जिसमें अब अगली फरमाइश पूरी कर लेते हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी की पसंद का गाना है ये। फिल्म है बैराग।

पसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: है
1: आशिक।
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी।

अब वक्त हो गया है कि बस आखिरी गाना आप तक पहुंचा दिया जाए। तो टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, इनकी पसंद का है ये आखिरी गाना। तो आप अपनी पसंद का गाना एंजॉय कीजिए और नीतू को इजाजत दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे तस्वीर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए।

0: जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने श्री टेड के साथ भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हॉर्मुज जलडमरु मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 24 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरु मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायके, प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजिता हेरात और विदेश सचिव अरुणी राजा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि रंगों, पाउडरों और धान की भूसी के तेल की मिलावट मसालों में की जा रही है ताकि उनके रंग बेहतर दिखें और वजन तथा बाजार भाव बढ़ सकें। श्री रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर तुरंत और सख्त कदम उठाए क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज कक्षा 12 तक के स्कूल बंद हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister said in a social media post that India has a rich tradition of storytelling, an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the country's position as a global hub for content creation. Mr. Modi said that they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector.
0: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
2: Meanwhile, Netflix India has said the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. Students intensified their protest over alleged irregularities in recruitment examinations in Jharkhand ahead of the monsoon session of the State Assembly set to begin today. Five protesters, including two women, joined Jharkhand Lok Tantrik Krantikari Mocha leader Devendra Nath Mahato, who has been on a hunger strike for the past 4 days. Mahato's health became a matter of concern after his blood sugar and pressure levels dropped significantly. Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Home Minister Amit Shah paid tributes to the former Foreign Minister Sushma Swaraj on her death anniversary today. In a social media post, Mr. Birla said that through her incisive oratory, sensitive leadership and unwavering dedication to the nation's interests, Sushma Swaraj carved out a distinctive place in Indian politics. In a social media post, the Home Minister described Sushma Swaraj as the epitome of gentleness and simplicity. Mr. Shah said that Sushma Swaraj performed all her duties from the organization to the government with excellence through the strength of her discipline, diligence and indomitable spirit. In Uttarakhand, intermittent rainfall continues across the state with orange alert issued for Dehradun, Chamoli and Bageshwar. In view of the warning, a holiday has been declared for all schools from classes 1 to 12 and Anganwadi centers today in Dehradun and some other districts. More from our correspondent.
3: The Chief Minister Pushkar Singh Dhami has directed all disaster management and relief agencies in the state to remain alert and to work with utmost vigilance to effectively deal with any possible disaster situation. He has also emphasized monitoring of vulnerable areas, rivers and streams. Chief Minister has instructed district magistrates to keep the district emergency operational centers operational 24 hours and to ensure prompt action on every incident. He said that preventing any loss of life under all circumstances is the government's highest priority. Sakshi Singh, Akashwani Samachar, Dehradun.
2: Union Minister J.P. Nadda has reviewed flood situation in Assam, assures all possible assistance from centre. Deputed by Prime Minister Narendra Modi, the Union Health and Family Welfare Minister toured Nepalikhuri area of Sivasagar district along the Assam-Nagaland border, which is one of the worst hit regions in the latest wave floods that struck on July 19th. In United Kingdom, members of the British Kashmiri diaspora staged a demonstration in Bradford yesterday, expressing solidarity with the people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and voicing support for the demands of the Joint Awami Action Committee. In US, a mass shooting at a rural house in Cassville County, North Carolina, led to multiple deaths. According to the North Carolina State Bureau of Investigation, police responded to a call for service just before 8 a.m. yesterday and arriving on the scene found multiple people who had been shot. In hockey, teams from Odisha, Punjab, Jharkhand and Madhya Pradesh have advanced to the semi-finals of the 16th India Junior Men National Championship Division A after winning their quarter-final matches in Coimbatore, Tamil Nadu yesterday. In today's semi-finals, Odisha will face Punjab while Jharkhand will take on Madhya Pradesh in Coimbatore. And that is the end of this news bulletin.

लीजिए, एक बार फिर से हाजिर है नीतू और ये है तस्वीर, जिसमें हम पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जो जो भी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं उनमें से किसी ना किसी एक जगह की बात आपसे करते हैं। और आज हम बात करेंगे उस जगह की जिसे प्रिंसेस ऑफ हिल्स कहा जाता है, और ये ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत में सबसे पसंदीदा हिल स्टेशंस में से एक है। ये है समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोडेकनाल।

जिसे 1845 में ब्रिटिश अधिकारियों और ईसाई मिशनरियों ने एक डेस्टिनेशन के तौर पर बसाया था। हरी भरी पहाड़ियाँ, घिरते हुए झरने, खूबसूरत झीलें और साफ सुथरे ग्रामीण इलाके, इनके अलावा बोटिंग, साइकिलिंग, घुड़सवारी और ट्रैकिंग यानी एडवेंचर और नेचर सब साथ में। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये, मैं हूँ नीतू और आप सुन रहे हैं तस्वीर। इसकी एक इस इलाके की एक खास बात ये भी है कि कुरिंजी के फूल जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 12 साल में जब भी एक बार वो खिलेंगे।

कोडाई कनाल में सबसे मशहूर जगह है कोडाई झील, जो कि एक कृत्रिम झील है। 1863 में मदुरई के उस समय के कलेक्टर ने इसे बनवाया था और बाद में इसके किनारे एक बोट क्लब भी बनवाया गया। आप चाहें तो यहाँ बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। कोडाई कनाल झील का पानी ना एक शानदार झरना बनाता है, जिसे सिल्वर कैस्केड फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इस झरने को पलानी पहाड़ियों से आने वाली कई जलधाराओं से जो पानी है वो मिलता है, और झील से गुजरने के बाद वो पानी 180 फीट की ऊंचाई से

नीचे गिरता है और वही नज़ारा जो है ना वो सबसे मनमोहक होता है। कोडैकनाल झील के बिल्कुल पास ही है बेयर शोला फॉल्स। ये एक मौसमी झरना है जो मानसून के महीनों में अपनी असली खूबसूरती दिखाता है। कोडाई झील के पास ब्रिटिश सेना के अधिकारी ग्लेन ब्रायंट ने एक पार्क बनवाया था जो कि आज ब्रायंट पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको तरह तरह के फूल देखने को मिलेंगे, खासकर कई रंगों वाले बड़े बड़े डहलिया के फूल यहाँ का मेन अट्रैक्शन है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ ये है तस्वीर और आज बातें हो रही हैं कोडैकनाल की। कोडाई झील के बारे में मैंने आपको भी बताया ही था ब्रेक पर जाने से पहले, और उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर आपको पहाड़ों के किनारे बना एक खूबसूरत सा रास्ता दिखेगा जो अपने शानदार नज़ारों के लिए मशहूर है। और इस रास्ते की खूबसूरती का पता चला था पहली बार 1872 में, जो कि इंजीनियर कोकर थे उन्होंने लगाया था, इसीलिए इस रास्ते को कहते हैं कोकर्स वॉक। अगर आसमान साफ हो तो आपको यहां से डॉल्फिन्स नोज व्यू पॉइंट भी दिखेगा। डॉल्फिन्स नोज समुद्र से 6600 फीट की ऊंचाई पर एक उभरी हुई सपाट चट्टान है जो डॉल्फिन की नाक जैसी दिखती है। किंग जो शौकीनों के लिए, जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ना ये एक बेहतर जगह है, क्योंकि आपको पैदल चल के जाना है और पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। और यहाँ से नीलगिरी के जो नीले पहाड़ हैं और उनकी ढलानों पर फैले हरे भरे चाय के बागानों का शानदार नज़ारा भी दिखता है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे डॉल्फिन नोज इको पॉइंट। यहाँ नेचुरली आपकी आवाज इको करती है।

0: लेकर आए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और जब हम पहाड़ों पर जाते हैं ना, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़, जो कि चीड़ के पेड़ ना हर जगह फैले होते हैं, वहाँ उनके बीच में से गुजरना अपने आप में ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आपने देखे होंगे, फिल्मों में तो देखे ही होंगे, अगर असल में नहीं भी देखे होंगे तो। बिल्कुल वैसे ही फॉरेस्ट ना आपको कोडाईकनाल में मिलेंगे, पाइन फॉरेस्ट, जो कि लगभग एक सदी पुराने हैं। और शायद इसीलिए ये जगह ना फिल्म वालों की ज़्यादा पसंदीदा भी है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और एक और जगह बहुत मशहूर है यहाँ पर, जब वो जगह तब ज़्यादा मशहूर हुई जब तमिल फिल्म गुना की शूटिंग यहाँ पर हुई, डेविल्स किचन। ये एक खूबसूरत हेरिटेज साइट है और डरावनी गुफाओं के समूह को डेविल्स किचन नाम इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ों की कॉलोनियाँ हैं जिन्हें इन गुफाओं की गर्माहट बहुत पसंद है। अब सुरक्षा कारणों से इनके अंदर जाना मना है, पर बाहर से तो आप इन्हें देख ही सकते हैं। बाहर का इलाका शोला पेड़ों और घास से घिरा है। जो बात इन इस जगह को ना बहुत ज़्यादा रहस्यमय बनाती है वो ये है कि इन पेड़ों की ना जो जड़ें हैं वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई हैं और पूरे इलाके में फैली हैं। तो डेविल्स किचन उन लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जिन्हें नई नई जगहों को खोजने का शौक है।

कोडाईकनाल का ना हर कोना खूबसूरत है, लेकिन अगर आपको पहाड़ों पर बहने वाली ठंडी हवा का आनंद लेना है, कोहरे से ढकी पहाड़ियाँ देखनी है, सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देखना है, एक अनोखा अनुभव लेना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगी साइलेंट वैली व्यू। वहाँ आप जाइए, घाट की जो सड़कें हैं धीरे धीरे जंगलों और चाय के बागानों से होकर गुजरती हुई आपको इस पहाड़ी की चोटी पर ले जाएंगी, जो आसपास का एक बेहद मनमोहक दृश्य आपको दिखाएगी। कोडाईकनाल की घुमावदार घाट वाली सड़कें जो हैं वो आपको मोयर पॉइंट तक भी ले जाती हैं, जो धरती पर स्वर्ग के एक टुकड़े जैसा है, और जहाँ से खूबसूरत वेल्लागावी जो जंगल है उसका नज़ारा दिखता है। इस इलाके में टहलने के लिए घुमावदार रास्ता है, एक वॉच टावर भी है, और एक ऊँचे चबूतरे की तरह वो वॉच टावर काम करता है, जहाँ से 360 डिग्री का व्यू दिखाई देता है कोहरे और धुंध में ढका हुआ। पहाड़ों की खूबसूरती तभी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना, जब वहाँ कोहरा छाया हो, हरियाली के बीच वो कोहरा अपने आप में अलग से अच्छा महसूस होता है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: कोडाई कनाल की बातें कर रहे हैं आज हम तस्वीर में, जहां पर है कोडाई झील। और उस झील के अलावा यहां मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील भी है जिसका नाम है बैरिजम झील। लेकिन यहां तक जाने के लिए फॉरेस्ट पास की ज़रूरत होती है। आप यहां मछली पकड़ सकते हैं, पक्षियों को देख सकते हैं या झील

ऑब्जर्वेटरी में मौजूद है 20 cm रिफ्रेक्टर, जिसका इस्तेमाल कभी कभी धूमकेतु और दूसरी आकाशीय घटनाओं के ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। ऑब्जर्वेटरी ने कैंपस में आने वाले लोगों के लिए एक एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम भी बनाया है, जहां मुख्य रूप से तस्वीरों के जरिए या कुछ मॉडल्स के माध्यम से जानकारी दी जाती है। और भी बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन ये ऑब्जर्वेटरी पूरा साल विजिटर्स के लिए खुली नहीं होती है, इसलिए जाने से पहले कन्फर्म करके जाइएगा।

बिल्कुल कोडाईकनाल जाएंगे आप तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ और नहीं चाहिए, आपको इसी जगह पर बस जाएं आप। लेकिन अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी है। निकटतम रेलवे स्टेशन है पलानी रेलवे स्टेशन, निकटतम एयरपोर्ट है मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से आप बस या टैक्सी लेकर कोडाईकनाल पहुंच सकते हैं। अभी नीतू इजाजत चाहती है, लेकिन चलते चलते आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना इस मौसम को एंजॉय करने वाला छोड़ के जा रही हूँ। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
3: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
2: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings which provides every member an opportunity to raise issues. Mr. Birla added that Parliament is meant for discussion, for raising questions and for meaningful exchange of ideas. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. Earlier, the Rajya Sabha was adjourned till 12 noon, following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the ministers laid papers on the table.

आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन, और आज के अंक में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 14.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, एक सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ही ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी।

यानी कि हमारी जो बोली है, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो बहुत अनमोल है। इसलिए हमेशा मन में अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। ठीक से अगर हम बोलते हैं तो लोगों के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हम अच्छे से किसी से बात नहीं करते तो लोग हमसे रूठ भी जाया करते हैं। इसलिए अपनी बोली को सोच समझ कर खर्च कीजिए। और हर दिन हम अपने कार्यक्रम में आप सबसे पूछते हैं एक प्रश्न। तो भाई आज मौसम ऐसा है, बारिश का, बाहर बरसात हो रही है, और बरसात को देखकर मुझे याद आ रहा है ये प्रश्न। मुझे लग रहा है कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में ऐसे कई सारे किस्से जो है वो अनुभव किए हैं, तो अब आपके अनुभव भी मैं जानना चाहती हूं। तो हमारा प्रश्न आपके लिए ये है कि भाई आप हमें अपने जीवन का वो रोचक किस्सा बताइए जब आप बारिश में फिसल कर गिरे हों, लेकिन आपको उस गिरने की खुशी हुई हो कि भाई अरे वाह, अच्छा हुआ मैं गिर गया और मुझे तो अच्छा लगा, आनंद आया, बारिश में भीग लिया इसी बहाने। तो ऐसे आपके जो भी अनुभव हैं वो आप हमें लिख कर भेज दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी जल्दी आप अपने आंसर हमें भेजिए। और अभी फ़िलहाल हो गया है वक्त इस प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम नगर फिल्म से, जिसे गाया आशा भोंसले और किशोर कुमार ने। तो देखिए, एक शेर है कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है, और जो लोग कुछ अच्छा करके जाते हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए, कुछ ख़ास मौक़ों पर वे हमें बहुत याद आते हैं। जैसे कि आज का दिन है, तो आज के दिन विशेष में हम याद कर रहे हैं भारत के अग्रणी राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और समाज सुधारक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। आज 6 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर देश उनके राष्ट्र जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को श्रद्धापूर्वक याद करता है, और हम उन्हें अपनी पूरी टीम की तरफ से शत शत नमन करते हैं। साथ ही दोस्तों, हम प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे, जो युद्ध की विभीषिका से बचने के साथ ही शांति, मानवता, अहिंसा और परमाणु हथियारों से मुक्त जो विश्व की आवश्यकता है उसका संदेश देता है। सभी मिलजुल कर रहें, सभी प्रेम से रहें, इस भाव को ये मजबूत करता है। और ऐसा इसका संदेश है कि जो पहले हुआ है, आगे वो त्रासदी कभी दोहराई ना जाए। सही बात है कि किसी शायर ने भी कहा है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। और जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, तो जब हम सावन की तरफ बढ़ते हैं, सावन को भी मोहब्बत का महीना, प्रेम का महीना कहा जाता है। लेकिन ये जो बरसात है, ये भी कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कुछ ना कुछ उत्साह भरती है, कुछ ना कुछ निर्मल करती है, और हमारे अंदर एक ऊर्जा का, एक प्रेम का संचार करती है। तो जब मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ सावन को बरसते हुए, तो मेरे मन में आता है कि मैं आपको ये प्यारा सा गीत सुनवाऊं।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे बंधन फिल्म से, आवाज थी महेंद्र कपूर की। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भाई क्या कभी आप बरसात में फिसल कर गिरे हैं जब छोटे बच्चे थे बचपन में, तो और आपको अच्छा लगा हो कि भाई अच्छा हुआ मैं गिर गया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम भीगने का मन होता है लेकिन हमारे मम्मी पापा या बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं भीगना है, तो अगर हम बरसात में गिर गए तो यही होता है ना कि चलो हमारे मन का हो गया। तो हमारा प्रश्न ये था, तो हमारे बहुत से जो श्रोता हैं उन्होंने हमें लिखकर भेजा है उत्तर। तो सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा ईमेल आया है हरेंद्र कुमार त्यागी का। ये लिखते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व की घटना है, मेरे घर से दुकान तक जाना पड़ता था, रास्ता कच्चा था, तो मैं बड़ा सुंदर सा वाइट कलर का शर्ट और पैंट पहन के निकला छाता लेकर। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब दुकान के पास पहुँचा तो मेरा पैर फिसल गया और मैं उस कीचड़ में गिर गया। पहले तो थोड़ी देर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैं खुद ही बहुत ज़ोर से हंसने लग गया क्योंकि मुझे चोट नहीं आई थी और मैं उस बरसात मैं खुशी खुशी एंजॉय करना चाहता था। और ये देखकर जो मेरे दोस्त हैं वो भी बड़े खुश हुए और हंसने लगे। इसके अलावा नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि जब अमृतसर गुरुद्वारा साहब गए थे तो वहाँ पर काफ़ी साल पहले अपने परिवार के साथ सरोवर साहब के सामने मेरा पैर फिसल गया था, लेकिन मुझे चोट नहीं आई थी पर मुझे वहाँ पर फिसल के अच्छा लगा था। ऐसे ही अफरोज़ शेख जी लिखती हैं कि भई बरसात में कई बार गिरने से मुझे चोट लगती थी और इसके लिए मुझे दादी से मार खानी पड़ती थी, वो अब दुनिया में नहीं है, आज मैं जो भी हूँ दादी की वजह से हूँ। बहुत ही अच्छी आपने बात लिखी है कि हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं कि कभी उन्होंने हमें किसी बात के लिए कुछ कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी वास हिसार से राजू अग्रवाल और विवेक प्रियांशी बारिश के मौसम में तालाब के पानी को हथेली से मिट्टी के रैंप पर उछालते थे और उस पर पैर फिसलाते थे, आज बुढ़ापे में फिसलने से बचते हैं। भाई फिसलने के लिए तो वही उम्र सही होती है, अब तो ऐसी उम्र है कि अब हम नहीं फिसल सकते। तो अभी नवीन कुमार जी का भी देखिए एक ईमेल आया है, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है कि बचपन में ऐसा होता था कि बारिश के पानी में कागज़ की नाव चलाने के चक्कर में फिसल कर गिर पड़ा, कपड़े पूरे भीग गए और सब दोस्त हंसने लगे, लेकिन उसी बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी हो गई, फिर हम सब ने पूरे दिन बारिश में खेला। उस दिन गिरने की चोट से ज़्यादा छुट्टी मिलने की खुशी यादगार बन गई, क्या कहने। ऐसे ही कुछ मेरे भी अनुभव हैं। और ऐसे ही राधा शुक्ला लिखती हैं कि बारिश में भीगने तो मतलब भीगे हैं लेकिन हम कभी फिसले नहीं। बचपन में जब भी बारिश होती थी मैं हमेशा भीगती थी और मेरी बहन हमेशा डांटती थी कि बीमार हो जाओगी, बुखार आ जाएगा, इसलिए अपना ध्यान रखो, लेकिन मैं मानती नहीं थी। ऐसे ही एक और ईमेल हमारे पास आया है गरिमा गोयल जी का, वो लिखती हैं कि बारिश में जब मैं सब्जी लेने निकली थी रास्ते में पैर फिसला और मैं गिर गई, तभी मेरे हाथ से छाता उड़ गया और पीछे चल रहे मेरे पति उसे पकड़ने के लिए भागे, उन्हें भागते देखकर मैं अपनी चोट भूल गई और हम दोनों हंसते हंसते घर लौटे। आज भी वो बरसाती किस्सा याद आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या बात है दोस्तों, आपके पास तो बारिश के बहुत सारे किस्से हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे, इतने अच्छे कि सुनकर मुझे आनंद आ रहा है। तो आपने जो अपने ईमेल से, अपने अनुभवों से, अपने ये गिरने वाले जो हमारे साथ प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं, तो उनको सुनने के बाद मुझे एक बहुत ही मज़ेदार सा गीत याद आ रहा है, तो मैं आपको वो गीत सुनवा देती हूँ। आप सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, क्या बेहतरीन गीत था और बहुत ही आनंद आया गीत सुन के। लेकिन दोस्तों देखिए, बरसात का जो मौसम है वो आता है तो इतना सुहाना भी नहीं लगता है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन अगर आप सजग हैं, अगर आपने तैयारी अपनी पूरी कर रखी है तो आप बिल्कुल एंजॉय कर पाएंगे। तो देखो, बारिश का मौसम जो है देखने में तो सुहाना है, लेकिन अपने साथ कई तरह की बीमारियों और समस्याएं भी साथ लेकर आता है। मानसून के दौरान होते हैं रास्ते जाम, और कभी कभी कीड़े मकोड़े भी रेंगते हुए आपसे टकरा जाते हैं। तो जो व्यक्ति है कई बार वो बेमौसम की बारिश में भीग भी जाता है, कई बार जूतों में पानी भरने के साथ कीचड़ में फिसलने का भी डर बना रहता है। यही वजह है कि इस मौसम में अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए डॉक्टर भी लोगों को कई चीज़ों का खास ख्याल रखने की सलाह देते हैं। ऐसे में अगर आपके लिए बारिश में घर से बाहर निकलना ज़रूरी है तो आपको कुछ बातें करनी चाहिए, जैसे कि बारिश के मौसम में ऐसे फैब्रिक के कपड़े पहनने चाहिए जो गीले होने पर जल्दी सूख जाते हों। सबसे बेस्ट रहते हैं सिंथेटिक कपड़े, क्योंकि ये जितनी जल्दी भीगते हैं ना उतनी जल्दी ये सूखते भी हैं। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, हमेशा एक प्लास्टिक बैग जरूर रखें अपने पर्स के अंदर, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है बरसात के मौसम में। और आज तो इस समय तो सावन है, तो बाहर का कुछ भी अगर आपको खाना पीना है तो उससे कोशिश कीजिए कि नहीं खाएं पिएं, क्योंकि नमी और गर्मी के कारण बैक्टीरिया और वायरस भोजन में जल्दी पनपते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी और अन्य पेट संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। और अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, आपको लगता है कि अब तो बाहर का खाना पड़ेगा, तो उसका भी उपाय है भाई, आप घर पे बना सकते हैं सूखा नाश्ता, जैसे मठरी हो गया, चिप्स हो गया, पापड़, या फिर आप अपने साथ सत्तू भी रख सकते हैं, साथ ही दवाइयाँ और सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि भाई जो रियल टाइम मौसम अपडेट है ना, वो पाने के लिए आपको मौसम ऐप्स का भी

प्रयोग करना है। इससे होगा क्या कि बारिश में ट्रैफिक और सड़कों की जो स्थिति है वो खराब होती है, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि भाई बारिश आज होने वाली है, संभावना है, तो आप उस तैयारी के साथ निकलेंगे, तो इस आप थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेकर भी निकलेंगे। तो इसलिए जब भी आप बरसात के मौसम में बाहर निकलने वाले हो ना, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और याद रखिएगा, मेरी इन बातों को अपने मन में दोहराते रहिएगा, तो इससे क्या होगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी जो परेशानियां होने वाली होंगी उनसे आसानी से छूट जाएंगे। तो भाई देखो, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, छाता की बात तो मैंने की ही नहीं, तो आपको छतरी लेकर ही निकलना है। छतरी लेकर जाएंगे तो बरसात के मौसम में बारिश से आप बचे रहेंगे।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आपने सुना दो झूठ फिल्म से, जिसे गाया किशोर कुमार और उषा मंगेशकर ने, तो उनकी आवाज़ में आपने बेहतरीन सा गीत सुना। और देखिए, बरसात की बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन अभी मुझे एक प्यारा सा दोहा याद आ रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि छोटा हूँ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। और अब बात एक ऐसी छोटी सी घास की, जिसे हम कभी मतलब ध्यान ही नहीं देते कि भाई ये इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक साधारण सी घास भी खूबसूरत सा हस्तशिल्प का रूप ले सकती है। तो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो मूंज शिल्प हैं, इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वो प्रस्तुत करता है, मूंज यानी मूंज से ही बनता है। तो प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती के जो कारीगर हैं, वो पीढ़ियों से मूंज की बनाई कर रहे हैं, मूंज की बुनाई कर रहे हैं और उसी कला को संजोए हुए हैं। उनके हाथों से बनी हर वस्तु मेहनत, धैर्य और पारंपरिक हुनर की कहानी कहती है। आज जैसे हम सोचते हैं कि भाई अब हमारे किस काम आ सकता है मूंज, तो मैं बताती हूँ कि भाई मूंज से बनी जो टोकरियाँ हैं, जो चटाइयाँ हैं, इसके अलावा डस्टबिन है, लॉन्ड्री बास्केट है, फल और सब्जी रखने की जो टोकरी है।

ट्रे, स्टोरेज बॉक्स, पेन स्टैंड, फूलदान, प्लांटर कवर, पूजा की टोकरी और सजावटी जो वस्तुएं हैं वो हम अपने घरों में उपयोग कर सकते हैं। ये उत्पाद न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ भी हैं। तो क्यों ना अभी से प्लास्टिक की जगह मूंज से बने हस्तनिर्मित उत्पाद अपनाए जाएं। इससे हमारा घर भी सजेगा, पर्यावरण भी बचेगा और जो स्थानीय कारीगरों के जीवन में खुशियां भी आएंगी तो उससे हमें भी खुशी मिलेगी और हम वोकल फॉर लोकल की ओर भी बढ़ेंगे एक कदम। साथ ही जो मूंज शिल्प जैसी हमारी अनमोल विरासत है उसको आगे बढ़ाने में हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे पाएंगे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये जो मूंज के उत्पाद हैं, इनको सिर्फ किताबों में ना पढ़ते रह जाएं बल्कि अपनी आँखों से उन्हें देख भी पाएं।

दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे पिघलता आसमां फिल्म से, जिसे गाया किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अब आपको एक शेर फिर से सुनाती हूँ कि सफ़र पर जब रहूँ तो याद वो अक्सर ही आती है, कि सफ़र पर जब रहूँ तो याद वो अक्सर ही आती है, मैं जब जब घर को जाता हूँ दीवारें मुस्कुराती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ घर ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पहुँचते ही सारी थकान गायब हो जाती है। ऐसा घर महंगे फर्नीचर या बड़ी इमारत से नहीं बनता, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के व्यवहार से बनता है। घर में अगर मुस्कुराकर स्वागत हो, एक दूसरे की बातें सुनी जाएं, छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ कर दी जाएं और साथ में बैठने का समय निकाला जाए, तो वही घर दिल का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन जाया करता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब भी दरवाज़ा खुला

तो बिखरे हुए खिलौने ये बता दें कि भाई घर में बचपन अभी भी जिंदा है। रसोई से आती खुशबू कहे कि हाय तुम्हारा ही तो इंतजार था। कमरा चमचमाता हो लेकिन उससे भी ज्यादा रिश्ते सजे हुए हों। बच्चों की हंसी दीवारों से टकराकर गूंजती हो और बड़ों की जो दुआएं हैं वो आंगन में ठहरती हों और कोई अपना बस इतना पूछ ले कि थक गए होंगे ना। याद रखिए, घर की पहचान उसकी कीमत से नहीं उसके एहसास से होती है। तो सब मिलकर कोशिश कीजिए कि घर ऐसा हो जहाँ से निकलते समय लोग मुस्कुराए और लौटते समय दिल कहे कि चलो ना घर की ओर चलते हैं।

श्रोताओं, अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे जीवन मृत्यु फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। और देखिए, हमारे श्रोताओं ने हमें ईमेल किया है, जो मैंने प्रश्न पूछा था शुरुआत में कि भाई अगर आप बरसात में कभी फिसल कर गिरे हैं और आपको अफसोस नहीं बल्कि खुशी हुई हो, तो हमें अपना कोई ऐसा अनुभव लिख कर भेजिए। तो हमें सुदर्शन मुखी जी ने भी लिखा है कि भाई वो बारिश में गिरे तो हैं लेकिन उनको थोड़ी सी चोट आई थी, पर वो कोई बात नहीं, बरसात में घूम जब बच्चे थे तो बरसात में जब वो घूमे थे तो उनको गिरने से चोट से ज़्यादा उनको बारिश में भीगने का आनंद आया था। ऐसे ही हमारे साथ गौरी शंकर वर्मा जी जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं, कल्पना बेटा राम राम, राम राम आपको। तो कहते हैं, मेरी शादी कुछ 6 महीने हुए थे, स्कूटर मेरा ख़राब हो गया था, मैं अपनी घरवाली को साइकिल पर फिल्म दिखाने ले गया।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि पानी बचाना केवल सरकार की नहीं हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने राजस्थान के अलवर में जोहड़ों के पुनर्जीवन, महाराष्ट्र के जलगांव के जल संरक्षण अभियान और देश भर में तालाबों की सफाई व वर्षा जल संचयन जैसे प्रयासों की खूब खूब सराहना की है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो सूखी धरती फिर से मुस्कुराने लगती है। तो आइए इस बरसात हम भी एक छोटा सा संकल्प लें, छत का वर्षा जल सहेजें, रिचार्ज पिट बनवाएं, तालाबों और कुओं की सफाई में सहयोग करें और पानी की एक एक बूंद की कद्र करें। याद रखिए, बारिश का पानी अगर आज बचा लिया तो कल पानी की कमी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। झूमता

उजाला फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में। और श्रोताओं, चलिए अब बात करते हैं कुछ महिलाओं की। भाई, भारत जो है वो त्योहारों का देश है और महिलाएं स्वभाव से ही उत्सवधर्मी होती हैं। ऐसे में उनका हर दिन खास और महीने के साथ उनकी एक कहानी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन महीना उनके लिए क्यों खास है? तो चलिए आपको गांव की तरफ ले चलते हैं, पुराने समय में ले चलते हैं। और अभी भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां महिलाएं साल भर खेती के कामों में व्यस्त रहती हैं। बरसात में उनके काम का जो स्वरूप है ना, वो थोड़ा सा बदल जाता है और उन्हें कुछ समय अपने लिए भी मिल जाता है। तो सब

बैठकर एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाया करती हैं और वो प्राकृतिक मेहंदी जिसके पत्ते पीस कर सब लगाया करती हैं उसका रंग अलग ही चढ़ता था। तो हमारे गांव में तो जब अंधेरा हो जाता था तब घर की जो बहुएं हैं वो अच्छे से श्रृंगार करके पड़ोस वाली चाची के घर के सामने नीम के पेड़ पर पड़े झूले झूलने जाती थी और बड़े प्यारे प्यारे सावन के कजरी गीत गाया करती थी। तब पड़ोस के जो चाचा ताऊ होते थे वो उनकी सुरीली तान सुनकर पूछते थे कि भाई ये किसकी बहू गा रही है। गीत भी ऐसे कि जो बातें मन में रह जाती थीं वो गीत के माध्यम से बाहर आ जाया करती थीं। यानी सावन केवल त्योहारों का नहीं बल्कि महिलाओं की अभिव्यक्ति, उनकी आवाज़, उनके अपने समय और उनके उत्सव का महीना भी होता था। शायद इसलिए भी सावन के आने के साथ प्रकृति ही नहीं महिलाओं का मन भी उल्लास से भर उठा करता था। तो आप ऐसे ही उल्लास से भरे रहिए और इस उल्लास को दुगना करने के लिए मैं आपको एक खूबसूरत सा गीत भी सुनवा देती हूँ।

दोस्तों अभी ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे नमक हलाल फिल्म से, जिसे गाया आशा भोंसले और किशोर कुमार ने। और देखिए हमारे पास एक ईमेल और आ गया है बबली सिंह का। वो लिखती है कि एक बार स्कूल में फिसल के गिरे थे, क्लास 5 में थे उस टाइम, जबकि बात है गिरने पे मज़ा इसलिए आया था क्योंकि फिर स्कूल से छुट्टी मिल गई थी तुरंत ही। तो यही होता है कि भाई स्कूल जाते टाइम अगर आप गिर जाओ तो फिर आपको छुट्टी तो मिल ही जाती है। और ऐसे ही एक मेल आया है राजेश्वर राव जी का, वो भी कहते हैं कि भाई कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और बारिश के बहुत अच्छे अच्छे गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आपको बारिश का एक और गीत सुना देते हैं इसी बात पर।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत छलिया फिल्म से आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज़ में, और इस गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को आज के गरागन के इस अंक से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के

0: आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है, हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the lower house paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on the issue. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings, which provides every member an opportunity to raise issues. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has been adjourned till 2:15 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the question hour amid opposition uproar. Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat replied to a question related to tourism infrastructure in mountains and borders. He said his ministry has advised states to develop a coordinated grid system to ensure adequate medical preparedness, necessary precautions and timely evacuation facilities in case of emergencies. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal replied to a question related to posts and vacancies in courts. During the question hour, the opposition members continued with their sloganeering. As the pandemonium continued, the chairman adjourned the house till 2:15 p.m. BJP MP and chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Community

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं। वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा में के एक ऐसे गीतकार की जो अपने भावपूर्ण गीतों से सबका मन मोह लेते थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट गीत दिए जिन्होंने हम सबके दिलों को छुआ। हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार गुलशन कुमार मेहता की, जिन्हें हम और आप गुलशन बावरा के नाम से जानते हैं। गुलशन बावरा अपने शानदार गीतों की वजह से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि वे एक गीतकार होने के साथ साथ अभिनेता भी थे। तो आज हम और आप कलाकार बेमिसाल के जरिए बात करेंगे इसी खास शख्सियत की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं रुचिका आपके साथ।

ये गीत आपने सुना फिल्म उपकार से, और गुलशन बावरा ने इसे इतने भावपूर्ण तरीके से लिखा कि ये हर भारतीय के दिल को छू गया। और इस गीत को महेंद्र कपूर ने गाया था। मनोज कुमार पर फिल्माए गए इस गाने के लिए गुलशन बावरा को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार गुलशन बावरा की। उनकी कलम से कई ऐसे गीत निकले जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। 12 अप्रैल को जन्मे इस गीतकार ने विभाजन के दौरान हुए दंगों में अपने पिता और चाचा को खो दिया था, जिसका दर्द उनके कई गीतों में भी झलकता है। और इस घटना के बाद उनकी बड़ी बहन ने उन्हें पाला। गुलशन बावरा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। बाद में वे मुंबई पहुंचे और रेलवे में नौकरी के साथ साथ फिल्मों में काम करने के लिए भी संघर्ष किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और हिंदी सिनेमा में उन्होंने अपनी कलम से पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। 42 साल के करियर में उन्होंने करीब 240 गीत लिखे।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत और फिल्म थी कस्मे वादे। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के ज़रिए हम बात कर रहे हैं गुलशन कुमार मेहता जी की, जिन्हें हम और आप गुलशन बावरा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने 42 साल के करियर में करीब 240 गीत लिखे और उनका जन्म 12 अप्रैल 1937 को हुआ था। और उनके शुरुआती दौर की यदि हम बात करें, जब उन्होंने अपना करियर एक गीतकार के तौर पर शुरू किया था, तो एक फिल्म थी सट्टा बाजार जो रिलीज़ हुई थी 1959 में। उस फिल्म के एक गीत ने उन्हें खास पहचान दिलवाई थी। कल्याण जी आनंद जी के संगीत में बना ये गीत उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। उन्होंने मौका दिया था उन्हें कि वो गीत लिखें उनकी फिल्म सट्टा बाजार के लिए, और इस गीत को हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। गुलशन बावरा जी के करियर के शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें फिल्म चंद्र सेना का एक गीत लिखने का मौका दिया था, और उसके बाद गुलशन ने इस मौके को बिना गंवाए गीत लिखा और गीतकार के तौर पर अपनी खास पहचान बना ली थी। लेकिन फिलहाल हम आप तक पहुंचाते हैं फिल्म सट्टा बाजार से वो गीत जो पहचान बना गुलशन बावरा जी के लिए और उनके करियर में ये गीत एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। हेमंत कुमार और लता जी की आवाज़ में सुनिए ये गीत।

0: ये गीत आपने सुना फिल्म सट्टा बाजार से, और आपको बता दें कि इसे फिल्म के दौरान शांति भाई पटेल ने गुलशन के काम से खुश होकर उन्हें बावरा उपनाम दे दिया था, जिसके बाद से वे गुलशन बावरा के नाम से पहचाने गए। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनमें सट्टा बाजार, उपकार, जंजीर, खेल खेल में, कस्मे वादे, सत्ते पे सत्ता, ये वादा रहा अगर तुम न होते, हकीकत जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उनके बारे में और भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
7: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
6: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
7: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

गीतकार गुलशन बावरा जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कलाकार बेमिसाल के जरिए उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनमें उपकार, जंजीर, हाथ की सफाई, खेल खेल में, कस्मे वादे, झूठा कहीं का, सत्ते पे सत्ता, सनम तेरी कसम, ये वादा रहा, अगर तुम ना होते और हकीकत जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। और साथ साथ वो कई फिल्मों में एक अभिनेता के तौर पर भी दिखाई दिए, जिनमें उपकार, परिवार, पवित्र पापी, प्यार की कहानी, जंजीर, आपके दीवाने, ये वादा रहा, अगर तुम ना होते, बीवी हो तो ऐसी, इंद्रजीत, इंग्लिश बाबू, देसी मेम जैसी कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अभिनय किया।

गुलशन कुमार मेहता ने अपने गीतों से लगभग 3 दशकों तक श्रोताओं का मनोरंजन किया। उन्होंने कई सदाबहार गीत हिंदी सिनेमा को दिए। फिल्म जंजीर और उपकार के गीतों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। 7 अगस्त 2009 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने गीतों के जरिए, कलम के जरिए वे अपने चाहने वालों के बीच आज भी जिंदा हैं और हमेशा याद किए जाएंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। बहुत से मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। आज उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। हॉकी इंडिया ने AHF एशिया कप 2026 के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन की जूनियर टीम का ऐलान किया है, जो इस महीने की 30 तारीख से चीन के शहर मोकी में शुरू होगा। और भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज 20 साल तक की उम्र के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बम के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए जाने के सानहे को 81 साल हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: ऐवान में हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बम के मुतासरीन की याद में खामोशी भी इख्तियार की गई। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। अपोजिशन के अरकान इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि वक्फे सवाल ऐवान की कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है, जो हर मेंबर को मामला उठाने का मौका फराहम करता है। जनाब बिरला ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट बहस करने, सवाल उठाने और नजरियात के बामाने तबादले के लिए है। शोरगुल जारी रहा तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर दोपहर 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार

0: मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो सदर नशी सीपी राधाकृष्णन ने शोरगुल के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने अपनी नारेबाजी जारी रखी। शोर शराबा जारी रहा तो सदर नशी ने कार्रवाई 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और मौसलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की मुआफी को भारतीय कवानीन आईन और पार्लियामेंट की जीत करार दिया है। पार्लियामेंट के अहाते में नवानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे वजीर आजम की ताकत का इजहार होता है जो 140 करोड़ लोगों की क्यादत करते हैं और इससे ये बात भी जाहिर होती है कि भारत के साथ जो कोई भी कारोबार करने का ख्वाहिशमंद है उसे भारतीय कानून की पाबंदी करनी होगी।
1: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के एक मामले में कसूरवार गर्दाना है जिसका ताल्लुक उसकी एक साबिक जूनियर साथी से है। बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंदेकर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तेजपाल को ताजिरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार गर्दाना है। अदालत ने कि वो आज तीसरे पहर सजा सुनाएगी। समाप्त के दौरान तेजपाल ने कहा कि वो सियासत का शिकार हुआ है और दो लड़कियों का बाप है, लिहाजा उसके साथ नरमी बरती जाए। गोवा सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से इस्तदा की कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि एक मजबूत पैगाम जा सके। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तेजपाल की साबिक जूनियर साथी ने नवंबर 2013 में एक होटल के एलिवेटर में जिंसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। 2021 में जेली अदालत ने उसे बरी कर दिया था लेकिन गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड, झारखंड, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुल्क के शुमाल मशरक के हिस्सों और अंडमान निकोबार जजायर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि कौमी राजधानी में कल तक औसत से शदीद बारिश हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पूरे हफ्ते यहां हल्की बारिश का इम्कान है। उड़ीसा में महानदी समेत बड़े दरियाओं में सतेआब में कमी आने के सबब सैलाब की सूरतहाल बदस्तूर बेहतर हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: उड़ीसा में महानदी समेत सभी बड़े दरियाओं में पानी की सतह कम होने से सैलाब की सूरत हाल रफ्तार रफ्तार बेहतर हो रही है। इस वक्त हीराकुंड बांध के 8 गेट खुले हैं ताकि उसके पानी की सतह को कंट्रोल किया जा सके। सतह आब में कमी के बावजूद सैलाब से मुतासिर अफराद की मुश्किलात बरकरार है और जिंदगी के मामूलात की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। इस दौरान कल रात से शदीद बारिश जारी रहने से राजधानी भुवनेश्वर में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केओंझर और मयूरभंज अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और बकिया जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल 20 अजला में बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बिला रुकावट जारी है और अब तक मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरू होने के बाद से 4,70,000 से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दाखला ने मोहतरमा सुषमा स्वराज को शाइस्तगी और सादगी की मिसाल करार दिया। जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने तंजीम से लेकर हुकूमत तक अपने सभी फराइज नज्म व ज़ब्त, वक़ार और पुख्त

0: आजम के साथ अंजाम दिए। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मौकी में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 रुकनी खवातीन की भारतीय जूनियर टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 18 खिलाड़ी हैं जिसकी क्यादत मिडफील्डर खैदम शिलेइमा चानू करेंगी। भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ियों आशीष यादव और टी धरणीधरन ने अमेरिका के शहर यूजीन में जारी 20 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज ने हतमी मरहले में पहुंच गए हैं। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बहुत से मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। आज उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। हॉकी इंडिया ने एएचएफ एशिया कप 2026 के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन की जूनियर टीम का ऐलान किया है जो इस महीने की 30 तारीख से चीन के शहर मौकी में शुरू होगा। और भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कंबोज 20 साल तक की उम्र के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Lok Sabha adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha also adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehelka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Moshi, China from August 30th. And three javelin throwers Ashish Yadav, T. Dharanidharan and Amanat Kamboj storm into finals at World Athletics Under 20 Championships. The Rajya Sabha has been adjourned till 2:15 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up question hour amid opposition uproar. Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat replied to a question related to tourism infrastructure in mountains and borders. He said the centre has advised states to strengthen health and safety mechanisms at all major adventure tourism destinations. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal replied to a question related to posts and vacancies in courts. During the question hour, the opposition members continued with their sloganeering. As the pandemonium continued, the chairman adjourned the House till 2:15 p.m. Earlier, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests.

0: one districts today, and a yellow alert for the remaining districts. Rainfall alerts have also been issued for 20 districts tomorrow, though rainfall activity is expected to decrease over southern and western Odisha. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: On to sports, Indian javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under-20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. Hockey India today announced the 18-member Indian junior women's team for the AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August the 30th to September the 13th. The squad comprises 18 players along with two alternate players and will be led by midfielder Khaidem Shlema Chanu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha resumes proceedings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under-20 Championships. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Nikhil Kumar. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
3: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
2: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने

0: और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नियत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
3: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। That should be the commitment.
0: भाजपा सांसद

0: तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
1: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
2: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
3: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
4: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
3: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो,

विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। मैं रुचिका आपके साथ, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और शुरुआत करते हैं संगीत.com के सफर की।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, संगीत.com का सफ़र जारी है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। आपको याद है फिल्म आई थी साजन? जी हाँ, साजन फिल्म जिसमें सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नज़र आए थे। और ये जो फिल्म थी उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी। और ये जो फिल्म थी ख़ास तौर से अपनी कहानी और गानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और इस फिल्म के जो गीत थे वो उस वक्त क्या आज भी हर किसी की ज़ुबान पर थे, और आज भी हम इस फिल्म के, साजन फिल्म के गीतों को गुनगुना ही लेते हैं। और कभी कभी जो एक फिल्म होती है वो सिर्फ कहानी और गीतों के लिए ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे दिलचस्प और अनसुने किस्से होते हैं उनके लिए भी जानी जाती है। तो चलिए आपको कुछ किस्से बताते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए। ख़ास तौर से आपको बता दें कि उस दौर में जो है शूटिंग वो कई महीनों तक चलती थी, लेकिन इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो सिर्फ 36 दिनों में पूरी हो गई थी, जो उस दौर के हिसाब से एक बड़ा रिकॉर्ड था। और इतनी बड़ी रोमांटिक ड्रामा फिल्म महज 36 दिनों में उसकी जो शूटिंग थी वो पूरी कर ली गई थी, ये एक अपने आप में बड़ी बात थी। और तो और एक और बात है कि फिल्म में संजय दत्त ने जो अपना किरदार निभाया था उसके लिए फिल्म के मेकर्स की पहली पसंद आमिर खान थे, लेकिन उनके लिए शायद उनके साथ बात नहीं बन पाई तो इस फिल्म में संजय दत्त की एंट्री हुई। और ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें संजय दत्त और सलमान खान ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया था। तो चलिए इस फिल्म के किस्से हमने आप तक पहुंचाए, तो इस फिल्म का एक गीत भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं। संगीत.com का सफर जारी है। फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं सुपरहिट फिल्म परदेस का ये सुपरहिट गाना। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हर फिल्म से जुड़ा कोई ना कोई एक किस्सा ज़रूर होता है, और इस फिल्म में महिमा चौधरी ने गंगा का रोल निभाया था, और इस रोल के लिए सबसे पहली पसंद सुभाष घई की माधुरी दीक्षित थी, लेकिन बात नहीं बन पाई तो महिमा चौधरी ने ये रोल निभाया। क्या बखूबी निभाया और खूब जची वो इस रोल में, और सुभाष घई को एक मासूम से चेहरे की तलाश थी जो इस अदाकारा पर आकर पूरी हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वती और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। बम्बई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया। न्यायालय की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत दोषी पाया जो विश्वास या अधिकार के पद पर रहते हुए दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने से संबंधित हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक में बल को और मजबूत करने तथा इसकी समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रादेशिक सेना नागरिक सैनिक अवधारणा का जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के स्थगन के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष अब तक देश भर से लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं।
2: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। नगर से इश्फाक शाह।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राम प्रकाश, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन। जी हां, वही प्रोग्राम जहां आपके मन के करीब जो गीत होते हैं आप उन्हें लिख भेजते हैं हम तक अपनी फरमाइश के रूप में, और साथ ही आप लिखते हैं अपने मन के करीब जो कुछ शायरियां हैं, कुछ लाइन है, वो भी आप हमें लिख भेजते हैं, और अगर वो शायरी वो लाइन अच्छी होती है तो उसे हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और लिख भेजिए अपना प्यारा सा संदेश fmgoldair@gmail.com पर। जी हाँ, और ये मैसेज आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। जी हाँ, तो देर किस बात की, जल्दी से लिख भेजिए, और तब तक हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा।

जी हाँ, रिमझिम घिरे सावन और दिल्ली में भी बारिश जो है वो रिमझिम रिमझिम बरस रही है। और जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो इस रिमझिम में मैं भी ज़रा भीग गया, और सच कहूँ तो ये जो हल्की सी फुहार मुझ पर पड़ी, दिल को बड़ा सुकून मिला भाई। बहरहाल, आज हम आपके जो संदेश हैं वो शामिल कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए रुख करते हैं मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं कि पहला संदेश हम तक कहाँ से पहुँचा है। तो पहला संदेश जो हमें आया है गुरुमीत सिंह का आया है, और ये लिख रहे हैं गोल्ड साउथ अफ्रीका में हैं हम और वहाँ सुन रहे हैं। राम प्रकाश जी नमस्ते। तो जी गुरमीत जी, आपको भी नमस्ते, और इनके साथ इस मेल में शामिल हैं मीता जी भी। बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत संदेश के लिए। इसी के साथ एक और संदेश हमें मोताला बाजार से आया है, और इसे लिख रहे हैं बबलू ठेकेदार शेख शगीर और शेख वजीर सोहिल शेख जी, ये मैसेज हमें कर रहे हैं। इसी के साथ एक और मेल जो है वो हमें आया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ जी का, ये हमें लिख रहे हैं पिंगवाला चौक जालंधर से। इसी के साथ एक और हमें मेल आया है सतीश अनेजा जी का, और इनके साथ इस मेल में शामिल हैं बिमला अनेजा जी, ये लिख रहे हैं नमस्कार राम प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो जी, आप श्रोताओं का भी दिल से अभिनंदन है आज के कार्यक्रम अनुभावन में। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन हमें भेज रहे हैं, इन्होंने लिखा है बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। बिल्कुल, बड़ी ही कीमती बात भी आपने कही है। अगर कामयाबी कितनी भी मिल जाए और उसका इंजॉय करने वाले, उस कामयाबी में जो परिस्थितियां आती हैं उसका सहारा बनने वाले आपके पास ना हो तो जीवन जो है वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। इसी थॉट के साथ आइए, इनकी फरमाइश पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक खूबसूरत नगमा। और अब तक अगर आपने हमें मेल नहीं किया है तो लिख भेजिए अपना प्यारा सा संदेश।

सच्चा झूठा फिल्म से ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और बोल इंदीवर के।

आइए दोस्तों देखते हैं कि अब किसका खूबसूरत मेल हम तक पहुंच चुका है। तो ये मेल हमें रवि कुमार राहुल रवि जी का आया है और इन्होंने बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं। मैं इनको पढ़ने के बगैर रुक नहीं पा रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि कभी घर घर की धड़कन था रेडियो, क्षमा कीजिएगा इन्होंने कुछ ऊपर नीचे शब्द कर दिए हैं, कभी घर घर की धड़कन था रेडियो अब सिमट गया है यादों में। ये लाइनें पढ़ते ही आंखें भर आईं। बिल्कुल वही पुराना नज़ारा, 1927 में शुरू हुआ था ये रेडियो, तब से लेकर आज तक कितनी पीढ़ियां साथ रही हैं इस रेडियो के और ये रेडियो उनका साथी बनकर रहा है। इन्होंने लिखा है, रेडियो के साथ सोता हूँ, इसी के साथ उठता हूँ, जब सुनता हूँ नाम अपना तब बहुत खुश होता हूँ, कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मैं उदास बिल्कुल नहीं होता हूँ। तो जी बहुत शुक्रिया रवि जी आपका इस खूबसूरत लाइन के लिए। इसी के साथ हमें कुमार हेड़ा सहारनपुर से खूबसूरत मेल आया है और इसे लिख रहे हैं सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम, ये मेल हमें कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का जो है वो मेल हम तक पहुंच चुका है। इसी के साथ गांधीनगर गुजरात से ज्योत्सना परमार, हर्ष परमार और दीपल का मैसेज हम तक पहुंच चुका है। इसी के साथ एक और श्रोता हमें मेल कर रहे हैं, इनका नाम है संजय पाटिल, इनके साथ हैं सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति, शीर सागर, संजय चौहान, ये मेल हमें कर रहे हैं नसवाला चौक मलकापुर से। एक और इसी के साथ एक और मेल हमें दिल्ली से आया है और इसे लिख रही हैं नंदिनी जी और ये एक खूबसूरत गीत अपनी सखी रश्मि जी को ये गीत पहुंचाना चाहती हैं, डेडिकेट करना चाहती हैं। तो लीजिए नंदिनी जी की फरमाइश पर ये बेहद ही खूबसूरत नगमा सिर्फ

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम मन भावर लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त राम प्रकाश। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं एक बार फिर मेल बॉक्स की तरफ और देखते हैं किसका संदेश हम तक पहुंच चुका है।

ये संदेश हमें आ चुका है जिला कासगंज गंज डुगवारा से, और इसे लिख रहे हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी, आलिया अंसारी, और ये लिख रहे हैं राम प्रकाश जी को प्यार भरा आदाब। तो जी आपको भी आदाब। आपने लिखा है आपके बोलने का अंदाज़ और प्रोग्राम में मैसेज पढ़ने का अंदाज़ बहुत ही शानदार है। तो जी शुक्रिया इस खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसी के साथ अगला मेल जो हमें आया है वो हम तक पहुँच चुका है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और इसे लिख रहे हैं मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेरा जहां, और इनके साथ इस मेल में शामिल हैं सैयद अंसारी। आदरणीय प्रसारक महोदय जी, आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब, नमस्कार। तो जी आपको भी नमस्कार। इसी के साथ अगला मेल हमें मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज बेनारा का आया है। ये लिख रहे हैं कि कभी झगड़ा कभी मस्ती, कभी आंसू कभी हंसी, छोटा सा पल, छोटी छोटी खुशी, एक प्यार की कश्ती और ढेर सारी मस्ती, बस इसी का नाम तो है दोस्ती। जी हाँ बिल्कुल, इसी का नाम दोस्ती है, और इसी दोस्ती को निभाने के लिए हम आप तक पहुँच जाते हैं ठीक 3:10 पे कार्यक्रम मनभावन लेकर। दोस्तों आपने अगर अब तक हमें मेल नहीं किया है तो आप जानते हैं हमारा मेल आईडी fmgoldairdaily@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप हमें अपना संदेश, अपनी गीत की फरमाइश भेज दीजिए, और अगर आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868868753। आइए एक खूबसूरत फरमाइश आप तक पहुँचा रहे हैं। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है दिल्ली डेरावाल नगर से, और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बट हम इनका गाना तो इन तक पहुंचाएंगे ही।

दोस्तों ये खूबसूरत गीत आप प्रेम पुजारी फिल्म से सुन रहे थे, आवाज किशोर कुमार की, संगीत एसडी वर्मन का और गीत नीरज के। आइए देखते हैं कि अब किसका मेल हम तक पहुंच चुका है। तो इस बार हमें सरोज बंसल अनूप कौर गुड़गांव से ये खूबसूरत मैसेज कर रहे हैं और एक गाने की फरमाइश भी हमें लिख रहे हैं। और अगला मेल हमें आया है स्वरूप आनंद सरीजाल जोधा पीपल अंबेडकर सीजी से और ये गाना सुनना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, हम आपको आपकी पसंद का गाना सुनवाएंगे। अगला मेल हमें आया है सलीम अख्तर रेशमा बेगम का और ये हमें लिख रहे हैं अलीगढ़ से। इसी के साथ एक और मेल हमें भोपालगढ़ राजस्थान से आया है और इसको लिख रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। अगला खूबसूरत मेल हम तक पहुंच चुका है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और ये लिख रहे हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। इन्होंने लिखा है प्रिय होस्ट राम प्रकाश जी नमस्कार, और कोई लता मंगेशकर जी का गीत आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आज के कार्यक्रम में आपकी पसंद पर गीत ज़रूर सुनवाएंगे। इसी के साथ एक और मेल हमें मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी और सुहान अब्बासी का आया है और इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है। ये लिख रहे हैं कल ही की थी मैंने मोहब्बत से तौबा, आज फिर तुझे देखकर नियत बदल गई। भाई क्या बात है, आपने बड़ी खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। और इसी के साथ एक और खूबसूरत मेल हम तक पहुंच चुका है दिल्ली से, रश्मि जी ये मेल हमें कर रही हैं और ये भी एक खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रही हैं। तो चलिए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यार भरा नगमा।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म झुक गया आसमान से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम मन भावन में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, और तब तक आपने अगर हमें मेल नहीं किया है तो भाई ऐसा मत करिए और हमें मेल लिख भेजिए। हमारा मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके खूबसूरत संदेश का।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम मनभावन सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए कुछ और संदेश आज के कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।

ये संदेश हम तक पहुंच चुका है भारत भूषण जी का, और इनके साथ हैं अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। ये हमें व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ अगला खूबसूरत मेल हम तक पहुंच चुका है अनन्या सिंह, ममता पूनम, रितिका, भारती, कैथर, और ये मेल हमें लिख रहे हैं। इनके साथ हैं मुकेश जतिन, और इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ एक और मेल हमें कुम्हार गली कोलगांव से आया है, और इसे लिख रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष और पांडुरंग कुम्हार। इसी के साथ एक और मेल हमें नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से आ चुका है, और इसे लिख रहे हैं निर्मला नहवांकर, विशाल नहवांकर, पीएस नहवांकर। और इन्हीं के साथ इस मेल में मलकापुर से शामिल है नारायण इंगले, सोपाना ताइडे, आशीष मुहेंकर। अगला मेल हमें पिपरिया से आया है, और इसे लिख रहे हैं श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, ये मेल कर रही हैं, और इन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं कि एक अजीब सा मंजर नजर आता है, हर एक आंसू समंदर नजर आता है, कहाँ रखूं मैं शीशे सा दिल अपना, हर किसी के हाथ में पत्थर नजर आता है। वह क्या बात कही है आपने, सच में बड़ी गहरी लाइनें हैं। तो दोस्तों, ये खूबसूरत मेल हम तक पहुंच चुके हैं, और अभी अभी एक और मेल हम तक पहुंचा है डेरावाल नगर दिल्ली से, और ये मेल हमें लिख रहे हैं ओंकार जी, और एक खूबसूरत गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो लीजिए इनकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

फिल्म मिलन से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल आनंद बख्शी के।

आइए दोस्तों कुछ और खूबसूरत संदेश आपके हम शामिल कर लेते हैं आज के कार्यक्रम में। तो अगला संदेश जो है वो हमें आया है संबलपुर कांकेर से और इसे लिख रहे हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ये लिख रहे हैं खूबसूरत सा संदेश। और अगला संदेश हमें कृष्ण नगरी मथुरा से आया है और इसे लिख रहे हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। इसी के साथ एक और मेल हमें झज्जर हरियाणा से आ चुका है और इसे लिख रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। इसी के साथ एक और मेल हमें आ चुका है भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और राजू देवांगन, इनके साथ नेहा और जगदीश देवांगन हमें मैसेज लिख रहे हैं और एक प्यारी सी शिकायत भी कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं, भाई ये मेरा पांचवा मैसेज है लेकिन आपने अभी तक शामिल नहीं किया। देखिए जनाब, हमने आपकी शिकायत को दूर कर दिया और आपका मैसेज शामिल कर दिया। इसी के साथ अगला मेल हमें आया है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से और इसे लिख रहे हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इसी के साथ और एक और मेल हमें आ चुका है महावीर प्रसाद, हिमांशु, रजत राम कुमार का, इसे लिख रहे हैं श्री गंगानगर, लालगढ़ जाटाना से ये मेल कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों एक और मेल हमें जहांगीरपुरी दिल्ली से आया है और इसे लिख रहे हैं योगेंद्र कुमार, संजीव कुमार और राहुल शाहू, और इन्होंने एक खूबसूरत गीत की फरमाइश हम तक भेजी है। तो आइए इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत नगमा।

जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। ये चाहे इंसान से हो, पेड़ पौधों से हो, या किसी वस्तु से हो, मोहब्बत के बिना हम जो है वो एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है।

आइए चलते चलते आज के कार्यक्रम में कुछ और संदेश हम शामिल कर लेते हैं। ये संदेश हमें आदिल कुमार का आया है, गुन्नौर से लिख रहे हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रोग्राम रहा राम प्रकाश जी, शुक्रिया। तो जी आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ एक और मेल हमें बल्ली मारान से आया है, शबाना भारती का। नवाद अहमद भारती लिख रहे हैं और एक शिकायत भी कर रहे हैं। तो भाई शिकवे शिकायतों का सिलसिला तो चलता ही रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके जो शिकायतें हैं, जो शिकवे हैं, उन्हें ज़रूर दूर करें। इसी के साथ एक और मेल हमें आ गया है कुम्हार गली श्रीरामपुर से, और इसे लिख रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। और एक और मेल हमें आया है सनावत से, शेख मूसा मोहसिन जी ये लिख रहे हैं और लिख रहे हैं प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो, दुआओं में याद रखना। जी बिल्कुल, हम आपको दुआओं में भी याद रखेंगे और हमने आपको संदेश में भी याद रखा। इसी के साथ दोस्तों आज के कार्यक्रम मनभावन में अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। अगर आपका कोई संदेश हम शामिल नहीं कर पाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और मायूस मत होइएगा, क्योंकि कल फिर कोई आएगा और आपका नाम आप तक ज़रूर पहुंचाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं। राज्यसभा में भी आज हंगामे की स्थिति रही। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गर्जेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया। न्यायालय की गोवा बेंच की खंडपीठ ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा सुनाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक में बल को और मजबूत करने तथा इसकी समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रादेशिक सेना नागरिक सैनिक अवधारणा का जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के स्थगन के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष देश भर से अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
2: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ और बेहतरीन संगीत से सजे खूबसूरत नगमे।

फिल्म कभी हाँ कभी ना से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ कुमार सानू की, संगीत जतिन ललित का, बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: For the post of a director. The position carries pay level 13 as per the 7 CPC and may be filled through deputation or contract. Applicants should possess a master's degree in Urdu language, linguistics or literature with at least 55% marks along with Persian as a subject at the degree level and have proven record of research or literary work in Urdu supported by published work. The appointment will initially be for 3 years, extendable up to 5 years or until the age of superannuation, whichever is earlier. The maximum age limit is 57 years as on 1st January of the year in which the vacancy is advertised. Eligible candidates should submit their duly completed application through proper channel to the Deputy Secretary Languages, Ministry of Education, Department of Higher Education, Kartavya Bhavan 2, New Delhi. Apply within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The prescribed application form can be downloaded from the Ministry of Education website, that is at www.education.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आमंत्रित करता है आवेदन इन पदों के लिए। प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी रसायन, पदों की संख्या 32, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी बॉयलर, पदों की संख्या 6, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी यांत्रिकी, पदों की संख्या 4, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी विद्युत, पदों की संख्या 10, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी उपकरण, पदों की संख्या 9, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सामग्री 1 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सिविल 1 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी अग्निशमन 1 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सीसी लैब 1 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी 2 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु कुल 5 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी राजभाषा 2 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी वित्त 10 पद और प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी विपणन कुल 10 पद। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com। वेबसाइट पर जाकर भर्ती अथवा रिक्रूटमेंट सेक्शन को क्लिक करके आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। सह प्राध्यापक 1 पद, सहायक कुल सचिव 1 पद, रिसेप्शनिस्ट सह टेलीफोन ऑपरेटर 1 पद और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 पद। आवश्यक शैक्षिक एवं वांछनीय योग्यता, अनुभव और सामान्य निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट www.niperkolkata.edu.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ परामर्शदाता विश्व विज्ञान 2 रिक्तियां, परामर्शदाता विश्व विज्ञान 1 पद, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी विश्व विज्ञान 2 रिक्तियां और तकनीकी अधिकारी विश्व विज्ञान 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ppqs.gov.in। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में ये पद रिक्त हैं। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 7 पद, पर्यावरण अभियंता 15 पद, सहायक पर्यावरण अभियंता 11 पद, अपर निदेशक वैज्ञानिक ई एक पद, वरिष्ठ वैज्ञानिक L2 एक पद, वरिष्ठ वैज्ञानिक L1 दो पद, वैज्ञानिक बी एक पद, वैज्ञानिक सहायक चार पद, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पांच पद, सहायक विधि अधिकारी एक पद, विधि सहायक पांच पद और सिस्टम एनालिस्ट एक पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट

0: www.dpcc.delhigovernment.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या लाए हैं हमारे लिए आज वो कुछ खास, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नजर, फिर याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक में आज आपके साथ हूं मैं मुनीष शर्मा, और हमारे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक नमस्कार।
2: हेलो मुनीष, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 MHz ऑन द FM गोल्ड नेटवर्क। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट मुनीष। वेल लिसनर्स, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वॉइसेस ऑफ द विक्टोरियन ईरा। Firstly, because he is considered as one of the most lyrical poets in the English language. His verses are renowned for their auditory beauty, rhythmic precision, and melodious quality. Secondly, instead of relying purely on emotional or supernatural themes, he frequently wove modern philosophical and scientific ideas into his work. And lastly, his poetry features intensely visual and naturalistic imagery. He had a keen eye for accurate observations of nature and landscapes. Yes, we are talking about the English poet Lord Alfred Tennyson, and today we remember him on his birth anniversary. And we shall talk about him more a bit later in a program. But first, we begin with the news headlines at this hour. Parliament passes Appropriation No. 3 Bill 2026 with Rajya Sabha returning legislation to Lok Sabha. Lok Sabha passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026.
1: बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण पाल तेजपाल को ठहराया है दोषी।
2: अमरनाथ यात्रा रिज्यूम्स आफ्टर डे लॉन्ग सस्पेंशन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस।
1: उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
2: हॉकी इंडिया अनाउंसेस 18 मेंबर जूनियर वुमेन्स टीम फॉर AHF एशिया कप 2026 टू बी हेल्ड इन मोची चाइना फ्रॉम ऑगस्ट 30।
1: और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में बना ली है अपनी जगह।
2: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, in a series of topics that we'll be discussing, first, we will talk about a day that reminds the world of one of the darkest chapters in human history, Hiroshima Atomic Anniversary. And today, Munish, August 6th is Hiroshima Day.
1: बिल्कुल सही अभिषेक, 81 बरस पहले 1945 में इसी दिन हिरोशिमा में एक आम सुबह कैसी त्रासदी में बदल गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और शहर में एक और आम दिन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन सवेरे 8:15 बजे तक ही
2: इन अ सिंगल फ्लैश ब्राइटर देन द सन एवरीथिंग चेंज्ड। द यूएस B-29 बॉमर इनोला गे ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब नोन एज लिटिल बॉय Over Hiroshima. Within seconds, much of the city was destroyed.
1: हजारों लोगों की फौरन मौके पर ही मौत हो गई। 1945 के आखिर तक धमाके, बुरी तरह जलने और रेडिएशन की वजह से करीब 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, और फिर 3 दिन बाद नागासाकी पर एक और परमाणु

0: परमाणु बम गिराया गया।
1: These bombings remain the only use of nuclear weapons in warfare. They brought World War II to an end, but at an enormous human cost that continues to remind the world of the devastating impact of war.
0: दोस्तों, दुनिया भर में लोग हर साल हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। इसका मकसद न सिर्फ उन लोगों को याद करना है जिनकी जान गई थी, बल्कि शांति और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराना है।
1: And this year's theme is remembrance, responsibility and resilience. Three powerful words that encourage us to remember the past, take responsibility for protecting peace and build a future based on hope rather than conflict.
0: हिरोशिमा शहर में आज सवेरे सालाना शांति स्मारक समारोह आयोजित किया गया। बमबारी के ठीक समय सुबह 8:15 बजे एक पल का मौन रखा गया और स्मारक के सामने 353,000 से ज्यादा पीड़ितों के नामों वाले एक रजिस्टर भी रखा गया।
1: One of the most moving symbols in Hiroshima is a flame of peace. It has been burning continuously since 1964 and will remain lit until every nuclear weapon in the world is eliminated.
0: एक और अहम आवाज है हिबाकुशा की। ये नाम परमाणु बम हमलों से बचे लोगों को दिया गया है। दशकों से वो अपनी कहानियां साझा करते आ रहे हैं और युवा पीढ़ी को याद दिलाते हैं कि कैसे हर ऐतिहासिक घटना के पीछे असल लोग, परिवार और उनके सपने होते हैं।
1: The message is simple yet powerful. Never again. It also raises an important question for all of us. How do we preserve peace in today's world?
0: शायद इसकी शुरुआत समझदारी से, मतभेदों का सम्मान करने से, हिंसा के बजाय बातचीत का रास्ता चुनने से और इतिहास से मिले सबक को याद रखने से होती है।
1: Peace starts with individuals in our homes, schools, workplaces and communities. Every act of kindness, tolerance and compassion contributes to a more peaceful world.
0: हिरोशिमा दिवस मनाते हुए आइए हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपनी जान गंवाई, बचे हुए लोगों का साथ दें और मानवता के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराएं।
1: And Munish, history cannot be changed, but the future can certainly be shaped.
0: बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक। और अब आते हैं हम अपने अगले विषय पर। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज, जो शहरों को बदल रही है। और हमारा विषय है आज का अर्बन गार्डनिंग, यानी शहरी इलाकों में हरियाली उगाना। जब हम बगीचों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े बड़े आंगन या विशाल पार्कों की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन आज अपार्टमेंट्स, छतों, बालकनियों और यहां तक कि खिड़कियों पर भी बगीचे पनप रहे हैं। अर्बन गार्डनिंग ये साबित कर रही है कि हरियाली उगाने के लिए आपको बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है।
1: Yes, and absolutely, Munish. And in fact, urban gardening is simply the practice of growing plants, vegetables, herbs or flowers in cities where space is limited. Whether it's a few pots of basil on a kitchen window or a rooftop full of vegetables, every little effort counts.
0: और अब तो ये सिर्फ एक शौक से कहीं ज्यादा बनता जा रहा है। कई परिवारों के लिए तो एक जीवन शैली है। सोचिए आप अपनी बालकनी में जाते हैं और चाय के लिए ताजा पुदीना या सलाद के लिए टमाटर तोड़ लाते हैं। इससे ज्यादा ताजा आखिर और क्या हो सकता है, क्यों अभिषेक?
1: वेरी ट्रू मुनीश। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फ्रेश प्रोड्यूस, अर्बन गार्डन्स आल्सो इंप्रूव एयर क्वालिटी, रिड्यूस हीट एंड मेक अवर सराउंडिंग्स मोर ब्यूटीफुल। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन एंड क्रिएट कूलर, ग्रीनर स्पेसेस इन द मिडल ऑफ बिजी सिटीज।
0: लेकिन एक और फायदा है जिसके बारे में बहुत से लोग शायद नहीं जानते। गार्डनिंग असल में हमारी मानसिक सेहत के लिए भी अच्छी होती है। रोजाना बस कुछ मिनट पौधों की देखभाल करने से तनाव कम हो सकता है, मूड बेहतर हो सकता है और हम प्रकृति से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं।
1: एग्जैक्टली मुनीश, एंड स्टार्टिंग एन अर्बन गार्डन डजंट रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट।
0: बिल्कुल नहीं। आप रिसाइकल की हुई बोतलों, पुरानी बाल्टियों, टूटे मग या बगैर इस्तेमाल वाले कंटेनरों से भी शुरुआत कर सकते हैं। उनमें मिट्टी भरिए, कुछ बीज डालिए और बस आप पौधे उगाने के लिए तैयार हैं।
1: Absolutely, and for beginners, herbs like coriander, mint, basil, and spinach are easy to maintain. Tomatoes, chilies, and leafy vegetables also grow well in pots with proper sunlight.
0: और अब धूप की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं कि कितनी धूप काफी है। ज्यादातर सब्जियों को रोजाना लगभग 6 घंटे की धूप की जरूरत होती है। अगर आपकी बालकनी में सवेरे अच्छी धूप आती है तो ये अक्सर सबसे अच्छा।

0: सकता है। और नियमित रूप से पानी देना न भूलें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचिए, क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।
1: And another exciting trend is composting, Munish. Instead of throwing away vegetable peels and food scraps, many households are turning kitchen waste into nutrient-rich compost for their plants.
0: और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हुए कचरा कम करने का एक शानदार उदाहरण है। ये एक आसान कदम है जिससे बगीचे और पर्यावरण दोनों को काफी फायदा होता है।
1: And urban gardening reminds us that meaningful environmental change doesn't always begin in forests. It can begin right outside the front door, on a balcony, terrace, or even a sunny windmill. And now we take you to Mumbai, where creativity, culture, technology, and business have come together on one global platform. The occasion is the BRICS Waves Bazaar, a major international marketplace for the creative economy.
0: बिल्कुल सही दोस्तों, और इस इवेंट में ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, और इनमें सिर्फ फिल्म निर्माता या कलाकार ही नहीं हैं, बल्कि नीति निर्माता, ब्रॉडकास्टर, ओटीटी प्लेटफॉर्म निवेशक, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी कंपनियां, सांस्कृतिक संस्थान और क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर भी शामिल हैं।
1: सो लिसनर्स, व्हाट एग्जैक्टली इज अ ब्रिक्स वेव्स बाजार?
0: दरअसल इसे एक ऐसी जगह के तौर पर सोचिए जहां आइडिया और मौके एक दूसरे से मिलते हैं। इसे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे फिल्म और टेलीविजन से लेकर डिजिटल मीडिया, एनिमेशन, गेमिंग, म्यूजिक और नई टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया है।
1: एंड इन टुडेज़ वर्ल्ड द क्रिएटिव इकोनॉमी इज बिकमिंग अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू एंटरटेनमेंट अलोन। इनोवेशन, डिजिटल कॉन्टेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर ड्राइविंग न्यू बिजनेसेस एंड क्रिएटिंग न्यू जॉब्स।
0: बिल्कुल, ब्रिक्स वेव्स बाजार का मकसद बातचीत, ज्ञान के आदान प्रदान, बिजनेस नेटवर्किंग और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देकर ब्रिक्स देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करना है।
1: द टू डे इवेंट फीचर्स कॉन्फ्रेंसेस, कीनोट एड्रेसेस, पैनल डिस्कशंस एंड बिजनेस नेटवर्किंग सेशंस। एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आर डिस्कसिंग हाउ क्रिएटिविटी कैन फ्यूल इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
0: कुछ मुख्य विषयों में अंतर्राष्ट्रीय को प्रोडक्शन, कंटेंट फाइनेंसिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता, उभरती हुई तकनीकें और साउथ साउथ सहयोग शामिल हैं।
1: एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शंस इज द क्रिएटर्स हब। इट इज एन एग्जीबिशन स्पेस विद स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज, प्रोडक्शन स्टूडियोज एंड क्रिएटिव एंटरप्राइजेस आर शोकेसिंग द लेटेस्ट इनोवेशंस। Delegates can explore new ideas, discover cutting-edge technologies, and identify potential business partners.
0: और इतना ही नहीं, इस बाजार में खास तौर पर तैयार की गई business to business, यानी B2B meetings भी शामिल हैं। ये meetings producers, broadcasters, OTT platform investors, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सरकारी एजेंसियों और क्रिएटिव बिजनेस को आपस में जोड़ने के लिए आयोजित की जाती हैं। ये को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट और मार्केट के विस्तार पर चर्चा करने का एक जबरदस्त मौका है।
1: इन अदर वर्ड्स मुनीश, इट्स अबाउट टर्निंग क्रिएटिव आइडियाज इनटू रियल कोलैबोरेशंस एंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस इवेंट सिग्निफिकेंट। इट गोज बियॉन्ड डिस्कशंस बाय क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर पार्टनरशिप्स कैन एक्चुअली बिगिन।
0: बिल्कुल अभिषेक, और भारत इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार को बढ़ावा देने वाली क्रिएटिव इकोनॉमी पर लगातार ज्यादा जोर दे रहा है। ब्रिक्स वेव बाजार जैसे आयोजन इस सोच को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं।
1: सो एज द डिस्कशंस कंटिन्यू इन मुंबई, द फोकस रिमेन्स ऑन वन शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स थ्रू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
0: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का, उनसे ये जानने का क्या लाए हैं आज वो हमारे लिए खास।
1: Yes, and straight away we start off with a story from Gangtok, Munish, and the National Handloom Day was observed, will be observed tomorrow. Sheetal Tamang of Sikkim has been selected for the National Handloom Award 2025. We have more from a correspondent.
2: Sheetal Tamang from Jorthang, Sikkim has been selected for the National Handloom Award 2025 in recognition of her outstanding contribution to India's handloom sector. Tamang will receive the prestigious award from the President of India, Draupadi Murmu, tomorrow in New Delhi. 7th August is also celebrated as National Handloom Day. The honor highlights Tamang's dedication to preserving

0: Bala Sadhya is a unique offering by devotees of Lord Parthasarathi and is organized by the Bali Yodha Seva Sangam in association with the Travancore Devaswam Board.
1: साठ दिनों तक दरअसल इस चलने वाले त्योहार के दौरान पंपा नदी के किनारे बसे गांवों से पारंपरिक स्नेक बोट्स जिन्हें पल्लियोडम कहा जाता है चप्पू चलाने वालों के साथ आती हैं। मंदिर में होने वाले भव्य पारंपरिक भोज में शामिल होने से पहले उनका औपचारिक स्वागत किया जाता है और वल्ला सदा के दौरान केले के पत्तों पर 60 से ज्यादा पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाते हैं। और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल।
0: इंडियन जेवलिन थ्रोअर्स आशीष यादव एंड टी धरनीधरन अलोंग विद डिस्कस थ्रोअर अमरनाथ कंबोज सिक्योर प्लेसेस इन द फाइनल राउंड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव इवेंट्स एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप इन यूजीन यूएसए। द फाइनल्स विल बी प्लेड ऑन संडे।
1: भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यों वाली जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर कैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। मुख्य कोच टिम हाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है।
0: In on to some business news, benchmark domestic equity indices ended in the positive zone for the second straight session today. The Sensex gained 374 points or nearly 0.5% to close at 78,955. The Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या फिर जन्मदिन।
2: आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुई थी। राष्ट्र गुरु के रूप में लोकप्रिय बनर्जी ने 1876 में ब्रिटिश भारत में अग्रणी राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी।
3: सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1870 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इस फैसले के विरोध में मुकदमा जीतने के बाद सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन ने उन्हें गलती का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया और इस बार उनकी अपील को ब्रिटिश अदालतों ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, जो पहला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद उसके सदस्य बनाए गए। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का मुखर विरोध किया।
2: सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने पूरे बंगाल और भारत में विरोध प्रदर्शनों, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन का आयोजन किया, जिसने आखिरकार अंग्रेजों को बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया।
0: Yes, and we are also remembering M. Night Shyamalan, who is an Indian-born American filmmaker best known for The Sixth Sense, Unbreakable and The Signs. He is famous for writing and directing psychological thrillers and supernatural horror movies that feature unexpected plot twists. He rose to global fame with The Sixth Sense, which earned 6 Academy Award nominations, including Best Director, Best Original Screenplay. Let's hear a dialogue from that movie.
4: I want to tell you my secret.
5: Dreams? While you're awake? Dead people like in graves and coffins?
4: Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead.
5: How often do you see them?
4: All the time. They're everywhere.
1: King of supernatural thrillers, Manoj Knight Shyamalan, definitely at his best. और दोस्तों आज ही है जन्मदिन उमेश मेहरा का, जो भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं।

1980 और 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई यादगार फिल्में उन्होंने दी, जैसे अशांति, मुजरिम गुरु और यार गद्दार। खिलाड़ी श्रृंखला की जो फिल्में थी अक्षय कुमार की, उनकी उन तीन फिल्मों को उन्होंने ही निर्देशित किया, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी। 1998 में उन्होंने किला में अनुभवी अभिनेता दिलीप कुमार को निर्देशित किया, जो उनकी आखिरी फिल्म कहलाती है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की कुछ फिल्मों से ये यादगार गीत।

और अभिषेक आप ही के हम नाम हैं। अभिषेक कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता, लेखक, निर्माता है, जिनका आज जन्मदिन। और हिंदी सिनेमा के लिए म्यूजिकल ड्रामा रॉक ऑन, स्पोर्ट्स ड्रामा काई पोचे, म्यूजिकल फितूर और एक बड़ी प्राकृतिक आपदा पर आधारित फिल्म केदारनाथ और सोशल रोमांटिक ड्रामा चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए उन्हें जाना जाता है। और आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों से ये कुछ यादगार नगमे।

0: Yes, you're listening to a track from the movie Rock On. And moving on, Alfred Lord Tennyson, like we were mentioning at the beginning of our program, was born on this day in 1809. He was a legendary English poet who served as official poet laureate of the United Kingdom for most of Queen Victoria's reign. Regarded as the chief representative and defining voice of the Victorian era in literature, he remains one of the most frequently quoted writers in the English language. He was known for his melodious style and renowned for his exquisite command of rhythm, verbal music and rich imagery.
1: जी हाँ, बिल्कुल. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन कौन भूल सकता है उन्हें. द लोटस ईटर्स उनकी एक बड़ी मशहूर जो कविता है. एक द्वीप पर पहुंचते हैं लोग और फिर क्या क्या होता है वहाँ, ज़रूर पढ़ी होगी छात्र जीवन में हमारे बहुत से श्रोताओं ने. और दोस्तों, अब हमें कहना पड़ रहा है कि वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का. आज्ञा दीजिए मुनीश शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. दोबारा अगर आप सुनना चाहें हमें तो लॉग ऑन कीजिए वेबसाइट newsonair.gov.on और दीजिए अब आप हमें आज्ञा.
0: नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, गोबर, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
1: पहला फैसला बायोगैस से संबंधित है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम एक बनी है। और दूसरा असम में एक 4 लेन हाईवे का फैसला लिया गया है। टोटल 32,000 करोड़ रुपीस के ये दोनों प्रोजेक्ट और स्कीम्स मिला के है। हम सब जानते हैं कि भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है उसमें करीब 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है। इस 50% इम्पोर्ट को कैसे कम करें उसके लिए लगातार कई प्रयास चल रहे हैं।
0: संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुदान की मांग लोक लेखा समिति की 39वीं रिपोर्ट में पहचाने गए 2 विशिष्ट मदों से संबंधित है। उधर लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े औषधि नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम औषधि नियम 1945 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दायर सभी आवेदनों पर लागू होगा। इस संशोधन के बाद आवेदक को एक निश्चित अवधि के लिए आगे आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। और खेलों में तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चाहिला और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते ये सफ़र चलता रहे। और इस सफ़र में आज मैं हूँ आपका रेडियो हम सफ़र राम प्रकाश, लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। समय हो चुका है शाम के 5:11:08। दोस्तों, आइए आज के कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में आपको सुनवाते हैं कुछ बेहतरीन नगमे और उनसे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से।

0: ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी से, आवाज उदित नारायण की, संगीत आनंद मिलिंद का और बोल समीर के। दोस्तों, कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी

0: आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, और ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ राम प्रकाश वर्मा।

दोस्तों, अगला गाना जो आप सुनने जा रहे हैं वो गाना है फिल्म प्रेम रोग का। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राज कपूर साहब। इस गाने के गायक सुरेश वाडकर बताते हैं कि जब ये गाना रिकॉर्ड होने जा रहा था तो राज कपूर साहब ने मुझे कहा कि इस गाने में भंवरे की फीलिंग चाहिए, और वो किसी साउंड इफेक्ट से नहीं बल्कि तुम्हें अपनी आवाज से वो काम करना है। काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन सुरेश वाडकर जी ने इस काम को बड़ा ही खूबसूरती और बड़े एक अलग अंदाज से पूरा किया। वो बताते हैं कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो पूरा माइक्रोफोन गीला हो चुका था, क्योंकि भंवरे की आवाज निकालते वक्त उनके मुंह से जो पानी निकला वो माइक्रोफोन पर गिर रहा था। श्रोताओं, जो ये गाने आप सुनते हैं ये यूं ही नहीं बन जाते, इनके पीछे कोई ना कोई कहानी और कड़ी मेहनत छुपी होती है। तो आइए, इस कड़ी मेहनत से बना ये खूबसूरत गाना आपको सुनवाते हैं इस प्रोग्राम में।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रोग से, आवाज़ सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, इसी गीत के साथ अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए, कार्यक्रम गाते गुनगुनाते यहीं पर संपन्न होता है। और आप सुनिए थोड़ी ही देर में कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट डायरी।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना

0: अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपये कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will create 1.5 lakh jobs. He said Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey. The scheme will establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs also approved construction of four-lane highway from Baihata Chairali near Guwahati to Tezpur in Assam.
3: Today's second major decision is related to an important highway project in Assam. It is the Baihata-Chariali-Tezpur four-lane highway, stretching from Baihata-Chariali, located just outside Guwahati, to Tezpur. The highway will be 135 kilometers long with an investment of approximately 8,970 crore rupees. It will also be connected to the Brahmaputra tunnel in the future.
2: The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha, returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier in the day, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over NEET issue. When the Lok Sabha reassembled at 2 p.m. after the first adjournment, the House gave its nod to extend the time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Viksit Bharat Siksha Adhishthan Bill 2025 up to the last week of the winter session to be held later this year. Amidst the opposition uproar, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 for consideration and passing. However, the bill was passed amid din without any discussion. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. Following the passage of the bill, the lower house was adjourned for the day. In Jharkhand, the students' agitation over alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations entered its 13th day today. Students continue their protest at Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi, pressing for their demands. Meanwhile, the issue triggered uproar both inside and outside the Jharkhand Assembly on the opening day of the monsoon session. The CID has arrested five more accused from Ranchi and Lucknow, taking the total number of arrests in the case to 19. In Keralam, a massive protest march was organized to the Secretariat in Thiruvananthapuram under the leadership of Yuva Morcha, demanding justice for candidates who have not received appointment orders for the past 2 years despite being included in the PSC rank list. The march turned violent after the police blocked the protesters with barricades as they attempted to storm the Secretariat building. Civil Aviation Minister K. Ramohan Naidu has debunked the claims, stating that the government plans to blend ethanol with aviation turbine fuel are completely false and irresponsible. In a social media post, Mr. Naidu today said that there is no such proposal. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has crossed 50 lakh beneficiary households in India. Addressing the CII International Energy Conference and Exhibition in New Delhi, the minister highlighted that currently 19 lakh households are receiving zero electricity bills. Benchmark domestic equity indices ended in a positive zone for the second straight session today. The Sensex gained 374 points, or nearly 0.5%, to close at 78,955. Indian javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final of their respective events at the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA. The finals will be played on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताएं और जलवायु परिवर्तन। ऐसे में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो स्वच्छ भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। यही

0: कारण है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वच्छ तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता मौसम और समय पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिजली व्यवस्था की एक विश्वसनीय आधारशिला माना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। एक ओर शांति अधिनियम के माध्यम से कानूनी और नीतिगत ढांचे को आधुनिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास और नई पीढ़ी के रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाल के वर्षों में किस प्रकार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला बना। इसके बाद संशोधनों के माध्यम से सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों में तेजी से बदलाव आया है। ऐसे में आवश्यकता महसूस की गई कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया जाए। इसी सोच के साथ शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
1: भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश की कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी लगभग 3% रही, जबकि देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित रिएक्टरों के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके। लक्ष्य ये भी है कि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित किए जाएं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। इसके तहत नियामकीय निगरानी के अंतर्गत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई है। वे परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और निर्धारित सीमा तक परमाणु ईंधन निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। हालांकि संवेदनशील गतिविधियां केंद्र सरकार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। अधिनियम में परमाणु ऊर्जा और विकिरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस तथा सुरक्षा स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा देकर नियामक व्यवस्था को और सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही परमाणु क्षति से जुड़े दायित्व, मुआवजा, दावों के निपटान और अपील की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के उपयोग के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: श्रोताओं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कोई अल्पकालिक योजना नहीं, बल्कि 6 दशकों से अधिक समय में विकसित हुई एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। सीमित यूरेनियम संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसकी खास बात ये है कि हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे चरण में उसी प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दूसरे चरण की दिशा में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिय सफलतापूर्वक शुरू हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। लेकिन आखिर फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन से

0: विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
1: एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 इयर्स उसी कल्पाकम में टेस्ट कर रहा था, उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है। यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इस रिएक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो वर्ड ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा, इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बन, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो ये क्रिटिकलिटी। इंडिया का एक अपनी आप एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में 3 स्टेज बोलेगा, ये सेकेंड स्टेज है, ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज 3 में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है, थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा, एंड सेकेंड वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवरनिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा।
0: श्रोताओं, भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, जबकि थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित है कि भविष्य में इन विशाल थोरियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। आइए इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन की राय सुनते हैं।
1: लास्ट 20-30 वर्ष में एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख, तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा कर, एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगा तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टेनली ये एटॉमिक पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है, सो फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा।
0: श्रोताओ, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ने का अनुमान है, और ऐसे समय में पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों ने ये दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अनेक देश परमाणु ऊर्जा को एक दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित COP28 सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा है, ऐसे में ये व्यवस्था भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के तहत की जाएगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 31,773,000,00,000 रूप्यकाणां राष्ट्रियपरिपत्रजैवोर्जायोजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। आर्थिक विषयक मंत्रिमंडल समित्या गुवाहाटी नगरस्य बेहाराचरिया लीतः तेजपुरम यावत् चतुष्पथीय मार्ग निर्माणाय प्रख्यापितम् अनुमोदनम्। संसदा द्वाविंशत्रयोविंश वित्तीय वर्षयोः अतिरिक्त व्ययार्थं चतुःपञ्चाशत सहस्र कोटि रूप्यकाणां विनियोग विधेयकं पारितम्। मुंबई उच्च न्यायालयेन यौनोत्पीडन प्रकरणे तहलका संस्थायाः पूर्व संपादकाय तरुण तेजपालाय दशवर्षात्मकः कठोर कारावास दण्डः श्रावितः। अपि च कुंतक क्षेपकौ आशीष यादवः टी धरणीधरणः अपि च चक्रक्षेपक क्रीडिका अमानत कम्बोजः विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य गोबरधन जैवोर्जा योजना एकत्रिंशदधिक सप्तशतोत्तर त्रयोविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां व्ययेन पारिता, येन सार्धलक्षं नववृत्त्यवसराः भविष्यन्ति, सहैव कृषि गोमयादि अपशिष्टेभ्यः स्वच्छेन्धनं निर्मास्यते। एषा योजना अग्रिमं दशवर्षं यावत् सेत्स्यति। अनेन सहैव असमे प्रायः अष्टसहस्रकोटिरूप्यकाणां व्ययेन पञ्चत्रिंशदधिकैकशत किलोमीटर दीर्घस्य चतुष्पथ राजमार्गस्य निर्माणाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदा अद्य षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य विनियोगविधेयकं पारितम्। राज्यसभया विचारणानन्तरम् एतत् विधेयकं लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। अस्मिन् विधेयके द्वाविंशतितः त्रयोविंशतिः वित्तीयवर्षे भारतस्य संचितनिधेः स्वीकृतराशिभ्यः अतिरिक्तानां व्ययानाम् अधिकृतस्वीकृतेः प्रावधानमस्ति। जम्मू कश्मीर विषये सदने आशंकाः शमयन्ति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन अवदत् यत् सप्तत्युत्तर त्रिशत अनुच्छेदस्य विलोपनात् परं केन्द्र सर्वकारेण जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशाय महती वित्तीय प्रशासकीय सहायता प्रदत्ता। सा न्यवेदयत् यत् जम्मू कश्मीर आरक्षक बलस्य वेतनानां निवृत्ति वेतनानां च सम्पूर्णः भारः केन्द्र सर्वकारेण उह्यते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अनुच्छेदस्यास्य निरसनेन पुनरेकवारं सिद्धम् अभवत् यत् पाकाकृत भूभागेन सह समग्रः जम्मूकश्मीरप्रदेशः भारतस्य अभिन्नः अङ्गः अस्ति। विधेयकपारणानन्तरं सभापतिपीठे उपविष्टः घनश्यामतिवारी सदनस्य कार्याचरणम् आदिनाय अस्थगयत्। श्वः प्रातः एकादशवादने सदनस्य उपवेशनं पुनः सेध्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य तहलका पत्रिकायाः भूतपूर्वः सम्पादकः तरुण तेजपालः यौनोत्पीडन प्रकरणे दोषी घोषितः, तस्मै च दशवर्षाणां कठोर कारावासस्य दण्डः श्रावितः। अनेन सहैव न्यायालयेन तेजपालाय एकविंशतिसहस्रोत्तर दशलक्षरूप्यकाणां आर्थिकदण्डः अपि प्रयुक्तः, स च राशिः पीडितायै प्रदास्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नीट प्रकरणे आरक्षकाणां कार्याचरणातिक्रममादाय विपक्षिणाम् अनवरत कोलाहलेन लोकसभा अद्य आदिनाय स्थगिता। प्रथमस्थगनात् परं यदा अपराह्णे द्विवादने कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा लोकसभया संयुक्तसमित्याः पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य विकसितभारत शिक्षाधिष्ठानविधेयकस्य उपस्थापनसमयः षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य शीतकालीनसत्रस्य अन्तिमसप्ताहं यावत् वर्धयितुम् अनुमतिः प्रदत्ता। विपक्षस्य तीव्रकोलाहले एव वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इत्येषा अनुमोदनार्थं करसंबंधी अन्य विधि विधेयकं 26,000 प्रस्तुतवती। विधेयकस्य अनुमोदनानन्तरं पीठासीनाधिकारी संध्या राय इत्येषा श्वः प्रातः 11 वादनं यावत्

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. हमेशा की तरह हम हाजिर हैं कारोबारी खबरों को लेकर और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रकाश चावला. प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: Benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes the taxation and other laws amendment bill 2026 and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 350 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,636 दर्ज हुआ. लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is our disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार. लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक यानी लगभग 0.5% बढ़त के साथ 78,955 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% से अधिक नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone for the second straight session today. Sensex gained 374 points or nearly 0.5% to close at 78,955. Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped over 0.4%, while the small-cap 100 index added nearly 0.5%. After opening higher, Sensex maintained a positive momentum throughout the session. Meanwhile, Nifty traded in a narrow range, recovering from the slight dips witnessed during the intraday trade.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 16 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे. नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे प्रमुख रही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जिसे 4% का घाटा हुआ. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए. इंडिगो को लगभग 1.5% का नुकसान हुआ. उधर लाभ उठाने वालों में प्रमुख कंपनी रही रिलायंस, जिसके शेयरों में 3.4% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 2.5% मुनाफे के साथ बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks advanced over 2%, capital goods rose nearly 1.3%, and energy gained over 1.1%. In contrast, realty dipped over 1.4%, services shed 1.1%, and utilities lost over 1%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,161 companies declined, 2,117 companies advanced, and 215 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे कमजोर हुआ. 95.22 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. प्रकाश जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. लगातार दूसरे सत्र में आज तेजी देखने को मिली है बाजार में, क्या प्रमुख कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, ये ना एक तरह का मार्केट में सीमित दायरे में काम हो रहा है
1: जी.
2: कई दिनों से ये काम हो रहा है और आज भी जो है वो मार्केट ग्रीन में बंद हुई है. लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जो मार्केट की जो डेप्थ है या मार्केट की जो डेप्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ बोलते हैं
1: जी,
2: वो नेगेटिव में रही. आप लोग अपने रीड आउट में बोल रहे हैं
1: जी.
2: तो ये मार्केट में एक सीमित दायरा हो रहा है, इसमें शफलिंग होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, कई प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, और मार्केट ये सीमित दायरा

0: हमारी भारतीय मार्केट में काफ़ी काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये ऐसा ही रहने वाला है।
1: जी।
0: इसके कई कारण हैं, हम आपको बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सीमित दायरा है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई गिरावट भी कोई एक सीमित दायरा है। निफ्टी में अगर देखें तो 23,800 से लेके 24,500-26,000 तक जैसे अब कुछ है, ये इसी 800-1,000 के पॉइंट में रहता है।
1: जी
0: तो ये सीमित दायरा है, उसके कई कारण हैं और कुछ हद तक ये राहत मिल रही है कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस था काफ़ी हद तक उसको वो निदान की तरफ जा रहा है।
1: प्रकाश शावलादी, वी ऑल्सो सॉ दैट द पीएसयू बैंक्स एडवांस्ड बाय 2%। हाउ इज दैट लिंक्ड टू व्हाट द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन अबाउट लीविंग रेपो रेट्स अनचेंज्ड एट 5.25%, बेयरिंग इन माइंड दैट देर आर इन्फ्लेशन हेडविंड्स कमिंग आवर वे, स्पेशली व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्ट एशिया एज यू मेंशन नाउ। PSU banks, their first quarter results, do you think that's a fundamental reason why this index actually went up? Is there any linkage to what the central bank actually made the announcement about?
0: Well, today's movement in PSU banks or banks for that matter, I don't think it has much to do with the policy which was unveiled yesterday. The policy, as you said, retained the benchmark interest rates at I think 5.25%, what is called repo rate. Now, RBI governor himself raised this concern that the inflationary headwinds are there, still there, because of global uncertainties and also because of some deficit that could be there in the monsoon rains. So those concerns are there. Today's movement, I don't think it could be a shuffling, reshuffling of the portfolio. Some profit booking might be there, but I don't think it has got much to do with the policy, so to speak.
1: आपने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की चर्चा की, एक खबर है FCNR से जुड़ी हुई, साथ ही रुपए से जुड़ी हुई। पहले श्रोताओं को हम उसकी जानकारी देना चाहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि FCNRB योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की ताज़ा आवक में उत्साहजनक वृद्धि हुई है, इससे घरेलू अर्थतंत्र में तरलता बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना को समय से पहले बंद किए जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। रुपए की मजबूती से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में रुपया मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रुपए की स्थिति का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है और केंद्रीय बैंक अपनी ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है।
2: Conflict de-escalates, it is quite possible that the rupee may strengthen 1 month or so. It has strengthened from 97 levels now to. And our policy has always been that the markets determine prices, level, and the band. We don't pursue. We only target, we only intervene in case there is an excessive volatility. There are speculative pressures that are getting built in. And it will be our endeavor that trajectory for rupee remains orderly and there is no disruptive movement or there is no expectation, self-fulfilling expectations getting built into the exchange rate.
1: Well, speaking about the rupee versus the dollar, and of course the RBI governor Sanjay Malhotra ji speaking about FCNR deposits actually have gone up. But the valuation of all major currencies are being hit against the US dollar index, which is at 99.77. Oil prices is something that is being cited as the reason behind inflation, not just now, but for the entire financial year as well. So how do you see, imports impacting how the dollar is priced against the rupee? And for that matter, any major currency, you also have other imports like precious metals on which it's already taxed, but crude oil, the prices have been going up substantially. If you look at Brent crude and the West Texas Intermediate, if you look at these price levels.
0: Well, it had gone up, but the good thing is that the matter of relief, the West Asia crisis seems to be coming to an end. Let's hope it this time around, the whatever is being said is implemented, comes into implementation stage. These parties in the

0: investors turn cagey, nervous. That's why you see this volatility cropping in now and then. That's what's happening across the markets. And whatever stability you are seeing, or markets are showing some improvement in the US, is also emerging from the West Asia theater. From the West Asia theater, because they are hoping that this deal will finally come through and we will see some sanity in prices of crude oil, and then the consequences thereof.
1: प्रकाश जी, यदि यहाँ हम लौटें अपने भारत की ओर, तो यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी प्रयास कर रहे हैं कि एक उभरती हुई से मजबूत स्थिति में हम पहुँचे, निर्माण में, दुनिया को बाहर सप्लाई करने में. एआई में हमारी क्या स्थिति है? इन दोनों सेगमेंट में कहाँ खड़े हैं हम?
0: देखिए मनोज जी, एआई में जो वैल्यू चेन का मैंने जिक्र किया, उसमें हमारा जो अब रोल होता है, हम लोग दुनिया के काफ़ी सबसे बड़े एआई के कंज्यूमर होने वाले हैं. ऑलरेडी उस दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं. उसमें हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी बढ़ती है एआई में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इवन एग्रीकल्चर में, काफ़ी मेडिकल्स में, मेडिकल एंड वेल्थ हेल्थ केयर में हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है. लेकिन वैल्यू चेन में हम अगर कहीं पे जाके अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो है डेटा सेंटर. डेटा सेंटर में बहुत सारी एनर्जी चाहिए, पावर, माइंड ब्लोइंग काइंड ऑफ पावर चाहिए उसमें. उसमें हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा, जहाँ तक चिप का सवाल है, सेमीकंडक्टर का सवाल है, वो नीतिगत तो फैसले हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरने के लिए थोड़ा समय लगेगा. उम्मीद करते हैं कि ये हम ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये ग्राउंड पे उतरें और भाई हम भी अपने पूरी एआई वैल्यू चेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करें.
1: आइए आगे बढ़ें.
2: मूविंग ऑन टू मोर न्यूज, दिस टाइम फ्रॉम द सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू हैज डिबंक्ड द क्लेम्स स्टेटिंग दैट द गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्लेंड ethanol with aviation turbine fuel ATF are completely false and irresponsible. In a social media post, Mr. Naidu today said that there's no such proposal. He said that ethanol and sustainable aviation fuel SAF are entirely different and should not be conflated. Mr. Naidu said that SAF is an internationally certified aviation fuel recognized by the International Civil Aviation Organization and adopted globally, which undergoes rigorous testing and meets stringent global safety standards. In more news, Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said this will create 1.5 lakh jobs. Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey.
1: आइए आगे बढ़ें. सरकार ने ऑनलाइन प्रकाशित हो रहे एक फर्जी ज्ञापन का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ये ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है. फर्जी ज्ञापन में कथित तौर पर जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को वित्तीय सत्यापन और संपत्ति निरीक्षण के लिए अपने निजी बैंक खाते में धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह ज्ञापन फर्जी है और इसका सर्वोच्च न्यायालय या वित्त मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है. सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऐसे ज्ञापनों की प्रामाणिकता की पुष्टि करें. यहाँ पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, देश में फर्जीवाड़े, डीप फेक और कह लें इस तरह के, जो विभिन्न तरह के असली दिखने वाले विज्ञापन कह लें, ज्ञापन कह लें, खबरें कह लें, प्रसारित होते हैं और उसमें आम लोग फंस रहे हैं, उससे निपटने का क्या उचित उपाय हो सकता है और किस तरह उससे बच सकते हैं लोग?
0: साइबर सिक्योरिटी जो है नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं
1: जी,
0: अपना सारा फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारा UPI पेमेंट सिस्टम है और हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी में RBI के साथ मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं इनके, अभी मैंने मालूम किया कि काफ़ी जगह पे साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं.

0: तो जो साइबर पुलिस स्टेशन बने हैं उनको और इक्विप करना पड़ेगा, जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको आप मॉडर्न तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये जो साइबर जो थीव्स होते हैं
1: जी
0: वो
1: जी
0: आप हैकर्स मतलब वो दे आर हेड ऑफ यू, तो
1: बिल्कुल
0: इतना ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए तो ये तो एक तरह का, अगर आपने सुरक्षित सुरक्षा तो चाहिए ना, फाइनेंस में अगर आना है या
1: जी जी
0: किसी भी
1: जी
0: गवर्नेंस फील्ड में, तो नागरिकों की सुरक्षा, हम लोग भोले वाले लोग हैं हमारे
1: बिल्कुल
0: देश में,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उनको आप इस तरह साइबर ठगी के अगर शिकार बनाए बन जाएं तो अच्छी बात नहीं है।
1: बिल्कुल। Moving on to the crude oil market now, global crude oil prices rose today amid market caution over whether talks between Iran and Oman will restore flows through the Strait of Hormuz, while reports of attacks on Saudi tankers in the Red Sea and the Gulf of Aden renewed supply tensions. Brent crude was trading 1% up at $80.23 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 0.8% higher at $75.86 per barrel when reports last came in. What is this deal about between Iran and Oman? It is seen as a temporary deal where there'll be no fees or toll that is to be charged. And how is this being linked to the deal between Iran and the US vis-a-vis the MOU?
0: Well, it's a part of the entire Iran-US deal. It's an important component because at the center right now, at the center of the US-Iran deal is the reopening and restoring the traffic, ship liners traffic to normal, to normalcy. And on the one side of the strait is the Iran, other side is Oman. So Oman is an important stakeholder. So in Oman, that's how the administration, they are trying to see what kind of mechanism can be worked out so that this peace deal is really worked out.
1: हाँ, ये श्रोताओं आपको लिए चले कार्यक्रम के अंतिम चरण में सराफा बाजार। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के रुख में थोड़ा सा अलग अलग रुख देखा जा रहा था। एक ओर जहां 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% बढ़त के साथ 1,49,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं चांदी 0.6% कमजोर होकर 2,27,030 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से प्रकाश जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: शुक्रिया।
2: एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंड ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेंसेक्स गेन्स ओवर 350 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्ड एट 24,636। लोकसभा पासेस अ टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। फॉर नाउ, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता को सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की है। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वली शेट्टी को हराया। अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज भी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said the scheme will create 1.5 lakh jobs. He said Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey. The scheme will establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs also approved construction of four-lane highway from Baihatta Chariali near Guwahati to Tejpur in Assam.
3: Today's second major decision is related to an important highway project in Assam. It is the Baihatta Chariali Tejpur 4-lane highway, stretching from Baihatta Chariali, located just outside Guwahati, to Tejpur. The highway will be 135 kilometers long, with

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स 2026 वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का गठन 20 वर्ष पहले हुआ था और 2026 में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली, जिसके तहत अब तक लगभग 115 बैठकें अलग अलग स्तर की, अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं की हो चुकी हैं, मंत्रियों की और भी लेवल्स पर मीटिंग्स हुई हैं, और जो पूरा क्लाइमैक्स होना है वो सितंबर में जब हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी। सो क्या है ये ब्रिक्स की ग्रुपिंग का महत्व और किस तरह से ये लाभान्वित कर सकता है जो 11 सदस्य देश हैं और 10 पार्टनर देश हैं, और क्या है इसकी थीम, किस तरह से आपसी सहयोग सभी देशों के लिए एक बहुत

0: बड़ा एक एडवांटेज है। इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में कार्यक्रम में।
1: सोनू जी नमस्कार, इतने महत्वपूर्ण चर्चा का भाग मुझे बनाने के लिए आपका हृदय से आभार। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: प्रोफेसर जोशी, जैसा आपने अभिनंदन किया उसमें कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ब्रिक्स का महत्व, ये जो उभरते देशों का समूह है, इसका महत्व क्या है? और जो भारत की अगर हम अध्यक्षता की खास तौर से बात करें, तो जो ब्रिक्स का जो उन्होंने एक थीम दिया है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में भी, इसके पीछे की सोच के बारे में भी अगर आप हमें संक्षेप में बता सकें।
1: सोनू जी, आपने दो बिंदुओं का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर चर्चा की शुरुआत की है। तो ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता और इसके समिट की मेजबानी भारत के पास है। भारत आज ग्लोबल साउथ के प्रणेता देश के रूप में पूरे विश्व में जाना और माना जा रहा है। जब हम ब्रिक्स की ओर देखते हैं तो अलग अलग जो ग्लोबल साउथ की मेजर इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनका एक सरकारों का आपसी समूह है जिसमें 11 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका थे, अब इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया भी जुड़ गए हैं। ब्रिक्स के पिछले समूह में सबसे नवीनतम सदस्य के रूप में इंडोनेशिया इससे जुड़ा और इससे इसकी भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ है। हम देख सकते हैं कि लगभग सभी जितने भी ये इमर्जिंग इकोनॉमीज के देश कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका प्रतिनिधित्व ब्रिक्स में है। ग्लोबल साउथ का एक बड़ा प्रतिनिधि प्लेटफॉर्म हम इसे कह सकते हैं। और इसमें पार्टनर कंट्रीज के रूप में 10 देश जुड़े हुए हैं, जिसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, नाइजीरिया और वियतनाम जो है इस पूरे ब्लॉक के पार्टनर फ्रेमवर्क का भाग है। 2009 में हम देखते हैं कि ऑफिशियल समिट सोना ब्रिक्स के शुरू हुए और फिर 2011 में जब साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन करके ब्रिक्स से इसे ब्रिक्स बनाया, इसके बाद से इसका एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ और अब इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, इसका एक आर्थिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। और भारत, जैसे कि मैंने कहा, ग्लोबल साउथ के प्रणेता देश के रूप में पूरे विश्व में जाना और माना जा रहा है, तो रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की थीम के साथ, जिससे जुड़े हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और ग्लोबल साउथ के एजेंडा को भारत लगातार योगदान दे रहा है, इस थीम के साथ भारत इस वर्ष ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है।
0: प्रोफेसर जोशी, आपने इतनी खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से जो समूह है इसका कहें कि विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में, किस तरह से ये बढ़ा है और जो मेजबानी भारत कर रहा है, कितने उन्होंने एक स्पष्ट प्राथमिकता दी है अपने थीम के द्वारा। ये जो पहली मीटिंग हुई थी ब्रिक्स शेरपास की 9 और 10 फरवरी को 2026 में, उसमें ये प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद कई मीटिंग्स हुई है प्रोफेसर जोशी, जो विदेश मंत्री है ब्रिक्स देशों के, उनकी मीटिंग हुई 14-15 मई को 2026, और जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई 25-26 जून को, और अभी ओडिशा में जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से सहयोग हो उसको डिस्कस करने के लिए, और कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भोपाल में हो रही है। तो आप हमें एक मोटे तौर पर बता सकती हैं कि जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो किस तरह का आपसी सहयोग उभर के आता है, क्या प्रोडक्टिव या क्या प्रैक्टिकल आउटकम्स उभर के आते हैं?
1: सोनू जी, आपने ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि अक्सर हम इस प्रकार के जो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी बात करते हैं, इनमें भारत की भूमिका की बात करते हैं, पर इनका भारत जैसे देशों की आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की प्रगतियों पर क्या असर पड़ता है, ये भी जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ऑप्टिक्स की यहाँ पर बात नहीं है, टेंजिबल आउटकम्स की बात है। भारत ने जब 2023 में G20 की मेजबानी की थी, अध्यक्षता की थी, तभी से हम इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के न सिर्फ डेमोक्रेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम इसमें ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है, जिसमें कि ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज को नेतृत्व की भूमिका दिलाना, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म करना, किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज और लड़ाई को मजबूत करना, इन सभी देशों की सुरक्षा, अलग अलग प्रकार की जो सुरक्षा है वो अक्षुण्ण रहे इसके लिए प्रयास करना, इन सभी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चरल और सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न करना और इससे जुड़ी फंडिंग को जुटाना, ये तमाम जो लक्ष्य हैं इनको लेकर के विशेषकर ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है। तो आप देखिए, फरवरी में ब्रिक्स के शेरपास की पहली मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, इसमें जो थीम है, थीमेटिक जो जितने ये एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने बात की, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, इसको लेकर चर्चा हुई। कोर एजेंडा फिक्स हुआ जो ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, एनर्जी और हेल्थ सिक्योरिटी से, पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप से, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। फिर इसको लेकर के हम देखते हैं कि मई में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें सभी सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की। उसके बाद जून में एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जुलाई में हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई जो थीम्स है उसको लेकर के जुड़े हुए जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं ब्रिक्स के अलग अलग देशों से और यहाँ हमारे यहाँ अलग अलग शहरों में जुड़ रहे हैं। तो इससे सोनू जी, फिर द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग को और टेंजिबल आउटकम्स में फिर

0: बात करूंगी उसे, जैसे उदाहरण स्वरूप ब्राजील के साथ हमने जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में
1: जी
0: बीते वर्षों में अपने सहयोग को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है, चाहे वो हमारा बायोफ्यूल अलायंस हो या सोलर अलायंस हो,
1: जी
0: तो इस तरह से द्विपक्षीय स्तर पर भी सहयोग मजबूत होता है और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी ये जितने भी हमारे एजेंडा हैं इनको एक नई दिशा मिलती है और योगदान मिलता है।
1: सो प्रोफेसर जोशी, आपने बहुत खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से प्रैक्टिकल आउटकम्स आते हैं। अगर हम तात्कालिक बात करें तो अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है भुवनेश्वर में, और अगस्त 5 से 7 तक ये मीटिंग होनी है, और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। आप खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह की आउटकम्स आप एज एन एक्सपर्ट सोचती हैं कि निकल के आ सकती हैं? कौन से एरियाज में आपको लगता है कि टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग या स्किल्स डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, या फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, इन एरियाज पर भी ध्यान दिया जाएगा?
0: निश्चित तौर पर सोनू जी, और यहाँ पर फिर प्रोफेशनल मोबिलिटी का भी जो बिंदु है वो जुड़ जाता है। भारत जैसा देश जो कि पूरी आबादी, विश्व की जो युवा आबादी है उसकी 22% युवा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, हम एक युवा देश है, तो ऐसे में ये जो युवा आबादी है, जेन जी है, जेन अल्फा है, जेन बीटा है, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को, किस प्रकार से स्टार्टअप्स को, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, और अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, चाहे हम रक्षा का क्षेत्र देखें, या अलग अलग सामाजिक हम क्षेत्रों को देखें, तो इसमें यूथ पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो। अब इसमें फिर शिक्षा से जुड़े हुए एक्सचेंजेस से जुड़े हुए समझौते भी हमारे सामने आते हैं जो कि ब्रिक्स के स्तर पर या द्विपक्षीय स्तर पर होंगे। उदाहरण स्वरूप हमारा जो ICCR है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च जो है, या ICSSR है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च, ये इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स प्रदान करता है, ये जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है इन देशों के युवाओं को जो यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, वाइस वर्सा हमारे यहाँ के युवा इन देशों में जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो शिक्षक है, शिक्षकों के एक्सचेंजेस, शिक्षकों के लिए वर्कशॉप्स और इस प्रकार की जो सुविधाएं और इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो फिर इन मीटिंग्स के बाद हमको टेंजिबल आउटकम्स के रूप में, तो कैसे युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, कैसे एकेडमिशियंस का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग में जो है चर्चा की जा रही है सोनू जी।
1: सो प्रोफेसर जोशी, अब ग्लोबलाइजेशन का जो एक दौर आया था, फिर बीच में हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मल्टीलैटरलिज्म थोड़ा वीक हो रहा है, लेकिन अब ब्रिक्स का जो हम एक समूह देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग, और जिस तरह से हमने देखा है कि 115 बैठकें हुई हैं अलग अलग अलग अलग क्षेत्रों में, और आउटकम्स उभर के आ रहे हैं, आपको लगता है कि उभरती टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है सभी देशों को आपस में जोड़ने के लिए, और जो एक आदान प्रदान है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत हद तक सहायक है?
0: बिल्कुल सोनू जी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब हम शक्ति की परिभाषा की ओर नजर डालते हैं तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शक्ति की परिभाषा एक मिलिट्री और टेरिटोरियल शक्ति या पावर तक सीमित थी। उसके बाद 90 के दशक में जब वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने दस्तक दी तो किस बेसिस पर या किस शक्ति के बलबूते दस्तक दी? तकनीक की शक्ति के बलबूते दस्तक दी। फिर हमने इंटरनेट, ICT टेक्नोलॉजीज, MNCs को हमारे द्वार खटखटाते देखा। फिर ये जो तमाम ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, इन्होंने अपनी ओपन इकोनॉमी के माध्यम से FDIs के लिए द्वार खोले, और फिर हमने देखा कि ये तमाम देश जो है ये आर्थिक तरक्की की ओर बढ़े। इन सब में तकनीक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये जो तकनीकी सहयोग है ये आज भी हम देख सकते हैं कि ब्रिक्स जैसे मंचों पर सहयोग का एक बहुत बड़ा एरिया कह लीजिए या एक एलिमेंट कह लीजिए, जिसके माध्यम से ये जो तमाम देश हैं, चाहे आप देखिए स्वास्थ्य का क्षेत्र देखिए, शिक्षा का क्षेत्र देखिए, आप विदेश नीति को देख लीजिए, आप रीजनल या ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, तो हर कहीं तकनीक जो है उसका एक रोल है। बिना तकनीकी सहयोग के और बिना तकनीकी दक्षता के कोई भी देश आज की तारीख में आगे नहीं बढ़ सकता, और ये जो तकनीकी सहयोग है ये फिर न सिर्फ मल्टीपोलैरिटी को मजबूत करता है, ये कहीं ना कहीं शक्ति के अलग अलग जो है पोल्स हमें बनाता हुआ दिखाई पड़ता है, ये मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स को भी मजबूत करता है, और फिजिकल बॉर्डर्स के अक्रॉस देश और उसके लोग आपस में एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। तो ये तकनीकी शक्ति है, और ये जो तकनीकी सहयोग है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये ब्रिक्स का एक प्रमुख एजेंडा है।
1: सो प्रोफेसर जोशी, ये सारी उभरती इकोनॉमीज हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सो आपको लगता है कि उस संदर्भ में भी एक बहुत ही एक ये सिनर्जिस्टिक सिनर्जी है इस समूह में, क्योंकि सब किसी ना किसी डेवलपमेंट साइकिल की स्टेज से गुजर रहे हैं, सो उनकी सबकी प्रायोरिटीज आपको लगता है कि साझा है, और इसलिए जो इसके परिणाम भी है वो ज्यादा मजबूत आते हैं ऐसे समूह के?
0: बिल्कुल सोनू जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, विविधता में एकता, हमारे जो ग्लोबल साउथ के ये देश हैं और विशेषकर जब हम ब्रिक्स के मेंबर नेशंस

0: और देखते हैं जो फुल मेंबर्स हैं, तो उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उनकी आर्थिक स्थितियां और सामाजिक स्थितियां भिन्न भी हैं, हम इस बात को भी समझें। ऐसे कई देश हैं, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के जो देश हैं वो यदि आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो वे बहुत मजबूत नहीं नजर आते, लेकिन उनके पास एम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स। और भारत जैसे देश जिनकी जिनकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिनके पास एक बड़ी संख्या में यूथ पॉपुलेशन है, तो यहां से फिर एक सिनर्जी और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको क्रिएट होती हुई नजर आती है, जिसमें जिस देश को जो आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति जो दूसरा देश कर सकता है उसके साथ वो हाथ मिलाते हुए नजर आता है। तो जैसे भारत ने घाना, मैं अफ्रीका की बात करूं, या नाइजीरिया, या फिर हम लैटिन अमेरिका में चलें तो जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, या हम ब्राजील की ओर देखें तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत ने बायलेटरल लेवल पर कई समझौते किए हैं। और इसी तरह से आप जब इन मेंबर नेशंस को देखेंगी तो इनके बायलेटरली और फिर ब्रिक्स के लेवल पर मल्टीलेटरली कई अग्रीमेंट्स भी हैं, और साझा सहयोग इस प्रकार का है कि जिन देशों को फंडिंग की आवश्यकता है तो उनकी फंडिंग के माध्यम से सहायता की जाए। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक कहीं ना कहीं भिन्नता नजर आती है, कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत प्रगति कर चुके, भारत जैसा देश आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब हम देखते हैं तो अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के और साउथ ईस्ट एशिया के कई ऐसे देश हैं जिनको की फंडिंग की आवश्यकता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी प्रकार से इन देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और वहां पर फिर भारत जैसे देश जो है वो इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन संसाधनों का हम कैसे उचित प्रयोग कर सकते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और किस तरह से एक ग्लोबल लेवल पर हम एक अच्छी सप्लाई चेन क्रिएट करके उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, तो इसमें भारत सक्षम है। तो ये एक सिम्बायोटिक हमको सिनर्जी क्रिएट होती हुई नजर आती है।
1: भारत का जो नेतृत्व रहा उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये एक और पहलू रहा जिसमें भारत ने एक लीडरशिप रोल निभाया?
0: बिल्कुल, 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तब भारत की न सिर्फ सराहना हुई थी वैश्विक स्तर पर, बिना किसी एक भी डिसेंट के दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ था, और तमाम अलग अलग वैचारिकता रखने वाले देशों ने भी एकजुट होकर के भारत का जो एजेंडा था और जिस तरह से भारत ने G20 की मेजबानी की उसकी बहुत सराहना की थी, उसी प्रकार से भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व है। क्योंकि भारत शांति और सुरक्षा की बात करते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने की बात करते हुए आपसी सहयोग की बात करता है, जिसमें वो विन विन सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए लगातार काम कर रहा है, और इसमें जो लाइक माइंडेड देश हैं जिसमें ब्रिक्स के भी सदस्य देश शामिल हैं वो भारत के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पिवोटल केंद्रीय भूमिका है न सिर्फ ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे, बल्कि यदि मैं ओवरऑल वैश्विक राजनीति की बात करूं तो सोनू जी, भारत आज जिस मंच में जाकर के बैठता है उसका पलड़ा भारी होता है, और वहां से फिर हम देखते हैं कि कैसे वैश्विक सहयोग जो है वो निरंतर प्रगति करता है, आगे बढ़ता हुआ नजर आता है।
1: प्रोफेसर जोशी, थैंक यू सो मच। आपने ब्रिक्स पर, खासकर भारत के जो अध्यक्षता है ब्रिक्स की अभी 2026 में अभी चल रही है उस पर इस समग्र चर्चा की हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत धन्यवाद सोनू जी।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स 2026 वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

बारिश की रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सावन की शाम। और इस शाम में आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, यानी सुकून का सबसे खूबसूरत संगम। और आपका प्यार

ये गीत आपने सुना साल 1953 की फिल्म दो बीघा जमीन से, लता मंगेशकर मन्नाडे और साथियों की आवाज में। और अब सुनते हैं साल 1956 की फिल्म एक ही रास्ता का गीत, हेमंत कुमार और लता दी की आवाज में।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ। भाई सावन में पतंग उड़ाने की बात ही अलग होती है, ठंडी हवाओं के साथ उड़ती पतंग और बरसाती मौसम का अपना ही जादू होता है और हर उड़ान के साथ दिल भी आसमान छूने लगता है। बस कुछ ऐसा ही है हमारा अगला गीत, लीजिए सुनिए।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित 3 विधेयक सत्र के दौरान प्रस्तुत किए

0: जाएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से देश में 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र कल सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होगा।
1: कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की 2 रिपोर्ट और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित एक अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त समयबद्ध सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित 3 विधेयक भी 8वें विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी सदस्यों से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने और 3 दिवसीय सत्र को सार्थक और उत्पादक बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है।
2: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
3: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
2: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: श्री जोशी ने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के बारे में कहा कि देश वर्ष 2030 तक 500 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के सतत ऊर्जा भविष्य के लिए तकनीकी रोडमैप भारत के ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकल्प 2030-2047 को जारी किया गया। श्री जोशी ने अत्याधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
4: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि SAF एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

0: भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह इनोवेशन लैब सार्वजनिक निजी भागीदारी जन भागीदारी की उस शक्ति का उदाहरण है जो सरकारी विद्यालयों में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रही है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज सचिवालय में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्री सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान शहर में बिजली की तैयारियों का जायजा लिया गया और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली के हर निवासी के लिए बिना रुकावट, भरोसेमंद और कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कला तथा संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज आगामी पंजाबी साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस आयोजन के माध्यम से पंजाबी भाषा, साहित्य, संगीत और समृद्ध विरासत को और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी भी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सके। श्री सिरसा ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में हर भाषा, संस्कृति और परंपरा को पूरा सम्मान मिले। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने आज नजफगढ़ जोन के अंतर्गत द्वारका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्वच्छता और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री खेरवार ने अधिकारियों को नियमित रूप से कूड़े को हटाने और उच्च स्तर की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वस्त्र मंत्रालय कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
2: वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। मंत्रालय के अनुसार समारोह का प्रमुख आकर्षण संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों का वितरण होगा। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। समारोह के दौरान अर्थ रूट थ्रेड, ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही पुरस्कार विजेता हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने रोजगार धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश कर राजस्थान के जोधपुर से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये मामला टेलीग्राम आधारित पार्ट टाइम रोजगार और निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रोजगार धोखाधड़ी के नाम पर लोगों से लगभग 3 लाख की ठगी की। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 7वीं पुण्यतिथि पर वसंत उद्यान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुषमा स्वराज का स्नेह, आत्मीयता और प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनका अटूट विश्वास आज भी सभी की स्मृतियों में जीवित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा की। इस दौरान श्री यादव ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बेहतरीन सेवाओं की सराहना की और स्वच्छ सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रीवा सोलर प्लांट के साथ इसके जुड़ाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जुड़ाव टिकाऊ शहरी परिवहन के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ, जिसमें देश के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक और पुरस्कार जीते। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को मौके, सुविधाएं और साथ मिले तो वे काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस 1.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए काम किया है।
1: हमारा देश जो एक युवाओं का देश है, यहाँ के बच्चों को अगर मौका मिले, सुविधाएं मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो वो बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचने की ताकत रखते हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने सभी इन स्टूडेंट्स को, 1000 स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत चलते हैं, इस 1.5 ईयर ऑफ अवर टेन्योर हमने ये कोशिश की है कि दिल्ली में एजुकेशन को एक अलग जगह लेके जाया जाए, जहाँ पर हमारे इन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हम बेहतर सुविधाएं दे सके।
0: दिल्ली में इस वर्ष 4 अगस्त तक 137 दिन स्वच्छ वायु वाले दर्ज किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न उपाय लगातार किए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार 2,243 मीट्रिक टन निर्माण और अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह और निपटान किया गया है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए हैं। सरकार ने बताया कि 81 सड़क सफाई वाहनों ने 2,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई की है और 169 मीट्रिक टन सड़क की धूल हटाई है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कहा, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए। और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व

का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, यह तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉ एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉ सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीके सदस्य

एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालू हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा।

ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया भारती
1: और मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जिसमें हम आपको देंगे हर मैच का अपडेट, हर मैच का हाल और जया हर खिलाड़ी की खबर भी।
0: बिल्कुल, तो आज हमारे पास खेल के पिटारे में बहुत कुछ है, चाहे वो मैदान पर देश का मान बढ़ाने वाली हमारी राष्ट्रीय शान हॉकी की बात हो या फिर बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार। तो शुरू करते हैं आज के स्पोर्ट्स स्कैन का सफर और नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर।
1: तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गार्गा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
0: विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की अमानत कंबोज ने डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं आशीष यादव और टी धरणीधरन ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह पक्की की।
1: भारतीय हॉकी टीम चीन में होने वाले AFH जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की गई है। उधर जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बनाई।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में छठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। श्री रिजिजू ने बताया, अगले खेलो इंडिया खेलों की मेजबानी तेलंगाना करेगा।
1: और अरुणाचल प्रदेश को एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली।
0: तो शुरुआत करते हैं कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट से। जैसा कि हमने आज के कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया कि बैडमिंटन कोर्ट की रफ्तार पकड़ चुकी है हमारी टीम, तो कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की 17 साल की तन्वी शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी है। पिछले सप्ताह ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली तन्वी ने अब कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने अपनी ही देश की श्रेयांशी वल्लीशेट्टी को हराया।
1: जी हाँ, और अश्मिता चारिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब जो तीन भारतीय खिलाड़ी हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रतियोगिता में अनमोल खरब का सफर समाप्त हो गया है। पूरे मैच का हाल जानने के लिए जया सुन लेते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की खास रिपोर्ट।
2: अनमोल खरब को प्री क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के ओलंपियन वू थी ट्रांग के खिलाफ हुए कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अनमोल ने इस मैच को 23-21, 15-21, 21-18 से गंवाया। इस हार के साथ ही प्रतियोगिता में उनका सफर समाप्त हो गया। हालांकि शुरुआती गेम में अनमोल ज्यादातर समय नियंत्रण में थी, लेकिन उन्होंने 4 गेम पॉइंट गंवा दिए, जिससे वू थी ट्रांग को शुरुआती बढ़त लेने का मौका मिल गया। इसके बाद अनमोल ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में वो वापसी नहीं कर सकी और वू थी ट्रांग ने मुकाबला लिया। उधर दूसरे क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वल्लीशेट्टी को हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। शुरुआती गेम में पीछे चल रही तन्वी ने जोरदार वापसी की और कई पॉइंट्स लेकर पहला गेम अपने नाम किया। श्रेयांशी वल्लीशेट्टी ने दूसरे गेम में वापसी की। हालांकि निर्णायक गेम में तन्वी ने शुरू से ही नियंत्रण बनाए रखा और 21-16, 17-21, 21-13 से मैच जीत लिया। इसके अलावा अश्मिता ने मेजबान कोरिया की किम मिन जी को जबकि जापान की मनामी सुइजू को पराजित किया। महिला डबल्स में आज भारत की रितिका ठाकर और सोनाली सिंह का सफर समाप्त हो गया। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें नकार्डे और ताकाहाशी की जापानी जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में प्री क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारागा की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को पराजित किया। ऐसे में अब सबकी नजरें कल होने वाले महिला सिंगल्स और पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल पर होंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: जी हाँ, ये रिपोर्ट हमने सुनी। और अगर जया हम एक नज़र डालें तन्वी शर्मा के करियर पर, तो 2026 में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब उन्होंने जीता था। इसके अलावा 2025 में डेनमार्क चैलेंज की वो विजेता रही हैं। 2025 में ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 में उप विजेता थी। 2025 में ही गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 में वो उप विजेता थी। 2024 में बॉर्न इंटरनेशनल का खिताब जीता। 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा रही हैं। इसके अलावा जूनियर विश्व चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडल भी जीती थी। तो तन्वी शर्मा, जो कि अभी 17 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है पूरे मैच में, वो काबिल-ए-तारीफ है जया।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से वो कोर्ट में अपनी गजब की फुर्ती, तेज मूवमेंट हो या फिर जो आक्रामक स्मैश होता है, उनके लिए ही वो जानी जाती है। और जब कल उनका सामना रक्षिता रामराज से ही होगा, जो कि हमारे ही देश की हैं, तो उस समय देखने वाला होगा, क्योंकि रक्षिता भी काफी कड़े टक्कर दे चुकी हैं। अगर हम बेहद दबाव वाले क्षणों की बात करें तो उसमें भी रक्षिता ने बहुत नियंत्रण के साथ, बहुत शांति के साथ अपनी प्रतियोगिता को कंप्लीट किया है। तो देखते हैं कि कल की नजरें महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा और रक्षिता रामराज के बीच होगी। और अगर हम दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करें तो अश्मिता चाहिला का सामना जापान की हीना अकेची से होने वाला है।
1: बिल्कुल, और अगर पुरुष डबल्स की अगर हम बात करें, इसके क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गारगा जो है, ये जोड़ी मलेशियाई जोड़ी से कल अपना दमखम दिखाएगी। इससे पहले आज प्री क्वार्टर फाइनल का मैच भी इन्होंने शानदार तरीके से जीता और अब इन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करी है। तो हम सबकी नजर अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर लगी होगी।
0: बिल्कुल, देखते हैं कल का मैच कैसा होता है।
1: भारत की अमानत कंबोज ने आज इस सीजन का अपने सबसे अच्छा थ्रो करते हुए अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमानत जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी भारतीय हैं। उनसे पहले आशीष यादव और टी धरणीधरन पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बना चुके हैं। तो

0: जया, जिस तरह का प्रदर्शन किया है इंडियन एथलीट्स
1: एथलेटिक्स
0: ने,
1: ने
0: वो
1: बिल्कुल।
0: बहुत गजब की बात है।
1: तो सुनते हैं इस जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के हमारे एक विशेष डेस्क से एक विशेष रिपोर्ट।
2: मई 2026 में 52.24 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ एशियन अंडर 20 का गोल्ड मेडल जीतने वाली अमानत ने क्वालिफिकेशन राउंड में 52.58 मीटर का थ्रो किया, जिसके साथ अमानत दुनिया की बेहतरीन अंडर 20 थ्रोअर्स में छठे स्थान पर रही। महिलाओं का डिस्कस थ्रो फाइनल शनिवार को होगा। इससे पहले आशीष ने 69.87 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहे, जबकि धरणीधरन ने 68.07 मीटर का थ्रो करते हुए अपने ग्रुप से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में मोगली वेंकटराम ने अपने हिट में तीसरा स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने सीजन का अपना सबसे अच्छा समय निकाला, लेकिन टॉप 9 में शामिल ना हो पाने के कारण फाइनल में जगह नहीं बना सकी। ओरेगन के हेवर्ड फील्ड में 5 से 9 अगस्त के बीच आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भारत की 36 सदस्य ट्रैक और फील्ड टीम हिस्सा ले रही है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: जी हाँ जया, अमानत ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया, वो पंजाब से आती हैं और 2026 में उन्होंने एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52.24 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और भारत की पहली एशियाई जूनियर चैंपियन बनी। इसके अलावा उन्होंने अगस्त 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपना स्थान पक्का किया था, तो इसलिए सबकी जो नजरें हैं वो अमानत पर लगी हुई हैं।
1: बिल्कुल, अमानत एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाली खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो हम बाकी की बात कर रहे हैं, आशीष यादव की भी बात कर रहे थे, टी धरणीधरन की भी बात कर रहे हैं, जो जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना चुके हैं। बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमारे देश के खिलाड़ी हैं, तो हमारा पूरा समर्थन है इनको, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि साउथ अफ्रीका के जो अंडर 20 जेवलिन चैंपियन जॉन हेनरी कैमेंस हैं, उन्होंने यूजीन में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले ही थ्रो में 76.02 मीटर के साथ एक क्वालिफाइंग मार्क किया और हेमंस के पीछे जो 3 एथलीट्स थे उन्होंने 69 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया, जिसमें हमारे भारत के आशीष, पोलैंड के अलेक्जेंडर वेजना और चीन के यांग झाओई हैं। तो ऐसे में फाइनल में कड़े मुकाबले की उम्मीद है।
0: बिल्कुल, अब हमें इंतजार रहेगा कि फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और नजर डालते हैं हॉकी पर। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में आज उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में खेले गए सेमीफाइनल में उड़ीसा ने पंजाब को 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। उड़ीसा की ओर से बिल्कन ओराव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उन्होंने 28वें, 41वें और 52वें मिनट में गोल कर टीम को शानदार जीत दिलाई। वहीं आलोक कुमार ने 11वें और कप्तान दीपक प्रधान ने 37वें मिनट में गोल किया और इसके बाद अमित कीरो ने 59वें मिनट में गोल कर टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो जया, ये जो पहला सेमीफाइनल मैच था, इसमें जिस तरीके से बिल्कन ओराव ने जो हैट्रिक लगाई है, वो इस जीत में एक अहम भूमिका
1: निभाता है और एक काबिले तारीफ है। अगर हम दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो मध्य प्रदेश ने झारखंड को 2-0 से हराया। मध्य प्रदेश की ओर से राजवीर सिंह ने 56वें मिनट में गोल किया और इसके 2 ही मिनट बाद आशीर आदिल खान ने गोल कर टीम को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से झारखंड को करारी हार मिली है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे टूर्नामेंट है ना, वो लगभग पूरे देश को, जो हमारी राष्ट्रीय शान कहते हैं हॉकी, उसमें एक अच्छी पकड़ दे रही है हमारे देश के जूनियर खिलाड़ियों को भी। बता दें कि फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को कोयम्बटूर में खेला जाएगा और पंजाब और झारखंड प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे। और जब हमने हॉकी की बात की है तो हम ये भी बता दें कि जो भारतीय हॉकी है, उन्होंने भारतीय यानी कि इंडियन हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी।
0: जी हाँ, और मुख्य कोच टिम व्हाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में फिलहाल जुट गई है। टूर्नामेंट की तैयारी के लिए भारतीय टीम हाल ही में ब्रिटेन के दौरे से लौटी है। एशिया कप में मैचों का कार्यक्रम और पूल की जानकारी टूर्नामेंट शुरू होने के आसपास हमें मिलेगी और फिलहाल यहां पर पूरी टीम की जो घोषणा की

0: गई है और काफी जया बैलेंस टीम है हमारे बीच में।
1: जी अब हम बात करते हैं जो नई दिल्ली में छठी राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी और रविवार तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ओबी जनरल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता सरकार को खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ाती है।
2: हर पार्टी के एमपीस और अलग अलग एज के सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हम लोग फिट इंडिया खेलो इंडिया जो प्रोग्राम चलाते हैं तो एमपीस लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करके तो ये देश के लिए बच्चों के लिए युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है इसमें बहुत सिंपल बट बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके सारा व्यवस्था कर रहे हैं। स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप यूनिटी राजनीति में बहुत जरूरी है। ये मैं अभी राजीव प्रताप रूडी जी टीम को मैं बधाई देता हूँ।
1: और श्री रिजिजू ने यह भी बताया है कि खेलो इंडिया की मेजबानी जो अगले खेलो इंडिया की मेजबानी है वो तेलंगाना करेगा। तो जिस तरह से खेलो इंडिया पर सरकार हमेशा ध्यान दे रही है सिद्धार्थ, अगर हम कहें तो इसी का नतीजा है कि अभी अरुणाचल प्रदेश को भी एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है।
0: बिल्कुल, तो ये अब जो हमारी नजर है वो अरुणाचल प्रदेश की एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की जो मेजबानी है इसके ऊपर रहेगी, जिसे राज्य के साहसी खेलों और वैश्विक पर्यटन की पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चैंपियनशिप का आयोजन सियांग जिले के बोलिंग में होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग तासिंग ने आगामी प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा के लिए खेल प्रशासन से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकें की। यह प्रतियोगिता 5 से 9 अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएगी। और यहां पर यह बता दें तुम्हें जया कि जो सियांग नदी जो है ये ऊपरी ब्रह्मपुत्र में राफ्टिंग के लिए भारत के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। अरुणाचल प्रदेश की शक्तिशाली नदी अपने ग्रेड 3 से ग्रेड 5 स्तर के जो रैपिड्स हैं या जो उसके लिए ये बेहद मशहूर है। तो ऐसे में 5 दिन तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के शीर्ष राफ्टिंग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने इस नदी की तारीफ की तो अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रतियोगिता इसी नदी पर आयोजित होगी। यह सियांग नदी की सहायक नदी और बोलिंग की सियांग घाटी से होकर बहती है। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैंट में इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए जया और सिद्धार्थ को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
3: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
4: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
5: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ

0: कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
1: 19 लाख हाउस होल्ड आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
2: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
3: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। निशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
5: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को

0: चाहता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
3: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
4: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
3: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
2: Mr. Bajnow said the Cabinet Committee on Economic Affairs

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मानसून की चुनौतियां कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखाड़ दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खास तौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर जो बारिश की बौछारें हुई हैं उनसे बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम।
3: इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कई आपदाएं घटित होती हैं, और इसके लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्रीय सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्व अनुमान है और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना

0: पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी ये संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है, उसका क्या पूर्वानुमान है। जो हमारा भारत मौसम विभाग है वो हर हफ्ते अपनी मौसम की पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं, जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा। और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 डेज, कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सब तरह के उपाय किए जाते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क पे होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिशें की जाती
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल
0: हैं।
1: के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहां पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: देखिए, जहां तक मौसम के पूर्वानुमान का सवाल है उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉपलर वेदर रडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं, जिस पे रिलाई किया जा सकता है, का उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, भूस्खलन या बाढ़, त्वरित बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं, वहां पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियां सही तरीके से हासिल करना। हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं, उसके बावजूद भी सही सूचना कई बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बता, रिक्तिकरण करते हैं हम कि जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है। परंतु उस सब के बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर्स या पीरियड का टाइम होता है जिस समय हम सबसे ज्यादा जाने बचाई जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स की टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जाने बचाई जा सकती हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गम गामी होते हैं, जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। वहां का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहां का एल्टीट्यूड हाई होता है और वहां पर जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है, एनडीआरएफ की टीम है, ऐसे एसडीआरएफ भी गठित की गई है और डिस्ट्रिक्ट को भी कहा गया है कि आप अपनी भी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं, और मलबा कटाव बहुत करता है, और पानी के साथ जब मलबा आता है तो उसकी कटाव की जो बल शक्ति है वो कई गुना हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हमारे पुल के पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, मकान बह जाते हैं। तो ये सब होता है और इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कि हम लोगों को पहले से सूचित करें और उनको सुरक्षित स्थलों पर सुरक्षित मार्गों के जरिए ले के जाएं, तो ये सब तैयारियां पहले से करनी होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता और साझेदारी हमारे जन समुदाय की है। जब तक कि हम जन चेतना नहीं लाते और लोगों को जागृत नहीं करते कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर रह रहे हैं और काफी मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें, ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है।

0: रास्ते नजर नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। एक और चीज जो इस पे मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब ये सावन का महीना जैसे चल रहा है तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसकी तरफ हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाने लगे हैं और बड़े बड़े दुर्गामी स्थलों पर जाते हैं। उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है, और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है, तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में, इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से बारिश के कारण से तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं?
0: कभी भी जब लाइटनिंग होती है उससे पहले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बस्ट इवेंट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता आप कहाँ पर हैं। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहाँ से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है तो, और आउटडोर्स में हैं तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, स्टडी हाउसेस में जाना चाहिए और वहां पे अपने बचाव के लिए कोशिश करना। एक जो है मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है। आप अकलौते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चल जाते हैं मेटल के भाग, तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है, तो उस समय में उकड़ू बैठ के दोनों हील्स इकट्ठे करके और नी में अपना हेड डालते हुए वो बैठ जरूरी होता है ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा स्थल है निकटतम जगह पर जहां पे कवर्ड एरिया है तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते, उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग की, जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप किसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी, तो वहां पे घना जहां पे पौधों का समूह हो तो उसके नीचे जाना चाहिए ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल, पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए। तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर हैं जैसे, जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए किसी बंद क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में, तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है यातायात के लिए, पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मानसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें?
0: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई, जहां शहरीकरण हो रहा है वहां जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहां पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, परंतु जो कैपेसिटी भी है, क्षमता है नालों की, वो भी पूरा काम नहीं करती है अगर उसमें से मिट्टी, गर्दा, पॉलिथीन ये सब नहीं निकाले जाते और क्लीनिंग लेंस मानसून से पहले अच्छे तरह से नहीं की जाती है। तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है उसमें क्षमता कम हो जा रही है, तो और तीसरा हम लोग जो है अंडरपासिस बना रहे हैं जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पानी इनंडेशन हो जाता है। लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना

0: है और लोग उसमें फंस जाते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है, वो ग्राउंड फ्लोर पे है और इनंडेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे, तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता के समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है, ताकि मानसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का।
2: अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: management policies, it is that if you look at the core inflation, which is without food and fuel, because food and fuel are seasonal and they fluctuate at a decent pace. And also they are prone to supply side pressures. So if you take food and fuel out, your core is fairly moderate. If you take out gold and jewelry, the core is gets even more moderate. So therefore, the overall approach the RBI Monetary Policy Committee has been that since it is a supply pressure-led inflation outlook, since the core inflation is moderate, and since even the core inflation has a good component of gold and jewelry that has given rise to the core, the RBI Monetary Policy Committee has decided to stay put with the current repo rate.
1: Well, thank you so much, AKB, for being with us on this program and talking to us in the most simplistic terms what the RBI policy decisions are and the outlook for the Indian economy as per RBI Governor Sanjay Malhotra. Thank you so much, Sri AK Bhattacharya, for
0: Thank
1: being with us
0: you.
1: on this program.
2: You were listening to a discussion on RBI's policy decisions and the outlook for the Indian economy. The participants were A.K. Bhattacharya, economic analyst, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Insights. नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
4: कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल जीडीपी को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
3: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बैहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमियों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में

0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुए निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। यह सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चाहिला और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्ण प्रसाद गरागा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees to the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill when the House assembled at 2:45 p.m. After the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both houses of parliament witnessed repeated adjournments following a ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Later, the lower house was also adjourned for the day. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu today. During their conversation, the two leaders

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। भारत और इसराइल ने विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने ओडिशा में मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बनी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होगा। यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज किए, 2 तेल शोधन संयंत्रों पर निशाना बनाया। और भारत की 3 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श भी किया। भारत और सिंगापुर ने आज अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। ये समीक्षा नई दिल्ली में आयोजित भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श के 19वें दौर में की गई। बैठक में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप में शामिल 8 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की स्थिति पर भी चर्चा हुई। नई दिल्ली में जारी 5वें भारत रूस सेना भूमि प्रणाली उप समूह की बैठक के दौरान दोनों देशों ने आपसी विश्वास बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य तकनीक सहयोग आयोग के तत्वाधान में आयोजित इस 4 दिवसीय बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह DCOAS CD&S ने किया। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के मुख्य बख्तरबंद निदेशालय के उपप्रमुख मेजर जनरल तुफेकची अलेक्जेंडर ने किया। पिछले महीने नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी मामलों पर भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने अनुभवों को साझा किया और हिंसक उग्रवाद कट्टरता तथा आतंकवाद वित्त पोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी

0: ही बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के पास इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि हुई। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो रहे हैं।
1: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके, उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेव बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि बाजार का उद्देश्य फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, संगीत, डिजिटल मीडिया और उभरते कंटेंट फॉर्मेट में सहयोग का मार्ग तैयार करना है।
2: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, AI मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। निशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से समझौते को मंजूरी मिलनी बाकी है। एक रिपोर्ट।
3: समझौते के अनुसार जलडमरू मध्य में प्रवेश करने वाले जहाज ईरान के निकटवर्तीय मार्ग का उपयोग करेंगे, जबकि बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के निकटवर्तीय मार्ग का उपयोग करेंगे। कोई पारगमन शुल्क या सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा और क्षेत्रीय पक्ष समुद्र में बारूदी सुरंगों को हटाने और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं। समझौते को मंजूरी मिलने के बाद अमरीका और ईरान अपने शांति समझौता ज्ञापन के अनुसार जलडमरू मध्य से खोलने और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का प्रस्ताव तैयार करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: इसराइल की सेना ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में एक अभियान के दौरान हुए विस्फोट में उसके 2 सैनिक मारे गए और 4 अन्य घायल हैं। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। इसराइली सेना ने शुरुआत में उसे हिजबुल्ला की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी शहर तिबनिन पर इसराइली हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हैं। यूक्रेन ने रूस के तेल भंडार को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि सेना ने रूस के बशकोर्तस्कान और यारकोस्ट क्षेत्र में तेल रिफाइनरियों पर हमला किया। एक रिपोर्ट।
4: हमले के बाद यारोस्लाव शहर के ऊपर घना काला धुआं देखा गया। प्रांतीय गवर्नर ने इस क्षेत्र पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। नष्ट किए गए ड्रोन के गिरे मलबे से तेल भंडारण टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के 605 ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि हमलों में 3 लोग मारे गए। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले भी जारी हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
0: बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद का चुनाव इस महीने की 20 तारीख को होगा। बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा की। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 अगस्त को होगी, जबकि उम्मीदवार 18 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव की आवश्यकता मोहम्मद शहाबुद्दीन के 24 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद पड़ी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों से पहले दिन रावल

कोर्ट में हिंसक झड़पें हुई। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। ब्रसेल्स स्थित ईयू रिपोर्टर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में लगातार बंद रहने से पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों के लिए जमीनी स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो गया है। खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चहला और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी अंतिम आठ में पहुंच गई है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी विलिशेट्टी को हराया, वहीं अश्मिता ने मेजबान कोरिया की किम मिनजी को और रक्षिता ने जापान की मनामी सुइजू को पराजित किया। पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इसराइल ने विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने ओडिशा में मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बनी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होंगे। यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज किए, 2 तेल शोधन संयंत्रों को निशाना बनाया। और भारत की 3 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आज का हर श्रृंगार अर्पणा आप सभी का स्वागत करती है। वक्त हो गया है 10:31 और 15 सेकंड। तो आज के हर श्रृंगार की शुरुआत करते हैं सिलसिला फिल्म के गीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। एक बार फिर से बता दूं, आज का हर श्रृंगार अर्पणा के साथ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज है।

सिलसिले तो कुछ ऐसे ही बनते हैं, पहले आप एक ख्वाब देखते हैं और जब ख्वाब सच हो जाता है तो आपको लगता है कि ये तो मोहब्बत हो गई है। दोस्तों प्यार जो है ना वो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर पल का साथी है, हर याद का तूफान और हर ख्वाब के पीछे छिपी सच्चाई है। क्या है? बस एक प्यार ही तो है। परिंदा फिल्म से ये गीत आशा जी और सुरेश वाडकर की आवाज।

पूरे हो गए और उनके बिना ये जिंदगी भी अधूरी सी लगती है और ऐसा लगता है कि उनके साथ बिताए हर पल हर घड़ी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल तो घड़ी ने बजा दिए हैं 10:43 और 23 सेकेंड और आप सुन रहे हैं

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

10:45 और 30 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर श्रृंगार में अर्पणा है आपके साथ।

जो माध्यम बनता है वो बनता है गीतों का, आपकी और हमारी बातों का। अगला गीत येसुदास की आवाज में होगा, फिल्म का नाम है टूटे खिलौने। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट और 11:40 पर होगा गीत मेरे मनमीत, संग रहूंगी आपके मैं अर्पणा। फिलहाल इस गीत का आप आनंद लें और 11 बजे समाचार जरूर सुनिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ।

0: हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Later, the lower house was also adjourned for the day. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu today. During their conversation, the two leaders reviewed sustained progress in India-Israel Special Strategic Partnership and reaffirmed their commitment to further strengthening the bilateral cooperation across various sectors for the mutual benefit of the two countries. Both the leaders also exchanged views on the recent developments in West Asia. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day tomorrow with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. हमेशा की तरह हम हाजिर हैं कारोबारी खबरों को लेकर और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रकाश चावला. प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार,
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट. सेंसेक्स गेन्स ओवर 350 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,636. लोकसभा पासेस द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 350 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,636 दर्ज हुआ. लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is our disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार. लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक यानी लगभग 0.5% बढ़त के साथ 78,955 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% से अधिक नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone for the second straight session today. Sensex gained 374 points or nearly 0.5% to close at 78,955. Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped over 0.4%, while the small-cap 100 index added nearly 0.5%. After opening higher, Sensex maintained a positive momentum throughout the session. Meanwhile, Nifty traded in a narrow range, recovering from the slight dips witnessed during the intraday trade.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 16 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे. नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे प्रमुख रही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जिसे 4% का घाटा हुआ. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर

0: 2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए। इंडिगो को लगभग 1.5% का नुकसान हुआ। उधर लाभ उठाने वालों में प्रमुख कंपनी रही रिलायंस, जिसके शेयरों में 3.4% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 2.5% मुनाफे के साथ बंद हुए।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks advanced over 2%, capital goods rose nearly 1.3%, and energy gained over 1.1%. In contrast, realty dipped over 1.4%, services shed 1.1%, and utilities lost over 1%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,161 companies declined, 2,117 companies advanced, and 215 companies remained unchanged.
0: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे कमजोर हुआ, 95.22 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। प्रकाश जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। लगातार दूसरे सत्र में आज तेजी देखने को मिली है बाजार में, क्या प्रमुख कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, ये ना एक तरह का मार्केट में सीमित दायरे में काम हो रहा है
0: जी।
2: कई दिनों से ये काम हो रहा है और आज भी जो है वो मार्केट ग्रीन में बंद हुई है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जो मार्केट की जो डेप्थ है या मार्केट की जो डेप्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ बोलते हैं
0: जी,
2: वो नेगेटिव में रही, आप लोग अपने रीड आउट में बोल रहे हैं
0: जी।
2: तो ये मार्केट में एक सीमित दायरा हो रहा है, इसमें शफलिंग होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, कई प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और मार्केट ये सीमित दायरा हमारी भारतीय मार्केट में काफी दिनों से चल रहा है और ये ऐसे ही रहने वाला है
0: जी। जी जी,
2: इसके कई कारण हैं, हम आपको बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सीमित दायरा, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई गिरावट भी कोई एक सीमित दायरा है। निफ्टी में अगर देखें तो 23,800 से लेके 24,500-26,000 तक जैसे अब कुछ है, ये इसी 800,000 के पॉइंट में रहता है
0: जी।
2: तो ये सीमित दायरा है, उसके कई कारण हैं और कुछ हद तक ये राहत मिल रही है कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस था काफी हद तक उसको वो निदान की तरफ जा रहा है।
1: प्रकाश चावला दी, वी ऑल्सो सॉ दैट दी पीएसयू बैंक्स एडवांस्ड बाय 2%। हाउ इज दैट लिंक्ड टू व्हाट द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन अबाउट लीविंग रेपो रेट्स अनचेंज एट 5.25%, बेयरिंग इन माइंड दैट देर आर inflation headwinds coming our way, especially what's happening in West Asia, as you mentioned now. PSU banks, their first quarter results, do you think that's a fundamental reason why this index actually went up? Is there any linkage to what the central bank actually made the announcement about?
2: Well, today's movement in PSU banks, or banks for that matter, I don't think it has much to do with the policy which was unveiled yesterday. The policy, as you said, retained the benchmark interest rates at I think 5.25%, what is called repo rate. Now, RBI governor himself raised this concern that the inflationary headwinds are there, still there, because of global uncertainties and also because of some deficit that could be there in the monsoon rains. So those concerns are there. Today's movement, I don't think it could be a shuffling, reshuffling of the portfolio. Some profit booking might be there. But I don't think it has got much to do with the policy, so to speak.
0: आपने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की चर्चा की, एक खबर है एफसीएनआर से जुड़ी हुई, साथ ही रुपए से जुड़ी हुई, पहले श्रोताओं को हम उसकी जानकारी देना चाहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि एफसीएनआरबी योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की ताजा आवक में उत्साहजनक वृद्धि हुई है, इससे घरेलू अर्थतंत्र में तरलता बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना को समय से पहले बंद किए जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। रुपए की मजबूती से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में रुपया मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रुपए की स्थिति का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है और केंद्रीय बैंक अपनी ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप

0: give them good returns. But then uncertainty now and then pops up, and then it leads to this kind of sharp volatility. That's the reason what's happening in the KOSPI or the Korean market.
1: Moving on to more news, this time from the Civil Aviation Minister. K. Ram Mohan Naidu has debunked the claims, stating that the government plans to blend ethanol with aviation turbine fuel ATF are completely false and irresponsible. In a social media post, Mr. Naidu today said that there is no such proposal. He said that ethanol and sustainable aviation fuel SAF are entirely different and should not be conflated. Mr. Naidu said that SAF is an internationally certified aviation fuel recognized by the International Civil Aviation Organization and adopted globally, which undergoes rigorous testing and meets stringent global safety standards. In more news, Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said this will create 1.5 lakh jobs. Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey.
2: आइए आगे बढ़ें. सरकार ने ऑनलाइन प्रकाशित हो रहे एक फर्जी ज्ञापन का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है. फर्जी ज्ञापन में कथित तौर पर जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को वित्तीय सत्यापन और संपत्ति निरीक्षण के लिए अपने निजी बैंक खाते में धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह ज्ञापन फर्जी है और इसका सर्वोच्च न्यायालय या वित्त मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है. सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऐसे ज्ञापनों की प्रामाणिकता की पुष्टि करें. यहां पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, देश में फर्जीवाड़े, डीप फेक और कह लें इस तरह के जो विभिन्न तरह के असली दिखने वाले विज्ञापन कह लें, ज्ञापन कह लें, खबरें कह लें, प्रसारित होते हैं और उसमें आम लोग फंस रहे हैं, उससे निपटने का क्या उचित उपाय हो सकता है और किस तरह उससे बच सकते हैं लोग?
0: साइबर सिक्योरिटी जो है नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं
2: जी,
0: अपना सारा फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है और हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी में आरबीआई के साथ मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं इनके, अभी मैंने मालूम किया कि काफ़ी जगह पे साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं
2: जी,
0: तो जो साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं उनको और इक्विप करना पड़ेगा. जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको आप मॉडर्न तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ये जो साइबर जो थीव्स होते हैं वो
2: जी, जी.
0: आप हैकर्स मतलब वो दे आर हेड ऑफ यू, तो इतना ज्यादा होते हैं, तो इसलिए तो ये तो एक तरह का अगर आपने सुरक्षा तो चाहिए ना. फाइनेंस में अगर आना है या
2: जी,
0: किसी
2: जी,
0: भी गवर्नेंस फील्ड में, तो नागरिकों की सुरक्षा, हम लोग भोले वाले लोग हैं हमारे देश में,
2: बिल्कुल.
0: तो उनको आप इस तरह साइबर ठगी के अगर शिकार बन जाए तो अच्छी बात नहीं.
2: बिल्कुल.
1: Moving on to the crude oil market now. Global crude oil prices rose today amid market caution over whether talks between Iran and Oman will restore flows through the Strait of Hormuz, while reports of attacks on Saudi tankers in the Red Sea and the Gulf of Aden renewed supply tensions. Brent crude was trading 1% up at $80.23 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 0.8% higher at $75.86 per barrel when reports last came in. What is this deal about between Iran and Oman? It is seen as a temporary deal where there will be no fees or toll that is to be charged. And how is this being linked to the deal between Iran and the U.S.? Vis-a-vis the MOU?
0: Well, it's a part of the entire Iran-US deal. It's an important component because at the center right now, at the center of the US-Iran deal is the reopening and restoring the traffic, ship liners traffic to normalcy. And on the one side of the strait is the Iran, other side is Oman. So Oman is an important

0: stakeholders. So in Oman, that's how the administration, they are trying to see what kind of mechanism can be worked out so that this peace deal is really worked out.
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चले कार्यक्रम के अंतिम चरण में सराफा बाजार. भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के रुख में थोड़ा सा अलग अलग रुख देखा जा रहा था. एक ओर जहां 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% बढ़त के साथ 149,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं चांदी 0.6% कमजोर होकर 227,030 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. और बस यही पर श्रोताओं की ओर से प्रकाश जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
0: शुक्रिया.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes the taxation and other laws amendment bill 2026. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

11:40 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुनेंगे अब गीत मेरे मनमीत और आज आपके संग है अर्पना। पहला गाना होगा उत्सव फिल्म से लता जी और आशा जी की आवाज में और उसके बाद आप तेजाब फिल्म से गीत सुनेंगे। आवाज होगी शब्बीर कुमार, अलका याग्निक और नितिन मुकेश की। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ बैक टू बैक इन दो गीतों का आनंद लीजिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

निगम की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर अब आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दें इजाजत, अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोबरधन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू केंजरापू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात की खामोशी धीरे धीरे अपना रंग बिखेर रही है। दिन भर की हलचल थम चुकी है। हवाओं में घुलने लगा है एक खामोशी का शोर जो कि बहुत कुछ कह रहा है। रात की यही तो खूबसूरती है कि ये हमें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलाती है। तो आइए इस महकती हुई रात को सुरों और एहसासों से और भी हसीन बनाते हैं। जी हाँ, अगले कुछ लम्हों तक हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे, दिल को छू लेने वाली बातें और संगीत की मीठी महक। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मुकेश साहब की आवाज़ में श्रीमान सत्यवादी फिल्म का ये गाना।

मोहब्बत में रूठना भी कितना खूबसूरत होता है, क्योंकि हर नाराजगी के पीछे मनाने की एक मीठी सी उम्मीद छुपी होती है। कभी एक मुस्कान सारी शिकायतें मिटा देती हैं, तो कभी एक प्यार भरी आवाज़ दिल को फिर से अपने करीब ले आती है। रिश्ते वही सबसे खूबसूरत होते हैं जहां जीत किसी की नहीं बल्कि प्यार की होती है। तो इसी प्यारी सी नोकझोंक, अपनापन और मोहब्बत के एहसास के साथ चलिए हम और आप सुनते हैं अगला गीत। जी हाँ, और फिल्म है फिर वही दिल लाया हूँ, और आवाज़ है रफ़ी साहब और आशा भोसले की।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं 1963 की फिल्म ब्लफ मास्टर का। आवाज़ें हैं शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में पर्दे पर हैं शमी कपूर और सायरा बानो।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सावन की रुतु, आंखों में कजरा हो, जुल्फों में गजरा हो और महक रहा हो, हाथों में चूड़ियां धीमे धीमे खनक रही हो, तो समझ लीजिए कि मौसम ने प्यार का श्रृंगार पहन लिया। बहुत ही खूबसूरत रंगों, खुशबुओं और मीठे एहसासों से सजी होती है वो बेला जब ऐसी रुत सामने आ जाती है। तो चलिए सावन की ऐसे ही रुत में बात कर लेते हैं कजरा की, मोहब्बत की और प्यार की।

0: निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और 12:46 हो गए हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और अब चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंगा का गीत शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में।
1: हेलो, हिंदुस्तान का बेटा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

इसी गाने के साथ निशिगंधा का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में। और अब सुरभि को दीजिए इजाज़त, आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए हर संभव सहायता की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों की पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव रुतेंद्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्यूक गो ने की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। The Union Cabinet yesterday approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said, the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. Government has said that 16 Indian nationals, including 10 seafarers, have lost their lives in West Asia and 75 Indians have been injured since the outbreak of conflict in the region. In a written reply in Rajya Sabha, Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, said government extended all possible assistance to the families of the deceased Indian nationals for early repatriation of the mortal remains to India, in coordination with the host governments. The injured Indian national received medical treatment in local hospitals. In all cases involving war, zero incidents under the DGMA Welfare Scheme or Seafarers Welfare Fund Society, an ex gratia compensation of 10 lakh rupees is provided. The amount is disbursed by the government expeditiously to the next of kin of the affected seafarers following due diligence and verification. The centre has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force today, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu Kinjapuru yesterday reviewed the progress of Akasa Air and Alliance Air with their senior leadership teams. In a social media post, the minister said, India's civil aviation sector continues to expand under Prime Minister Narendra Modi's Udaan vision, with one new airport being added every 45 days and rising passenger demand making the country one of the world's most promising aviation markets. Mr. Naidu said the periodic review meetings aim to encourage airlines to expand fleet capacity, optimize operations, and further enhance safety standards. He also emphasized the need to strengthen grievance redressal mechanisms with a passenger-centric approach to improve the overall passenger experience. Expressing serious concern regarding the suffering of patients across Maharashtra, the Bombay High Court has redirected resident doctors to immediately call off their strike. The court had taken suo motu cognizance of the strike called by resident doctors to protest against the registration of homeopaths under the Maharashtra Medical Council and prescribe allopathic medicines, emphasizing that the court does not want a single person to lose his or her life amid the strike. The court yesterday warned the residents that their wages may be stopped if they fail to report back to work immediately. Pursuant to the court's remarks, the Indian Medical Association and Maharashtra Association of Resident Doctors have agreed the strike would be called off. While being informed that the petition challenging the registration of eligible homeopaths with the Maharashtra Medical Council is still pending, the High Court said the concerned bench shall hear the matter and decide it expeditiously. Bowling in Arunachal Pradesh Siang District is set to host the Asian Rafting Championships 2026 in October. Chief Minister Pema Khandu and Panchayati Raj and Rural Development Minister Ojing Ta Singh, the MLA of Bowling, held separate high meeting with key sports administrators to review preparations for the upcoming tournaments to be held between October 5 and 9. The 5-day international event will see Asia's top paddlers compete on the Simang River, a tributary of the Siang River, flowing through the Siang Valley in Bowling. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जी हाँ, संगीत की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। गीत संगीत से सजी ये महफिल, जी हाँ, प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ सुरभि एक बार फिर आपके साथ। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं से परे होते हैं और बरसों बाद भी जब वो कानों में पड़ते हैं तो यादों के अतीत के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं और मन एक बार फिर उसी सुनहरे दौर में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही मधुर धुनों को, गीतों को सजाकर हम लेकर आए हैं आज गीत सुहाने में। तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको काला पानी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और रफ़ी साहब ने।

कुछ नज़रें सिर्फ देखती नहीं बल्कि अपनी खामोश ज़बान में खूबसूरत पैगाम भी दे जाती हैं। उनमें होता है अपनापन, मासूमियत और मोहब्बत की वो रोशनी जो किसी भी दिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। और जब एक नज़र दिल को छू जाती है तो धड़कन में एक ही नाम गुनगुनाने लगता है। चाहत का सफ़र अक्सर उन निगाहों से शुरू होता है और पुकार बनकर होठों तक पहुंच जाता है। तो चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत फागुन फिल्म से।

0: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में। जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

ताली ताक धीम ताक ताली ताक धीम ताक धाला आम ताक धीम ताक ताली के न ताक नाक ताक धीम ताक नाक नाक धीम ताक नाक नाक धीम ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के डे ताली जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के डे जम तारी जग तारी ताक नाक ताक ताजिन्द ताजिन्द ताजिन्द ताज जम तारी जग तारी जाने जाने को

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म है मधुमती, लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज़।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जी हाँ, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी कभी भी धुंधले नहीं पड़ते। एक मुलाकात, एक मुस्कान या किसी की एक झलक जैसे ही मिल जाती है वैसे ही सब कुछ याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर मौसम में एक नई रौनक आ गई हो, हर रास्ता किसी खूबसूरत मंजिल की ओर जा रहा है। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है, जब किसी को देख लें तो उसके बाद दुनिया पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगती है ना?

प्यार में, मोहब्बत में, ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शब्दों में तो नहीं मिलते, मिलते हैं तो किसी की मुस्कुराहट में मिलते हैं। कभी निगाहें पूछती हैं सवाल, तो कभी मिलता है खामोशी से जवाब। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं तो हर सवाल खुद में आसान हो जाता है। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि उसमें जिज्ञासा भी होती है, भरोसा भी होता है और निभाने का वादा भी होता है।

और देखिए धीरे धीरे हम अपने अंजाम की तरफ आ गए हैं। गीत सुहाने प्रोग्राम में आपने बहुत ही खूबसूरत गीत और नगमे सुने हैं और चलते चलते बहुत ही खूबसूरत से गीत से आपको रूबरू कराते चलेंगे। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कभी कभी किसी की एक नज़र पूरी ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा बन जाती है और उस पल में ना कोई शोर होता है ना कोई इजहार, केवल दो निगाहें होती हैं जो दिल की सारी बातें खामोशी से कह जाती हैं और फिर वही एक नज़र हर मुस्कान की वजह हो जाती है और वहीं से शुरू होता है एक हसीन ख्वाब। शायद मोहब्बत का सबसे पहला एहसास भी यही है कि जब कोई आपको देखे तो आपको लगे कि ये पूरी दुनिया बस उस पल में ठहर गई है ना? तो चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म है तीसरी मंजिल, रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत।

और इसी गाने के साथ गीत सुहाने का सफ़र यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई कार्यक्रम में। और सुरभि को दीजिए इजाज़त, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल वैश्विक पहचान मिल सके।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी संचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद करागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार

जब खामोश रात हो, हवाओं में ठहराव हो और खामोशी में संगीत घुला हो, ऐसे लम्हे दिल के बेहद करीब होते हैं और दिन की सारी भागदौड़ पीछे रह जाती है। जी हाँ, एहसास धीरे धीरे मन की दहरी पर उतरने लगता है और ऐसी रात मोहब्बत को आवाज़ नहीं दी जाती बल्कि महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, रात सुरमई लेकर मैं हाजिर हूँ आपके बीच और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जिंदगी की राहों में कुछ मुलाकातें यूं ही हो जाती हैं, आते जाते नजर मिलती है और एक मुस्कान चेहरे पर रुक जाती है और दिल फिर अनजाने ही किसी अजनबी का इंतजार भी करने लगता है और फिर वहीं से रास्ते खास होने लगते हैं। वही लम्हे बार बार याद आते हैं। शायद मोहब्बत की शुरुआत किसी बड़े इजहार से नहीं बल्कि छोटी छोटी मुलाकातों के साथ होती है।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे। जब भी तन्हाई में मैं उनको भुलाने बैठूं, जब भी तन्हाई में उनमें उनको भुलाने बैठूं, याद आते हैं मुझे गुजरे ज़माने मेरे, छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे।

कभी कभी जिंदगी की राहें लंबी लगने लगती हैं। हम चलते तो रहते हैं, लेकिन दिल किसी ऐसे ठिकाने की तलाश में होता है जहां सुकून मिल जाए। आवारापन सिर्फ भटकना नहीं होता, कभी कभी वो उस अपने एक जगह की, एक रास्ते की तलाश भी होता है, एक मंजिल की तलाश भी होता है जो बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से संवार दे। और जब वो मंजिल, वो मोहब्बत मिल जाती है तो वो बंजारा दिल एक घर पा लेता है। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि मेरे वजूद में जल के दिया वो पलता रहा, मेरे वजूद में बन के दिया वो पलता रहा, वो एक ख्याल था रोशन जहन में पलता रहा, बस गई काले गुलाबों की वो खुशबू रूह में, हसीन याद का संदल था और महकता रहा। तो चलिए चलते चलते हम और आप सुनते हैं जिस्म फिल्म का ये गीत केके की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। अब सुरभि को दीजिए इजाजत, होगी आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर

0: भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल को वैश्विक पहचान मिल सके।
0: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वेरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गराका भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Mr. Modi also appealed to the countrymen to purchase at least one handloom product, make a video about it and share it across the country and the world. National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. The Union Cabinet yesterday approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy.

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

कभी जो थक जाओ दुनिया की महफिलों से, कभी जो थक जाओ दुनिया की महफिलों से, हमें आवाज़ देकर देखना, हम अक्सर अकेले ही रहते हैं। 3:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

लता मंगेशकर जी की आवाज में कभी रात दिन हम दूर थे। वैसे तो ये रात वक्त की बहुत पाबंद है, वैसे तो ये रात वक्त की बहुत पाबंद है, ढल ही जाएगी। देखना तो सिर्फ इतना है कि ये चिरागों का सफर कितना है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

रात में बहुत सी बातें होती हैं खुद से, रात में बहुत सी बातें होती हैं खुद से, कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ।

मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में वो हैं ज़रा खफा खफा। तीन बजकर 39 मिनट हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

0: ये दुनिया हमें ठीक वैसी ही दिखती है जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। ये दुनिया ठीक हमें वैसी ही दिखती है जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। यहाँ पर किसी को गुलाब में कांटे दिखते हैं तो किसी को कांटों में गुलाब। सारा खेल हमारी सोच का ही है।
1: तुझे देखा

मोहम्मद रफी और सुमन जी की आवाज में तुझे देखा तुझे चाहा। जिसके पास ना हो उससे पूछिए कीमत हर चीज की, जिसके पास ना हो उससे पूछिए कीमत हर चीज की, अगर पास हो सब कुछ तो फिर एहसास ही कहाँ होता है। 3:52 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं,

0: और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, माहे, ओडिशा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी आज तेज वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Mr. Modi also appealed to the countrymen to purchase at least one handloom product, make a video about it and share it across the country and the world. National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. The Union Cabinet yesterday approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तस्वीरें लेना भी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, तस्वीरें लेना भी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईने गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं बताते। 4:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

जीवन में लकीरों को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए, जीवन में लकीरों को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। ये माथे पर हो तो चिंता, हथेली पर हो तो तकदीर, जमीन पर हो तो बंटवारा, और रिश्तों में आ जाएं तो अक्सर दरार बन जाती हैं। 4:26 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। 4:32 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूँ आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

फासला बढ़ा लिया तुमने, फासला बढ़ा लिया तुमने, हमने भी दीवारें पक्की कर ली। ज़रा सी गलत फहमी ने देखो, देखते देखते कितनी तरक्की कर ली। 4:38 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़ के देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़ के देखो, और जीनी है जिंदगी तो सिर्फ आगे देखो।

जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढिए। जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढिए। इस्तेमाल करने वाले आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। 4:50 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वो 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने, इससे संबंधित एक वीडियो बनाने और इस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह किया ताकि भारतीय शिल्पकारों के कौशल और शिल्प को वैश्विक पहचान मिल सके। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर

0: इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीस नेशनल जीडीपी को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के आदिवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और अक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी आज तेज वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रोग्राम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज से आज का ये बेहतरीन सा प्रोग्राम।

जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर अक्सर यादें आती हैं, गुजरा हुआ वक्त नहीं। पांच बजकर 20 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

ना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, तेरे हो

पालना ही है जीवन में तो सिर्फ हसरते ही पालिए, पालना ही है जीवन में तो सिर्फ हसरते ही पालिए, गलत फहमी तो बिल्कुल ना पालिए, क्योंकि हसरतें तो फिर भी आपको किसी मुकाम तक पहुंचा देंगी, पर गलत फहमियाँ तो सिर्फ आपको नीचे ही गिराएंगी। 5:26 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।